मुस्कान केवल चेहरे की नहीं मन की ताकत होती है। जो हर परिस्थिति में मुस्कुराता सीख लेता है वही जीवन की हर चुनौती को सहजता से पार कर लेता है।

और इस समय कह रहे कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए। जाने से पहले बस यही कहूंगी कि आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें और साथ ही साथ सुनते रहें आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति छोड़ के जा रहे एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। तो नमस्कार।

संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल मंजूरी दी। लोकसभा से ये विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विधेयक पर चर्चा के लिए 7 घंटे का समय दिया। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक के दोषियों को सख्त दंड और जुर्माने सहित कई महत्वपूर्ण प्रावधान है। इनमें 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी व्यक्तियों की संपत्ति जब्त करना शामिल है। मामलों की शीघ्र निपटान के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन विशेष त्वरित अदालतें स्थापित करेंगे। मामले की छानबीन पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के अंदर पूरी तक करनी होगी। आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के अंदर सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए। चर्चा पर उत्तर के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट किया। सदन में विधेयक पेश करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों और युवाओं के हित की रक्षा के लिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता की पुष्टि करता है। आज सदन की कार्यवाही 11 बजे फिर शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार विश्वसनीय शिक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कई दशकों से प्रत्येक राज्य और केंद्र सरकार को पेपर लीक की समस्या का सामना करना पड़ा है और इससे विद्यार्थियों के भविष्य पर असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए संसद ने कड़े कानूनी प्रावधानों के साथ विधेयक पारित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पारदर्शी और प्रौद्योगिकी आधारित परीक्षा प्रणाली पेपर लीक रोकने के लिए कड़े कानून और परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई विद्यार्थियों के कठिन परिश्रम की रक्षा और विकसित भारत की नींव मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। संसद ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। विदेश सचिव विक्रम मिश्री और भूटान के विदेश सचिव दाशो पेमा लिकतुप दोर्जी ने

0: थिम्पू में 13वीं पंचवर्षीय योजना पर 5वीं भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता की सह अध्यक्षता की। भूटान स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक में विकास के विभिन्न क्षेत्रों में भारत समर्थित परियोजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। दूतावास ने बताया कि विदेश सचिवों ने हरित अवसंरचना और खुले स्थान परियोजना के अंतर्गत निर्मित थिम्फू पारिस्थितिक पार्क और ओलाखा पार्क का वर्चुअली उद्घाटन किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 40 लोग मारे गए थे। स्थानीय अधिकारी अब बुनियादी अधिकारों की मांग कर रही महिला प्रदर्शनकारियों को निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने रावलकोट और मीरपुर में बड़ी संख्या में एकत्र महिला प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में कल कोयला खदान में विस्फोट से 18 खनिक मारे गए और 24 अंदर फंस गए। प्रांतीय राजधानी क्वेटा के बाहरी इलाके में स्थित खदान में मीथेन गैस भर जाना विस्फोट का कारण माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार 18 खनिकों के शव निकाल लिए गए हैं। अन्य कर्मियों की तलाश के लिए राहत और बचाव अभियान जारी है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कल रात भारतीय भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह ने पुरुषों के 110 किलोग्राम वर्ग में रिकॉर्ड के साथ रजत पदक जीता, जबकि सीमा कलीरामना ने महिला डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक हासिल किया। इसके अलावा दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा समेत 3 भारतीय भी भाला फेंक के फाइनल में पहुंचे, जबकि ट्रिपल जंपर्स के 2 भारतीय खिलाड़ी प्रवीण चित्रवेल और सेल्वा प्रभु थेरुमारन ने भी फाइनल में जगह बनाई। अजरबैजान में के बाकू में कल अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान निकिता सहरावत ने रजत पदक जीता, जबकि कामना बाबुल और गरिमा ने महिला वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। The Parliament has passed the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it yesterday. The bill was passed by the Lok Sabha on Wednesday. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of convicted offenders. To ensure the expeditious disposal of cases, the legislation mandates that every state government and Union Territory Administration establish special fast-track courts for day-to-day trial. Replying to the discussion on the bill, Minister of State for Personnel and PMO, Dr. Jitendra Singh said, "This issue touches every citizen of India and has stake with every citizen of this country." Prime Minister Narendra Modi has said government is continuously taking one step after another to build a trustworthy examination system. In a video message on social media, Mr. Modi said, "For the past several decades, every state government and the central government have faced the problem of paper leaks, and this has put the future of students at risk." He said, "Keeping all this in mind, reforms in the education and examination system have become essential across the country, both in the states and the centre." The Prime Minister said Parliament has passed the bill containing stringent legal provisions.
2: दोनों सदनों ने कठोर प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। काम आगे भी चलता रहेगा। हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिलकर के विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के चले।
1: The Parliament has passed the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026 with the Lok Sabha approving it yesterday. Rajya Sabha had passed the bill on Wednesday. Minister of State for Home, Nityanand Rai, moved the bill to further amend the Prevention of Insults to National Honour Act 1971. The legislation seeks to give Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem, Jana Gana Mana. These offences are punishable with imprisonment up to 3 years, a fine, or both. Protests continued in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir following a brutal crackdown by Pakistani security forces on civilians earlier this week, which left more than 40 people dead. Local authorities in the occupied region have now been

0: ट्रैक और फील्ड की स्पर्धाओं में थे। किसी को क्वालिफाई करना था तो किसी को मेडल के लिए मशक्कत करनी थी। कैसा रहा आठवां दिन, पेश है सारा विवरण।
1: This was not just a day that gave every Indian a reason to smile, but rather it also gave every Indian a reason to feel proud of for forever. Indian weightlifter Lovpreet Singh secured a silver medal with a historic record-breaking performance on day 8 of the 2026 Glasgow Commonwealth Games. Lovpreet Singh claimed the silver medal in the heaviest men's division after a phenomenal tactical battle. After initially taking a commanding lead during the snatch segment by successfully clearing 176 kilograms, he held off intense competition to claim his podium finish. Let me also tell all our listeners that Lovpreet Singh had snatched the heaviest snatch in Indian weightlifting history, and that was a 176 kilograms. He executed a clean and composed 212 kilogram lift in the clean and jerk segment. This brought his combined total to 388 kilogram, setting a brand new Indian national record. Born on September 6, 1997 in Bal Sachandar village, Amritsar, Punjab, Lovpreet Singh comes from a humble family. Inspired by local weightlifters, he began weightlifting in 2010 at the age of 13 under the guidance of local coaches. Despite financial hardships, his determination and disciplined training helped him progress steadily through the junior and senior ranks. Commonwealth Weightlifting Championship 2022 Gold, Commonwealth Games 2022 Bronze, Commonwealth Weightlifting Championship 2021 Silver, 5th place in the Asian Championship 2026 with a personal best performance of a total of 386 kilograms. And now, Glasgow Commonwealth Games 2026, a silver medal for India. The gold was secured by New Zealand's David Andrew Little with a total of 389 points. While on one hand, India got a reason to rejoice at midnight, on the other hand, India also found a reason of heartbreak in Martina Devi's performance in the women's 86 kilogram finals. The 20-year-old Manipuri prodigy Martina Devi Maibam finished 5th overall on her Commonwealth Games debut. The performance of the Indian weightlifters at Glasgow Commonwealth Games 2026 has been nothing short of exemplary. This journey started with Mirabai Chanu getting us the gold in women's 48 kilogram category. Then came Gyaneshwari Yadav getting us the silver in women's 53 kilogram category. Then came Bindyarani Devi getting us the bronze in women's 58 kilogram category. After that, there was Harjinder Kaur getting us the silver in women's 69 kilogram category. After that, there was Rishikanta Singh, who got us the silver in men's 60 kilogram category. Raja Muthupandi got us the silver in men's 65 kilogram category. Ajaya Babu got us the silver in men's 79 kilogram category. And then came Lovpreet Singh, who got silver in men's 110 kilogram category.
0: एथलेटिक्स में सारी निगाहें थी नीरज चोपड़ा, शॉटपुट में तेजिंदर सिंह तूर और 5000 मीटर में पारुल चौधरी पर। सुबह के सत्र का केंद्र थे भारत के लाडले जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा, 2018 गेम्स के स्वर्ण पदक धारी, पिछले गेम्स में चोट की वजह से नहीं आ पाए थे। ओलंपिक के विजेता, विश्व विजेता, एशियन गेम्स के विजेता, अलंकरण ही अलंकरण, लेकिन बीते समय चोट के शिकार रहे। करीब 9 महीने मैदान से दूर रहे वो। वापसी के बाद प्रदर्शन में अपनी पुरानी की खोज में दिखते रह रहे हैं। यहाँ इस स्पर्धा में मुकाबला खासा तगड़ा है उनके लिए। पाकिस्तान के अरशद नदीम, श्रीलंका के रुमेश थरांगा और हमवतन रोहित और यशवीर तो हैं ही। नीरज, रोहित यादव और यशवीर सिंह तीनों ने ही क्वालिफाई कर लिया फाइनल्स के लिए। हाँ, जो दूरी उनके भालों ने नापी वो कागज पर उतनी शानदार नहीं लग रही। नीरज ने दूसरे प्रयास में 79.61 मीटर भाला फेंका, जबकि 85 से ऊपर तो वो जब चाहे तब फेंक दिया करते थे। ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन मार्क था 84 मीटर, तो उनका ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन नहीं हुआ। लेकिन ठहरिए, 18 क्वालिफायर्स में से कोई भी ये मार्क हासिल नहीं कर पाया। नीरज ने बाद में कहा कि तेज हवा और ठंडक सभी भाला फेंकने वालों के लिए कठिन माहौल पैदा कर रही थी।

0: was okay, like 79 meter throw, and the goal was to go in the final and give my best in the final. So I'm happy with the throw. Yeah, conditions are not best for javelin throwers. Not only cold, but it's really windy, and wind was also not in the front. Sometimes it's from side, and it's really hard to process, like where we have to throw. We are happy that we all three Indians are in the final.
1: तो अब निगाहें रहेंगी फाइनल में कि नीरज वहां पर उनका भाला लक्ष्य भेदने में सफल रहे. लेकिन कल का सबसे यादगार प्रदर्शन आया डिस्कस थ्रो में, महिलाओं की चक्का फेंक. सीमा कालीरम्मा ने अपना हालिया शानदार प्रदर्शन जारी रखा और कांस्य पदक हासिल किया. इस प्रतियोगिता में सीमा और निधि रानी के रूप में भारतीय चुनौती थी. शुरू से ही वो तीसरे और चौथे स्थान पर रही और सीमा ने अपने तीसरे प्रयास में 58.65 मीटर की दूरी नापी तो निधि का चक्का 57.10 मीटर तक गया और ये स्थिति उन दोनों ने अंत तक बनाए रखी. हालांकि इसके बाद के सारे थ्रो सीमा के फाउल हो गए, लेकिन तब भी ये जो प्रयास तीसरा था वो उन्हें कांस्य पदक दिला गया. निधि रानी चौथे स्थान पर आईं. सीमा एक जीवंत उदाहरण है स्त्री शक्ति की ताकत का. मातृत्व के कारण उन्होंने अवकाश लिया, कुछ दिन बिल्कुल अभ्यास से दूर रहीं, उसके बाद वापसी की, मैदान पर आई और अपनी पुरानी लय हासिल की, बल्कि उससे बेहतर. साथ ही पढ़ाई में भी अव्वल, डॉक्टरेट कर रही हैं. सलाम है सीमा आपको. नीरज के बाद जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा थी वो थे तेजेंद्र सिंह तूर. शॉटपट में पदक की उम्मीद के साथ उतरे, दो बार के एशियाई गेम्स और एशियाई चैंपियन. उनके साथ थे समरदीप सिंह गिल. प्रतियोगिता की शुरुआत हुई, तूर ने कोशिश तो बहुत की लेकिन गोला 20 मीटर के आसपास ही जा पा रहा था उनका. तीसरे प्रयास में 20.27 मीटर फेंका उन्होंने, जो उनका कल का सबसे अच्छा थ्रो रहा, लेकिन ये काफी नहीं था पदक के लिए. वे पांचवें स्थान पर रहे तो समरदीप सिंह गिल को ये संतोष अवश्य रहेगा कि उन्होंने भी 20 मीटर की दूरी पार कर ली. उनका बेस्ट थ्रो रहा 20.23 मीटर और वो सातवें स्थान पर आए. स्वर्ण नाइजीरिया के चुक वेयम्बुका ने जीता 21.07 मीटर के थ्रो के साथ. 200 मीटर में अनिमेश कुजूर सेमीफाइनल चक्र में ही बाहर हो गए, 20.65 सेकंड का समय और उनसे बहुत पीछे था. कुल मिलाकर वो 17वें स्थान पर रहे. सुबह के सत्र का शानदार प्रदर्शन रहा पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा में. प्रवीण चित्रावल दूसरे स्थान पर रहे 16.41 मीटर की कूद के साथ, तो उनके साथ ही सेल्वा प्रभु तीसरे स्थान पर आए 16.26 मीटर के साथ और उन्होंने ट्रिपल जंप में पदक की आशाएं जागृत कर दी हैं. 400 मीटर में क्वालिफाई करने वाले विशाल टीके कल सेमीफाइनल में 46.33 सेकंड के समय. दर्द और बढ़ा गई. 15.08.56 सेकंड के साथ वो 13वें स्थान पर रही. हाँ, डेकथलॉन में तेजस्विन शंकर ने कल 5 स्पर्धाएं पूरी कर ली और पदक की होड़ में बने हुए हैं 4,339 अंकों के साथ. अपनी प्रिय लॉन्ग जंप स्पर्धा में तो वो टॉप पर रहे और दिन समाप्त होने तक दूसरे स्थान पर बने हुए हैं. अगर आज ये प्रदर्शन जारी रख पाते हैं तो निश्चित तौर पर पदक उनका इंतजार कर रहा है. और भारतीय दल से उम्मीदों के बारे में बता रहे हैं भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ रघुराम अय्यर.
2: I think it's a great start to the Commonwealth Games. We've already secured 15 medals so far, and over the next 3 or 4 days we have some very interesting bouts coming up. There are 8 or 10 of the boxers who made it to the semi-finals. There are weightlifters, and then of course there's the mega event of javelin and the track and field as well. So looking forward to a healthy tally of the Commonwealth Games for the closing ceremony.
3: On day 8, India's historic debut in para-track cycling at the Glasgow Commonwealth Games was highlighted by an inspiring performance from 16-year-old sensation Lisha Das. Hailing from Tezpur, Assam, the class 11 student took to the track at the Sir Chris Hoy Velodrome to become the first ever para-athlete from Assam to qualify for the Commonwealth Games. Competing in the high-octane women's C4-C5 4,000-meter individual pursuit qualification round, her debut marked a monumental step forward for Indian paracycling on the world stage, despite missing out on a spot in the final medal rounds.
1: In खेलों में साइकिलिंग की स्पर्धा में सिर्फ ट्रैक साइकिलिंग ही है, रोड रेसेस और माउंटेन बाइक शामिल नहीं है. सर क्रिस हॉय वेलोड्रोम में ट्रैक साइकिलिंग का कल पहला दिन था. और 6 स्वर्ण पदक दांव पर थे। भारत भी इनमें से एक पर अपना दांव लगा रहा था। पुरुष टीम स्प्रिंट, भारतीय टीम 6 और

0: देशों के मुकाबले थी। तीन साइकिलिस्ट वेलोड्रोम ट्रैक का एक एक लैप पूरा करते हैं लगातार एक एक करके। टीम ने कोशिश तो बहुत की लेकिन अंतिम पायदान पर ही आ सकी। एवरेज स्पीड रही 58.195 किलोमीटर प्रति घंटा। रोनाल्डो सिंह लाइथोन जंप, डेविड बेकहम और रोनजीत सिंह यांगलेन। अंतिम आना भी इस मायने में दिलासा देता है कि भारतीय साइकिलिंग अब विश्व स्तर पर प्रवेश कर चुकी है। आज खेलों का नवा दिन खासा सरगर्म रहने वाला है। बॉक्सिंग में 10 पदक पहले ही पक्के हो चुके हैं लेकिन पदक का रंग बेहतर करने के इरादे से सभी 10 बॉक्सर्स कल सेमीफाइनल में रिंग में उतरेंगे। महिलाओं में प्रीति, जैस्मिन, अरुंधति, प्रिया, साक्षी और लवलीना बोरगोहेन। और पुरुषों की बात करें तो उसमें सचिन होंगे, नरेंद्र होंगे, अंकुश होंगे और होंगे जादूमणि। देखना है इनमें से कितने बॉक्सर्स फाइनल में प्रवेश पाते हैं। मुक्केबाजी में भारत की उम्मीदों के बारे में बता रहे हैं भारतीय बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष अजय सिंह।
1: देखिए 14 इवेंट है टोटल हमारे बॉक्सिंग में और 7 लड़के और 7 लड़कियां, तो हमें लगता है कि जो आज तक का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस हमारा रहा है वो गोल्ड कोस्ट में ऑस्ट्रेलिया में, जब हमारे 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज आए थे। मुझे लगता है कि उससे बेहतर परफॉर्मेंस हमारा इस बार होगा।
2: इन जूडो देयर विल बी द मेंस 60 किलोग्राम राउंड ऑफ 16 इन विच हर्ष सिंह विल बी रिप्रेजेंटिंग इंडिया। देयर विल बी वुमेन्स 52 किलोग्राम राउंड ऑफ 16 इन विच श्रद्धा कादुबल चौपाड़े शैल बी रिप्रेजेंटिंग इंडिया। देयर विल बी मेंस 66 किलोग्राम राउंड ऑफ 16 इन विच रोहित बासिर मजगुल शैल बी रिप्रेजेंटिंग इंडिया। देन देयर विल बी वुमेन्स 48 किलोग्राम इवेंट क्वार्टर फाइनल्स इन विच अश्विता डे विल बी रिप्रेजेंटिंग इंडिया। देन देयर विल बी वुमेन्स 57 किलोग्राम क्वार्टर फाइनल इवेंट इन विच यामिनी मौर्या शैल बी रिप्रेजेंटिंग इंडिया।
0: एथलेटिक्स में डेकेथलॉन की स्पर्धाएं जारी रहेंगी। तेजस्वी शंकर पदक की होड़ में बाकी बची 5 स्पर्धाओं में उतरेंगे। मिक्स 4x400 रिले होगी जिसमें अंशु बाबू, नीरू पाठक, रशदीप कौर और विशाल टीके, 400 मीटर हर्डल्स में यशाश पलाक्ष और संतोष कुमार टी मैदान में उतरेंगे।
2: In track cycling, there will be men's 4,000 meter individual pursuit event in which Dinesh Kumar and Harshveer Singh Sekha shall be representing India. There will be men's keirin first round events in which Ronaldo Singh, David Beckham and James Singh will be representing India. In lawn ball, the men's pair sectional play event shall be happening in which Navneet Singh and Dinesh Kumar will be representing India. There will be women's single sectional play in which Nayanmoni Sekia shall be representing India.
3: बहुत practice किया है, 6 घंटा compulsory है, कभी ज्यादा भी होता है। अभी इस मुकाम में पहुंचा है कि ताकि हम लोग इंडिया के लिए कुछ कर सके।
2: It's time now to have a look at the latest updated medal tally at the end of day 8 of Glasgow Commonwealth Games 2026. On the first spot is Australia with 51 gold, 24 silver, 35 bronze, their total number of medals being 110. On the second spot is England with 15 gold, 30 silver and 20 bronze, their total number of medals being 65. And on the third spot is Canada with 15 gold, 13 silver and 17 bronze medal, their total being 45. India presently is on the 10th spot with a total of 17 medals, which includes 3 gold medals, 10 silver medals and 4 bronze medal. That is all that we had with all the updates that we had to bring to you on day 8 of the ongoing Glasgow Commonwealth Games 2026. This program was brought to you by our producer Shahnawaz Khan, editor Vandana Bharadwaj, my co-commentator and anchor Anupam Pathak and myself Sakshi Mandwal. That is all that we had for you for now. Thank you so much for listening in. Goodbye. Namaskar.
4: Glasgow. The Commonwealth Games.

नमस्ते, हेलो, आदाब दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त आरजे जेडी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 101.9। रेनबो के साथ लाइफ है रंगीन। आज है 31 जुलाई, यानी इस महीने का आखिरी दिन। सच कहूं तो वक्त कितनी तेज़ी से निकल जाता है ना। अभी तो लग रहा था जुलाई शुरू हुआ है, क्योंकि बारिश भी अभी अभी शुरू हुआ है। और देखते ही देखते अगस्त दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। और हर महीना अपने साथ कुछ यादें, कुछ सीख और कुछ खास लम्हे लेकर आती है। जुलाई ने भी हमें बहुत कुछ दिया। देशभक्ति के जज्बे से लेकर प्रकृति को बचाने का संदेश, डॉक्टर को सल्यूट करने से लेकर टाइगर्स और फॉरेस्ट्स की इम्पोर्टेंस तक। और आज के प्रोग्राम में हम सिर्फ जुलाई को अलविदा ही नहीं, बल्कि अगस्त को दिल से स्वागत भी करेंगे। साथ ही बात होगी आज के कुछ खास दिनों की, एक माह लेकर की और एक अमर क्रांतिकारी की, हैरी पॉटर की मैजिकल दुनिया की और हैदराबाद में चल रहे बोनालो की। और इनकम टैक्स की ज़रूरी बातें भी हम ज़रूर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे अगले 3 घंटे होने वाले हैं इन्फॉर्मेशन, इंस्पिरेशन और एंटरटेनमेंट से भरपूर, सिर्फ एफएम रेनबो 101.9 पर।

वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूँ आरजे जेडी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 101.9 रेनबो के साथ लाइफ है रंगीन। तो दोस्तों, 31 जुलाई को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल रेंजर्स डे यानी वर्ल्ड रेंजर डे मनाते हैं। ये दिन उन फॉरेस्ट रेंजर्स को डेडिकेट किया गया है जो हमारे जंगलों, वाइल्ड लाइफ और प्रकृति की सुरक्षा के लिए दिन रात काम करते हैं। सोचिए, जब हम किसी नेशनल पार्क को पार्क या जंगल की खूबसूरती देखकर खुश होते हैं, तब उस खूबसूरती के पीछे कितने लोगों की मेहनत छुपी है। फॉरेस्ट रेंजर्स सिर्फ पेड़ पौधों की ही नहीं बल्कि शेर, बाघ, हाथी और कई एंडेंजर्ड स्पीसीज की भी रक्षा करते हैं। जी हाँ, इन्हें कहते हैं फॉरेस्ट रेंजर्स। कभी कभी तो उन्हें पोचर्स का सामना करना पड़ता है, कठिन मौसम से लड़ना पड़ता है और कई बार अपनी जान को भी

जोखिम में डालना पड़ता है। इसीलिए आज के दिन उन वीरों को याद करते हैं और उनको धन्यवाद करते हैं। आज अगर आप जंगल की फ्रेश हवा, वाइल्ड लाइफ की तस्वीरें या नेचर डॉक्यूमेंट्रीज का आनंद ले पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें इन रेंजर्स का भी योगदान है। चलिए आज एक छोटा सा प्रॉमिस करते हैं, प्रकृति के सामने

दोस्तों, आज 31 जुलाई भारत के महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती भी है। हिंदी और उर्दू साहित्य को अगर किसी ने आम इंसान के जीवन से सबसे गहरा जोड़ा तो वो है प्रेमचंद जी। उन्होंने अपनी कहानियों और उपन्यासों के जरिए गांवों, गरीबी, ईमानदारी, सामाजिक असमानताएं और इंसान जज्बात को कितनी खूबसूरत से पेश किया कि उनकी रचनाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक लगती है। उनकी मशहूर रचनाएं गोदान, गबान, निर्मला और ईदगाह सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि जिंदगी की अनुभव है। और इसी बात पर एक खूबसूरत लाइन याद आती है, एक अच्छी किताब सिर्फ कहानी नहीं बताती बल्कि जिंदगी को देखने का नज़रिया ही बदल देती है। आज के डिजिटल दौर में हम मोबाइल पर घंटों बैठते हैं, लेकिन अगर हर महीने सिर्फ अच्छी किताब भी पढ़ लिए तो हमारी सोच बहुत बदल सकती है। दोस्तों, किताब से याद आया था, जब मैं 10th में था तो मैं भी सभी बच्चों के जैसा नटखट शरारती था, लेकिन मुझे 10th में मेरे पापा ने एक किताब दी थी जिसका नाम था हाउ टू सक्सीड, और उसको लिखा था अब्दुल सलाम ने, जो कि किताब था सलाम कियोस पब्लिकेशंस का। और वो किताब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और उस टाइम से मैं पूरा बदल गया हूँ। मेरा सोचने का अंदाज़, सोचने का तरीका, लोगों से बात करने का तरीका सब कुछ बदल दिया है।

तो मैं एक लाइव एग्जांपल हूँ, और कि ये बताने हैं कि एक किताब कितना हमें क्या इफेक्ट कर सकता है। तो जी हाँ, मुंशी प्रेमचंद जी की भी रचनाएं बहुत ही खूबसूरत रहती है। चलिए इसी सिलसिले में हम सुनते हैं एक खूबसूरत सा गीत।

वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूँ आरजे जेडी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 101.9। रेनबो के साथ लाइफ है रंगीन। दोस्तों, आज 31 जुलाई एक और ख़ास वजह से भी याद रखा जाता है, क्योंकि आज मशहूर लेखिका जेके रॉलिंग का भी जन्मदिन है। और इसी दिन साल 1997 में दुनिया को मिली एक ऐसी किताब जिसने बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको अपनी मैजिकल दुनिया का दीवाना बना दिया। जी, और वो है हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन। तो आज ही के दिन ये वाला किताब पेश किया गया था। और कभी-कभी एक कहानी सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होती है, बल्कि इमेजिनेशन को नए पंख देती है। हैरी पॉटर की कहानी हमें दोस्ती, हिम्मत, सैक्रिफाइस और सही के लिए खड़े रहना का पैगाम देती है। शायद इसीलिए आज भी हर जनरेशन में हैरी पॉटर के फैंस मिल ही जाते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है, हैरी पॉटर का फिक्शनल बर्थडे, जी हाँ, हैरी पॉटर का जो कैरेक्टर है उसका फिक्शनल बर्थडे भी 31 जुलाई को ही माना जाता है। मतलब आज सेलिब्रेशन डबल है। तो वैसे सोचिए, अगर आपको हॉगवर्ट्स से एडमिशन लेटर आ जाए तो आप कौन सी मैजिकल पावर चूज़ करेंगे? इनविजिबिलिटी, फ्लाइंग, या फिर टाइम को कंट्रोल करने की ताकत? और जिन्हें हैरी पॉटर के बारे में नहीं पता, तो ये एक ऐसी सीरीज़ है, एक ऐसे मूवीज़ का सीरीज़ है जिसमें 7 बुक्स रिलीज़ किए थे जेके रॉलिंग ने और 8 मूवीज़ रिलीज़ किए थे। और हर मूवी धमाकेदार होती है, बहुत ही अच्छी होती है, मज़ेदार होती है और देखने में इतना मज़ा आता है। यहाँ पर ऐसा होता है कि बच्चे जो होते हैं उनको एक अलग दुनिया से, एक जहाँ पर एक अलग ही दुनिया रहती है, वहाँ पर एक स्कूल होता है हॉगवर्ट्स नाम का। और वो स्कूल जादुई दुनिया के लिए होता है और उसमें जादू होता है, तो बहुत ही अच्छा रहता है। उसमें दोस्त रहते हैं, राक्षस रहते हैं, मैजिक होता है, बहुत मज़ा आता है। सोचिए ज़रूर और देखिएगा अगर अभी तक आपने नहीं देखा हो तो। और अगर आप हैरी पॉटर के फ़ैन हैं तो आज के दिन दोबारा उस मैजिकल जर्नी को याद करना। तो चलिए अभी सुनते हैं एक छोटा सा गाना।

0: राज्यसभा की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर अपने मंत्रालय से संबंधित दस्तावेज रखे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने अपने मंत्रालय से संबंधित फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने की व्यवस्था की समीक्षा पर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की 22वीं रिपोर्ट की सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति के बारे में बयान दिया। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। कई सदस्यों ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाया। हंगामा के जारी रहने पर सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में बैठक शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। वे इस मुद्दे पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल के दौरान सदन की कार्यवाही में बाधा न डालने की अपील की। उन्होंने कुछ विपक्षी सदस्यों द्वारा जानबूझकर डाली गई बाधा पर चिंता भी व्यक्त की।
1: आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए, आप सदन की पवित्रता को समाप्त

0: रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें।
1: लोकसभा की कार्यवाही एक स्थगन के बाद अब जारी है। इससे पहले कल राज्यसभा की मंजूरी के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित हो गया। लोकसभा में यह विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रूपये तक का जुर्माना और उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान शामिल है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि अग्रिम पंक्ति में तैनात कर्मियों को भीड़ के हिंसक तत्वों ने घेर लिया, उन पर पत्थर फेंके और शारीरिक रूप से मारपीट की। परिवार वालों ने यह भी दावा किया कि इस घटना में कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में जारी आतंकरोधी अभियान में सुरक्षा बलों ने भंगाई जंगलों में एक संदिग्ध आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि तलाश अभियान के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने खाद्य सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुएं बरामद की, जिससे संकेत मिलता है कि आतंकवादी इस ठिकाने का इस्तेमाल अस्थायी आश्रय और रसद अड्डे के रूप में कर रहे थे। भूटान नरेश जिग्मे खेसा नामग्याल वांगचुक ने आज विदेश सचिव विक्रम मिश्री से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच विकास और सहयोग की प्रगति की समीक्षा की गई। सोशल मीडिया पोस्ट में भूटान नरेश ने विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति की सराहना करते हुए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। आइजोल के सूचना और जनसंपर्क मंत्री पूबी लालचंद जोवा ने कहा है कि आकाशवाणी आइजोल ने मिजो पहचान को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाशवाणी आइजोल की हीरक जयंती के अवसर पर अपने संदेश में श्री लालचंद जोवा ने कहा कि 1966 में अपनी स्थापना के बाद से इस स्टेशन ने मिजो भाषा, संस्कृति, रीति रिवाजों और परंपराओं के संरक्षण तथा संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपने संदेश में आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने कहा कि बदलते समय में भी आकाशवाणी आइजोल मिजोरम के लोगों के लिए सूचना का एक विश्वसनीय स्रोत और मार्गदर्शक बना हुआ है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली रूप से बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 103 अंक बढ़कर 78031 जबकि निफ्टी 44 अंक बढ़कर 24361 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों, बस कुछ ही घंटों बाद हम एक नए महीने के नहीं नई महीने में कदम रखने वाले हैं। जुलाई हमें अलविदा कहेगा और अगस्त हमारे दरवाजे पर दस्तक देगा। हर नया महीना एक नई उम्मीद लेकर आता है। कुछ लोग नए गोल सेट करते हैं, कुछ अपनी पुरानी आदतों को बदलने की कोशिश करते हैं और कुछ बस एक फ्रेश बिगनिंग का इंतज़ार करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कभी-कभी पीछे मुड़कर देखना भी ज़रूरी होता है। ज़रा याद कीजिए, जुलाई की शुरुआत में हमने वन महोत्सव मनाया।

पेड़ लगाना और प्रकृति को बचाने का संदेश पूरे देश में दिया गया। 1 जुलाई को हमने नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया और उन डॉक्टर्स को सैल्यूट किया जो हमारी सेहत का असली हीरोस है। 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे ने हमें बताया कि जानवरों और इंसानों की सेहत कितनी गहरी तरह से जुड़ी होती है। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे और 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे ने युवाओं की काबिलियत और जिम्मेदारी की बात की। 22 जुलाई को हमने अपनी तिरंगे का राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया जाने वाला दिन था। 26 जुलाई को कारगिल दिवस और 28 जुलाई को वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे और 31 जुलाई, जो आज है, इंटरनेशनल रेंजर्स डे मनाकर हमने एक बार फिर याद किए कि प्रकृति और वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है। सच में जुलाई ने हमें बहुत कुछ सिखाया और जुलाई की बारिश ने गर्मी से राहत दी, जो कि सभी लोगों के लिए खुशी की बात है। तो चलिए इसी सिलसिले में हम हमारा म्यूजिकल जर्नी को आगे बढ़ाते हैं, और उससे पहले सुनिए एक छोटा सा संदेश।

वेलकम बैक दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत गाना था जिसे गाया था मुस्तफ़ा जाहिद ने, मैंने खुद को, फ्रॉम द मूवी रागिनी MMS 2। और अब बात करते हैं उस महीने की जो कल से शुरू हो रहा है। जी, अगस्त। अगस्त का कैलेंडर भी बहुत ही खास है। 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब डे यानी इंटरनेट की दुनिया को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब मतलब हम जो हर वेबसाइट के सामने लगाते हैं www. जी हाँ। और 3 अगस्त को सबका फेवरेट डे, फ्रेंडशिप डे, दोस्तों के नाम एक खूबसूरत दिन। 6 अगस्त को हिरोशिमा डे जो हमें शांति का संदेश देता है। 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे जहाँ हम अपने बुनाकारों को और हैंडलूम परंपरा को सम्मान देते हैं। 9 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट, आज़ादी की लड़ाई के एक महत्वपूर्ण अध्याय का याद। 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे, 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गेन डोनेशन डे, और फिर आता है

हर भारतीय के लिए गर्व का दिन 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस। इसके बाद 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, 20 अगस्त को सद्भावना दिवस और 26 अगस्त को वुमेन्स इक्वालिटी डे और 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे और महीने के अंत में स्मॉल इंडस्ट्री डे हम देश के उद्योगों को और एंटरप्रेन्योर्स को याद दिलाते हैं। लगता है अगस्त भी यादों और सेलिब्रेशन से भरपूर है और इतने इतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, मज़ा आएगा। और दोस्तों, अगर आप मार्वल यूनिवर्स के फ़ैन हैं तो आज की एक एक्साइटिंग अपडेट भी सुन लीजिए। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का बज़ काफ़ी ज़ोरों पर है और उनके फैंस बेसब्री से फिल्म का इंतज़ार कर रहे थे और वो फिल्म रिलीज़ हो चुका है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि फिल्म देखने से पहले क्या-क्या देखना ज़रूरी है, क्योंकि हाँ, मार्वल्स का जो है सिलसिला वो हर मूवीज़ को कनेक्ट करके देता है और ये बात उसे बहुत खास बनाता है। अगर आपको सही जानकारी चाहिए कि आपको इस मूवी से पहले कौन सी मूवीज़ देखनी चाहिए, तो सबसे पहले देखिए कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, क्योंकि यहीं से पीटर पार्कर की एमसीयू में एंट्री होती है। उसके बाद स्पाइडरमैन होमकमिंग, फिर एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम। इसके बाद आती है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम और फिर स्पाइडरमैन नो वे होम, जहाँ पीटर की ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा मोड़ लेता है। अगर आप और भी गहरा कनेक्शन समझना चाहते हैं इस मूवी के लिए, तो डेयर डेविल बॉर्न अगेन देख सकते हैं। और अगर फ्रैंक कैजल यानी पनिशर आपका फेवरेट कैरेक्टर है, तो उसका लेटेस्ट अपीयरेंस भी देखने का इंटरेस्टिंग रहेगा। बस एक बात याद रखिए, जितना कम स्पॉइलर मैं बताऊंगा उतना ज़्यादा मज़ा आएगा थिएटर में देखने में। और ताकि आप पॉपकॉर्न रेडी रखिए और स्पाइडरमैन का नया एडवेंचर के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये रिलीज़ हो चुका है और बस से पता चलता है कि बहुत मज़ेदार है। तो दोस्तों, हम हमारे म्यूज़िकल जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। ही जल्द मैं सुनाऊंगा आपको एक खूबसूरत सी कहानी, और उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट अपडेट। हैदराबाद की शान, बोनालू महोत्सव। जी हाँ, हैदराबाद की बात हो रही है तो बोनालू का जिक्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। जी, बोनालू सिर्फ एक त्यौहार नहीं बल्कि हैदराबाद की पहचान, परंपरा और आस्था का प्रतीक है। इस दौरान श्रद्धालु माँ महाकाली को सजाए हुए बोनम अर्पित करते हैं, उनका आशीर्वाद की कामना करते हैं। रंग बिरंगे झनकारियाँ, ढोल की गूंज, पोतराजू का उत्साह और भक्ति का माहौल पूरा शहर को एक अलग ही रंग में रंग देता है। इस साल 19 जुलाई को गोलकुंडा में बोनालू का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। अब 2 अगस्त को सिकंदराबाद का प्रसिद्ध श्री उज्जैन महाकाली मंदिर और बलकमपेट यल्लमा टेम्पल में लश्कर बोनालू का शोभा देखने को मिलेगा। इसके बाद 9 अगस्त को पुराने शहर या लाल दरवाज़ा, उसको हम कहते हैं, महाकाली का मंदिर है, वहाँ पर भी बोनालू मनाया जाता है, जो कि ओल्ड सिटी बोलते हैं। अगर आप बोनालू देखने जा रहे हैं तो परंपराओं का सम्मान कीजिए, भीड़ में सावधानी रखिए और इस अद्भुत सांस्कृतिक विरासत का आनंद लीजिए। हैदराबाद की पहचान ही उसकी गंगा जमुना तहजीब और त्योहारों की रंगत है, और बोनालू उस रंगत को और भी खास बना देता है।

वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूँ आरजे जेडी और आप सुन रहे FM रेनबो 101.9। रेनबो के साथ लाइफ है रंगीन। तो जी हाँ दोस्तों, समय बहुत कम है। अभी आपका फेवरेट प्रोग्राम चालू होने वाला है 1 बजे को, जो है हेलो रेनबो। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मेरे दोस्तों को मैं एक अच्छी सी कहानी सुनाऊँ, जिसे मैं हमेशा सुनाता हूँ। हाँ, आज थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा डाउन लग रहा है, मैं भी समझ पा रहा हूँ ये। मैं कोशिश करूँगा आप सभी को मैं एंटरटेन कर सकूँ। तो जी हाँ दोस्तों, तो आज की कहानी है गुस्से वाली अम्मा। जी, हर मोहल्ले में एक ना एक ऐसा इंसान ज़रूर होता है जो हर वक्त किसी ना किसी को टोकते रहता है। हेलमेट पहनो, धीरे चलाओ, पानी गड़बड़ मत करो। और धीरे धीरे लोग उस इंसान को समझने की जगह उसे बचकर निकलना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या हर डांट के पीछे सिर्फ गुस्सा होता है, या कभी कभी उसके पीछे छुपा होता है किसी अपने को खो देने का डर? आज की कहानी है गुस्से वाली अम्मा। एक छोटे से मोहल्ले में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। सफ़ेद बाल, हाथ में एक पुरानी लकड़ी लकड़ी की छड़ी और चेहरे पर हमेशा एक सख्त सा एहसास। मोहल्ले के बच्चे उन्हें देखते ही कहते, अरे अम्मा आ गई, भागो अभी। सुबह के 6 बजे की उनकी ड्यूटी शुरू हो जाती है। राहुल, हेलमेट पहनो। राहुल ने हंसी हंसी में जवाब दिया, अम्मा बस गली के कोने तक ही जा रहा हूँ। अम्मा तुरंत बोली, हादसा कभी कभी भी हो सकता है। राहुल मुस्करा कर निकल गया। पीछे खड़े उसके दोस्त हंसने लगे, राहुल अम्मा ने अटेंडेंस लगा दी। थोड़ी देर सुनीता अपने घर के बाहर पानी से आंगन धो रही थी। पानी सड़क तक बह रहा था। अम्मा ने आवाज़ लगाई, सुनीता बेटा, जितनी ज़रूरत है उतना ही पानी इस्तेमाल करो। सुनीता ने धीरे से कहा, जी अम्मा। लेकिन अंदर जाते ही अपनी सहेली से बोली, लगता है अम्मा के पास ड्रोन कैमरा है, पूरे मोहल्ले पे नज़र रखती है। दोनों हंस पड़े। मोहल्ले मोहल्ले के नुक्कड़ पर छोटू छोटू की चाय की दुकान है। अम्मा रोज़ वहीं चाय पीने आती है। छोटू, एक चाय देना। छोटू ने एक कप पकड़ा दिया। अम्मा ने एक सिप ली। अरे इतनी गर्म चाय, किसी का मुंह जल जाएगा। छोटू ने शुरुआत से कहा, अम्मा कल आपने बोला था ठंडी है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होती है कि आज आप आग जी। तो छोटू ने बोला था, अम्मा कल आपने बोला था चाय ठंडी है, तो अम्मा ने बोला, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि आज आग आग वाली चाय पिला दो। दुकान पर बैठे सभी लोग हंस पड़े। एक आदमी बोला, छोटू अम्मा के लिए चाय के साथ थर्मामीटर भी दिया करो। सब फिर हंसने लगे। अम्मा बस चुपचाप चाय पीती रही। इसके आगे जो हुआ मैं आपको सुनाऊंगा एक छोटी सी संदेश के बाद और साथ ही एक म्यूजिक के साथ।

दोस्तों, अगर आप अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो मैं एक कहानी सुना रहा हूँ जिसका नाम है गुस्से वाली अम्मा, जिनको लेकर हर कोई परेशान था क्योंकि वो हर किसी को डांट लगा देती थी और हर किसी को सुना देती थी। तो हम हमारे कहानी को आगे बढ़ाते हुए, उधर रमेश बिजली का काम कर रहा था। एक कोने में रमेश बिजली का काम कर रहा था, एक खंभे से तार बाहर निकला हुआ था। अम्मा ने देखा और सीधे उसके पास पहुंच गई। रमेश, ये तार कब से ऐसा लटका हुआ है? इसे ठीक करो जल्दी से। अम्मा, शाम तक ठीक कर दूंगा। अम्मा ने बोला, शाम तक किसी बच्चे को करंट लग गया तो? रमेश ने सिर खुजाया और बोला, ठीक है अम्मा, अभी कर देता हूँ। जैसे ही अम्मा आगे बढ़ी, रमेश ने राहुल से धीरे से कहा, यार, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से पहले अम्मा इंस्पेक्शन कर लेती है। दोनों हंस पड़े। शाम होते ही चौपाल पर सब जमा हो गए। राहुल, छोटू, सुनीता, रमेश और कुछ पड़ोसी। राहुल बोला, सच बताओ, अम्मा ने आज किस किस को डांटा? सब ने एक साथ हाथ उठा दिया और सभी हंस पड़े। छोटू बोला, मुझे लगता है अगर मच्छर भी अम्मा के घर के आसपास आ गया ना, तो उसे भी डांट पड़ जाएगी। इस बार हंसी और तेज हो गई। सुनीता बोली, मैं तो अम्मा को देखते ही नल बंद कर देती हूँ। और रमेश बोला, और मैं तार ठीक करने का नाटक। तभी मोहन हंसकर बोला, एक दिन अगर अम्मा एकदम चुप हो जाए ना, पूरा मोहल्ला इतना शांत हो जाएगा। राहुल ने भी मजाक में हाँ मिला दी। सच, एक दिन उनकी आवाज़ ना आए तो कितना सुकून मिले। सब फिर जोर जोर से हंसने लगे। लेकिन उनमें से किसी ने ये नहीं देखा कि चौपाल के पीछे अपनी छड़ी के सहारे अम्मा खड़ी थी। उन्होंने सब कुछ सुन लिया था। एक पल के लिए उन्होंने सबकी तरफ देखा। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बस एक गहरी खामोशी थी। वो बिना कुछ कहे धीरे धीरे अपने घर की तरफ लौट गई। अगली सुबह राहुल ने बाइक स्टार्ट की, लेकिन कोई आवाज नहीं दिया। हेलमेट पहन लो, किसी ने नहीं बोला। सुनीता ने नल खोला, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा कि पानी बचाओ। छोटू ने चाय बनाया, लेकिन कोई शिकायत करने वाली नहीं थी। मोहल्ला पहली बार इतना शांत था, और अजीब बात यह थी, आज किसी को वो शांति अच्छी नहीं लग रही थी। आखिर अम्मा गई कहाँ? तो दोस्तों, आगे की कहानी हम कंटिन्यू करते हैं एक छोटे से गीत के बाद।

वेलकम बैक दोस्तों। स्टूडियो में 1:01 हो रहे हैं और ये समय है हेलो रेनबो का। लेकिन मैं आप सभी दोस्तों के साथ एक इजाज़त मांगना चाहता हूँ। मैं बस 5 मिनट में ये कहानी ख़त्म कर दूँगा, फिर हमारा सेगमेंट हेलो रेनबो चालू हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसे हम बात कर रहे थे कहानी गुस्से वाली अम्मा के, कैसे पूरे मोहल्ले को अम्मा की हर बात, हर टोक, हर डांट से परेशानी थी। और जब चौपाल में सबने मिलकर उनका मजाक उड़ाया, अम्मा ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप घर चली गई। लेकिन अगले दिन उनकी आवाज़ की ऐसा लग रहा था कि अगले दिन पूरा मोहल्ला सन्नाटे से छा गया था, उनकी आवाज़ ही सुनाई नहीं दी। सुबह से शाम हो गई। राहुल 2 बार उस गली से गुजरा, लेकिन अम्मा अपनी

कुर्सी पर बैठी नजर नहीं आई। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, लगता है अम्मा सच में नाराज़ हो गई। लेकिन उसकी मुस्कुराहट में भी एक अजीब सी कमी थी। दूसरे दिन छोटू चाय बना रहा था। उसने आदत से मजबूर होकर एक कप अलग रख दिया, फिर खुद ही मुस्कुराया, अरे अम्मा तो आई ही नहीं। पहली बार उसकी दुकान कुछ खाली खाली सा लग रहा था। तीसरा दिन सुनीता ने घर के बाहर पानी डाला। अचानक उसने नल बंद कर दिया। उसकी बेटी ने पूछा, मम्मी आज इतनी जल्दी? सुनीता कुछ पल चुप रही, फिर बोली, पता नहीं, अम्मा होती ना तो याद दिला देती थी। ये कहकर वो खुद ही सोच में पड़ गई। शाम को चौपाल पर फिर वही लोग बैठे थे, लेकिन आज किसी के चेहरे पर हंसी नहीं थी। राहुल ने धीरे से पूछा, किसी ने अम्मा को देखा? सभी ने सिर हिलाया और बोला, नहीं। रमेश बोला, मैंने भी तो 2 दिन से नहीं देखा। छोटू ने कप रखा हुआ था, लेकिन अम्मा चाय पीने नहीं आई। यार चलो देख कर आते हैं। सब एक साथ उठे खड़े और अम्मा के पास गए। अम्मा के घर के दरवाज़ा अंदर से बंद था। राहुल ने आवाज़ लगाई, अम्मा! कोई जवाब नहीं। सुनीता ने जोर से दरवाज़ा खटखटाया, अम्मा दरवाज़ा खोलिए! फिर भी खामोशी। पड़ोसी की मदद से दरवाज़ा खुला गया और अंदर का मंजर देखकर सब सन्न रह गए। अम्मा बिस्तर पर पड़ी थी, चेहरा बुखार से तप रहा था। पास में पानी का गिलास आधा भरा था। दवाई की कोई गोली भी नहीं थी। लगता है 3 दिन से किसी ने उनका दरवाज़ा ही नहीं खटखटाया। राहुल भाग कर डॉक्टर को बुला लाया। रमेश ने पंखा ठीक करवाया। सुनीता रसोई में गई और खिचड़ी बनाकर लाई। छोटू दवा लेने मेडिकल स्टोर भाग गया। जिन लोगों को लगता था अम्मा सिर्फ डांटना जानती है, आज वही लोग उनकी सेवा में लग गए। डॉक्टर ने चेकअप के बाद कहा, चिंता की कोई बात नहीं, तेज़ बुखार और कमज़ोरी है, लेकिन इनका ध्यान रखना पड़ेगा। सबने राहत की सांस ली। सुनीता घर संभाल रही थी। तभी अलमारी के कोने से एक पुरानी डायरी नीचे गिर गई। उसने धूल साफ की, पहला पन्ना खोला और पढ़ना शुरू किया। लोग कहते हैं मैं बहुत गुस्सा करती हूँ। शायद वो सही कहते हैं, लेकिन सच ये है, मुझे गुस्सा कम, डर ज़्यादा लगता है। सब चुप हो गए। सुनीता ने अगला पन्ना खोला। मेरे पति एक दिन बिना हेलमेट के निकले थे। लोगों ने कहा, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट था, लेकिन उस छोटे से एक्सीडेंट ने मेरी पूरी दुनिया छीन ली। राहुल के हाथ से डायरी लगभग छूट गई। उसके कानों में अम्मा की वो आवाज़ गूंज रही थी, राहुल हेलमेट पहनो। उसकी नज़रें झुक गई। सुनीता ने अगला पन्ना खोला। मेरा बेटा बिजली के एक खुले तार की वजह से हमेशा के लिए मुझसे छोड़ गया, हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़ गया। तब से जब भी कभी खुला तार देखती हूँ, दिल कांप उठता है। रमेश की आंखों ने आंसू बहा दिए। उसे याद आया, हर बार अम्मा वही तार देखकर उसे टोक देती थी। आज पहली बार उसे समझ आया था, वो शिकायत नहीं थी। किसी और माँ की गोद सूनी ना हो, बस यह चाहती थी। डायरी का एक और पन्ना पलटा। अगर कभी मेरी डांट किसी को बुरी लगी तो मुझे माफ़ कर देना। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ किसी और घर का दिया मेरे तरह ना बुझे। डायरी बंद हो गई।

लेकिन पूरे कमरे में गहरी खामोशी छा गई थी। राहुल की आंखों से आंसू बह रहे थे। छोटू धीरे से बोला, हम कितने गलत थे। सुनीता ने अम्मा का हाथ पकड़ लिया और धीरे से कहा, अम्मा अब आप अकेली नहीं हैं। लेकिन क्या अम्मा को कभी पता चलेगा कि पूरा मोहल्ला अब उन्हें गुस्से वाली अम्मा नहीं अपनी अम्मा कहने लगा। इसका जवाब मिलता है कहानी के आखिरी हिस्से में। मन तो है एक गाना लगाने का, लेकिन समय बहुत कम है, तो इसलिए मैं गाने को पोस्टपोन करता हूँ और मेरी कहानी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। पिछले हिस्से में, यानी कि अभी तक, हमने सुना कि कैसे एक पुरानी डायरी ने पूरे मोहल्ले की सोच बदल ली। जिस अम्मा को सब गुस्से वाली समझते थे, वो असल में हर रोज़ किसी और को वही दर्द सहने से बचाना चाहती थी जो वो खुद सह चुकी है। अगले कुछ दिन मोहल्ले पहले जैसा था, लेकिन लोग पहले जैसे नहीं थे। अब राहुल बाइक स्टार्ट करता तो सबसे पहले हेलमेट पहनता और फिर आसमान की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान के साथ कहता, अम्मा देख लीजिए, आज बिना बोले ही पहन लिया। रमेश ने पूरे मोहल्ले के सारे खुले तार चेक कर दिए। जहां जरूरत थी सब ठीक करवा दिए। स्ट्रीट लाइट भी, जो महीनों से बंद थी, वो भी जल उठी, उसको भी ठीक किया गया। काम खत्म हुआ तो उसने धीरे से कहा, अम्मा इस बार इंस्पेक्शन में शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। छोटू ने अपनी चाय की दुकान पर एक छोटा सा बोर्ड लगा दिया, चाय संभाल कर लीजिए, बहुत गर्म है। नीचे छोटे अक्षर में लिखा था, अम्मा की सलाह। जी हाँ, क्योंकि अम्मा हमेशा बोलती थी चाय गर्म है, चाय ठंडी है, तो छोटू ने बोर्ड लगा दिया अपने दुकान पे और नीचे लिखा, अम्मा की सलाह। दुकान पर आने वाले लोग बोर्ड पढ़ कर मुस्कुरा देते। सुनीता रोज सुबह खाना बनाकर एक डब्बा अम्मा के घर भेज देती। एक दिन अम्मा ने पूछ ही लिया, बेटा इतना तकलीफ क्यों करती हो। सुनीता की आंखों में आंसू आए। तकलीफ तो तब थी अम्मा जब हम आपको समझ ही नहीं पाए। अम्मा कुछ पल चुप रही, शायद उनके पास उस बात का कोई जवाब नहीं था। कुछ ही दिनों में अम्मा ठीक हो गई। एक सुबह वो फिर अपनी पुरानी कुर्सी लेकर घर के बाहर बैठ गई। मोहल्ले वालों ने उनको देखा तो सबके चेहरे खिल उठे, जैसे घर की कोई अपनी चीज़ वापस आ गई हो। तभी राहुल बाइक लेकर निकला। अम्मा की पुरानी आदत फिर जाग उठी, राहुल राहुल। राहुल तुरंत रुक गया। जी अम्मा, धीरे चलाना। इस बार राहुल हंस पड़ा। जी अम्मा, और हेलमेट भी पहना है। अम्मा ने देखा, सच में उसने हेलमेट पहना हुआ था। पहली बार उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। थोड़ी देर बाद छोटू चाय लेकर आया, अम्मा पहले टेस्ट कीजिए। अम्मा ने एक सिप ली। छोटू घबरा गया, अब क्या कमी रह गई। अम्मा बोली, नहीं आज बिल्कुल ठीक है। छोटू ने हंसी हंस पड़ा और लगता है सर्टिफिकेट मिल गया। दोनों भी हंस पड़े। जी हाँ, लोगों ने अम्मा को पहली बार हंसते हुए देखना शुरू कर दिया। शाम को मोहल्ले के बच्चे अम्मा के आसपास बैठ गए। एक बच्ची बोली, अम्मा आज डांटोगे नहीं। अम्मा मुस्कुराकर बोली, नहीं आज कहानी सुनाऊंगी। और उस दिन बहुत सालों बाद उस मोहल्ले ने अम्मा की डांट नहीं सुनी, उनकी हंसी सुनी। उस दिन के बाद एक अजीब सी बात होने लगी। अब अगर कोई बिना हेलमेट के निकलता तो राहुल ही कह देता, अरे भाई अम्मा सह कहती है।

0: लो हेलमेट, वरना अभी मोहल्ले के सारे लोग डांटेंगे आपको। कहीं पानी बह रहा होता तो सुनीता खुद नल बंद कर देती है। खुला तार दिखता तो रमेश बिना देरी के उसे जाकर ठीक कर देता है, और अगर बहुत गर्म चाय उठा लाता तो छोटू हंसी में कहता, संभाल कर वरना अम्मा सपने में डांटेंगी। पूरा मोहल्ला हंस पड़ा। एक शाम राहुल अम्मा के पास बैठकर बोला, अम्मा एक बात पूछूं? अम्मा ने बोला, पूछो। अगर हम उस दिन आपके घर ना आते। अम्मा ने उसकी बात बीच में ही रोक दी, बेटा इंसान गलती करता है क्योंकि इंसान गलती का पुतला है, लेकिन जो अपनी गलतियां समझकर बदल जाए उसे उससे बड़ा इंसान कोई नहीं, उससे अच्छा इंसान कोई नहीं। राहुल की आंखें नम हो गई। उसने धीरे से अम्मा का हाथ पकड़ा और बोला, हम सब ने आपको सिर्फ सुना, कभी समझा ही नहीं। अम्मा ने उसके सिर पर हाथ रख दिया और बस इतना ही कहा, आप समझ गए ना, बस वही काफी है। दोस्तों, हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई गुस्से वाली अम्मा जरूर होती है, कभी माँ के रूप में, कभी पापा के रूप में, कभी दादा दादी या कभी पड़ोसी के आंटी के रूप में, जो बार बार कहते हैं धीरे चलाओ, फोन कम चलाओ, खाना खा लेना, हिम्मत से रहना। उस वक्त हमें लगता है ये सिर्फ टोकना है, लेकिन वक्त सिखाता है कि ये टोकना ही ये प्यार का दूसरा नाम है। अगली बार जब कोई आपको टोके या डांटे तो एक पल के लिए गुस्सा मत कीजिए। हो सके तो वो अपना प्यार शब्दों से नहीं, अपने फिक्र से जता रहे हो। और याद रखिए, डांट की आवाज़ तेज हो सकती है, लेकिन उसके पीछे छुपी दुआ हमेशा खामोश होती है। तो दोस्तों, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसे लगी। मैं अभी बिना देरी किए आपको हमारे नंबर्स बता दूं जहां पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। वो नंबर्स है 0402323-0030, 0402323-4821 और 0402970-4715। अगर आप कहीं बिजी है तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आपका कॉल ना लगे तो आप हमें इंस्टेंट व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, और नंबर है 4023234822। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, 4023234822। तो दोस्तों, आज की कहानी, सॉरी मेरा मतलब आज का जो क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बहुत टाइम से गाना नहीं बजाया ना, तो एक गाना बजा दूं छोटा सा, उसके बाद फिर हमारा कार्यक्रम चालू करेंगे हेलो रेनबो का। और देखा जाए तो कॉल्स आना चालू भी हो चुके हैं, मैंने अभी तक टॉपिक ही नहीं बताया यार, लेकिन चलिए एक बार सुनते हैं कि कॉलर कौन है। हेलो रेनबो।
1: हेलो, वेरी
0: हेलो,
1: वेरी वेरी वेरी वेरी वेरी गुड आफ्टरनून सर,
0: वेरी गुड आफ्टरनून सर,
1: श्रीनिवास
0: एलाउ नर सर मेरो
1: मलक्कीपल्ली,
0: గుడ్ సార్ గుడ్ సార్, ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్, మీ రేడియో దగ్గర ఉంటే కొంచెం దూరం చేస్తారా, ఎందుకంటే ఎకో వస్తుంది. రేడియో రేడియో మీ దగ్గర ఉంటే కొంచెం దూరం పెట్టండి. ఓకే ఓకే, షూర్ అండి. టాపిక్ నేను ఆలోచిస్తున్నాను సార్, ఇప్పుడు మనకు ఫ్రెండ్షిప్ డే వస్తుంది, మనకు 3rd August అయితే, ఆ రోజు నా డ్యూటీ ఉండదేమో, అందుకే ఈ రోజు దాని గురించి నేను మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నాను, ఈ రోజు దాని టాపిక్ గురించి చెప్దాం
1: అనుకుంటున్నాను.
0: సో ఇవాళ టాపిక్ నేనేమనుకున్నానంటే, మీ చిన్నప్పటి బెస్ట్ ఫ్రెండ్, ఇప్పుడున్న బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ కాదు, చిన్నప్పుడు బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు, వాళ్ళు వాళ్ళతో ఏదైనా మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే, మెమొరీ ఉంటే షేర్ చేయగలుగుతారా?
1: And about the childhood friendship also.
0: Chappandi sir.
1: Yeah, thank you. Acha, on air?
0: Yes sir, on air.
1: Yeah. Mee parent entaku?
0: JD, Jaydeep andi.
1: Jaydeep.
0: Avunandi, Jaydeep.
1: ఓకే అండి. జయదీప్ గారు నమస్కారాలు.
0: నమస్కారం సార్.
1: పిల్లలకు కూడా నమస్కారాలు, చిన్నవాళ్ళకు పెద్దవాళ్ళకు అందరికీ నమస్కారాలు.
0: థ్యాంక్ యూ సార్.
1: అయితే మీరు చెప్పిన టాపిక్ చాలా బాగుంది.
0: అవును సార్.

0: तो आज का टॉपिक सबसे पहले बहुत बढ़िया टॉपिक आपने लिया है,
1: बहुत
0: बहुत
1: धन्यवाद
0: बढ़िया
1: मैडम
0: टॉपिक है
1: जी।
0: और इसके बारे जितना भी कहा जाए कम होगा,
1: हाँ
0: है ना।
1: मैडम
0: तो मैं
1: जी
0: भी अपने चाइल्डहुड फ्रेंड के बारे बताऊंगी
1: जी
0: जो
1: जरूर।
0: सच में मुझे जान से ज्यादा अभी भी प्यारी है। जब
1: ओके
0: मैं स्कूल में पढ़ती थी, पहले भी मैंने कहा मैं झारखंड जमशेदपुर की पैदाइश हूँ, तो जमशेदपुर में जब मैं पढ़ रही थी तब की मेरी सहेली, उसका नाम बालामणि, और उसके साथ बहुत दिन तक पढ़ाई के बाद फिर मैं नौकरी में आ गई, इस तरह से हम लोग बिछड़ गए। लेकिन अचानक फेसबुक में फिर उसने मुझे देखा और उसने मुझे अपनी याद दिलाई, कहा कि हम लोग स्कूल में साथ साथ पढ़ते थे, तुम्हें याद है। मैंने कहा कि तुम्हें मैं बहुत मिस करती थी लेकिन तुम्हारा
1: यस
0: पता नहीं चल पाया।
1: जी
0: और
1: जी
0: उसके बाद से इसी बीच हम लोग फिर से जुड़ गए, बहुत अच्छे दोस्त, फिर से हम लोग बातचीत करते हैं। फिर जब मैं नौकरी में आई तो 25 साल से मेरी और दो सहेलियां, बहुत प्यारी सहेलियां हैं।
1: जी
0: एक का नाम कलावती गुप्ता, जो मेरे नौकरी में ही मुझे दोस्त मिली, और एक
1: ओके
0: कल्पना डे, वो भी आज तक मेरी दोनों की दोनों बहुत अच्छी सहेलियां हैं।
1: जी
0: और
1: जी
0: सच में जैसे आपने कहा, दोस्त के बिना तो जीवन अधूरा है,
1: जी हाँ मैडम
0: तो जीवन में दोस्त का बहुत महत्व है।
1: जी
0: और मैं एक चीज आपसे बताना चाहती थी कि जो कॉलर्स हैं वो अपने घर की कहानी ले बैठते हैं, उनको संक्षिप्त में बोलने का आप कम से कम अनुरोध करिए, क्योंकि दूसरों को मौका नहीं मिल पाता।
1: जी जी जी मैडम
0: बोलने वालों को ना संक्षिप्त में बोलना चाहिए, अपनी बात को रखनी चाहिए। लोग अपने घर की सारी बातें बताने लगते हैं जिससे एक ही दो कॉलर में सिमट जाते हैं,
1: जी हम
0: आपका
1: समझ
0: प्रोग्राम भी
1: सकते हैं,
0: सिमट जाता है
1: ये
0: दो
1: बात
0: तीन कॉलर में,
1: वाकई में सही है मैडम
0: है ना। इसलिए आप भी थोड़ी कोशिश करिए
1: जी जरूर।
0: और कॉलर्स को भी समझनी चाहिए इस
1: हम तो
0: बात
1: हमारा
0: को।
1: कोशिश जरूर करते हैं मैडम, लेकिन
0: नहीं,
1: अभी आप
0: मैं
1: सभी
0: समझ
1: लोग भी
0: सकती
1: हमको
0: हूँ,
1: फ्रेंड मानते हैं तो हम भी
0: है
1: अब
0: ना।
1: मना ही नहीं कर पाते
0: इसलिए हम लोग
1: हैं
0: नहीं मना नहीं कर, आप तो मना
1: जी
0: कर ही नहीं सकते,
1: जी जी जी
0: लेकिन उनको भी इसीलिए तो ये रेडियो के द्वारा उनको संदेश देना चाहती हूँ कि जो भी कॉलर वो संक्षिप्त में अपनी बात रखे,
1: जी जी जी
0: ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कहने का मौका मिले।
1: जी हाँ मैडम
0: और आज एक और बात है जयदीप, आज मोहम्मद रफी की पुण्यतिथि है, तो मैं
1: ओके
0: चाहती हूँ कि उनका एक गाना जरूर आप बजाएं, कोई भी
1: जरूर
0: गाना।
1: जरूर मैडम, मैं जरूर बजाऊंगा।
0: धन्यवाद,
1: बहुत बहुत
0: धन्यवाद।
1: शुक्रिया मैडम। तो जी हाँ दोस्तों, तो हम देखते हैं हमारा अगला कॉलर कौन है। हेलो रेनबो,
0: हाँ, गुड आफ्टरनून सर।
1: गुड आफ्टरनून मैडम।
0: वो दस ट्राई कर रही हूँ मैं, क्या टॉपिक है आज?
1: दोस्ती का मैडम,
0: हाँ, दोस्ती का है।
1: जरा हमारे
0: दोस्तों तो
1: दोस्तों को
0: बहुत है,
1: आपका
0: पूरे
1: नाम।
0: रेडियो चार मीनार रेडियो। मेरा नाम महजबीन, सोशल
1: हाउ
0: वर्कर,
1: जी
0: बाबा
1: जी
0: नगर से बात कर रही हूँ मैं। हमारी बहू का बर्थडे है आज।
1: अरे वाह, बहुत जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी बहू को
0: अरे है।
1: जी। मैडम बोलिए, तो आज का टॉपिक है फ्रेंडशिप।
0: हाँ दोस्तों, बहुत है ये रेडियो चार मीनार की फैमिली है, रैम्बो की आप लोग हैं सब,
1: जी जी
0: उसमें
1: जी
0: वक्त
1: बहुत बहुत
0: गुजर जाता।
1: शुक्रिया।
0: बहुत सब जने हैं तो बहुत वो करते मेरे को, हर कोई लाइक करते समझो,
1: हाँ वो तो
0: मैं वैसी
1: मालूम ही
0: हूँ
1: था
0: वैसा
1: मैडम
0: समझो। तो
1: जी
0: जरा है सो, जब से ट्राई कर रही थी,
1: चलो, आखिर कुछ
0: बहुत
1: लोगों का तो
0: बड़े
1: कॉल
0: छोटे। हाँ
1: लगता भी नहीं है, मतलब मिस हो
0: हाँ
1: जाता
0: नहीं
1: है।
0: नहीं
1: हम
0: लगता है,
1: खुद
0: मैं
1: को भी
0: कभी नहीं
1: अब बहुत
0: लगा।
1: अफसोस है इस
0: हाँ
1: बात
0: कबड्डी खेल रही, कबड्डी खेल रही मैं बोलती हूँ, मैं तो भूल गई
1: का
0: कबड्डी कबड्डी खेले जैसा दिखता वो शेरखान
1: जी जी जी जी
0: भाई, मेरे भाई है, इस पे आते ना
1: जी जी जी
0: ना भी ना है उन्होंने,
1: हाँ हाँ
0: बहुत सारे है, पूरे रेडियो चार मीनार की इधर आ गए उधर उधर, आरजे नहीं आ रही तो उधर
1: जी
0: भी करते थे, इधर के उधर कूदते थे, उधर के इधर कूदते थे, ऐसा।
1: जी जी जी मैडम
0: थैंक यू सर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद हमसे
0: एक
1: जुड़ने
0: बार
1: के लिए
0: हमारी बहू को बोलो, मैं कान को लगा रही हूँ।
1: जी। जरूर जरूर दीजिए।
0: बर्थडे
1: हेलो
0: विश करो हमारी बहू
1: हेलो
0: को।
1: मैडम, FM रेनबो आकाशवाणी की तरफ से आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी
0: थैंक यू
1: बर्थडे,
0: सो मच, थैंक यू
1: वेलकम।
0: सो मच।
1: तो दोस्तों ये थे मेज़बीन जी, और ये अपनी बहू का बर्थडे बता रहे थे आपको। हैप्पी बर्थडे FM रेनबो की तरफ से। तो चलिए दोस्तों, अब हम गानों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं एक खूबसूरत सा गाना। उससे पहले एक छोटा सा संदेश।
2: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఓటర్ జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ SIR 2026 జూన్ 25 నుంచి ఆగస్టు 3 వరకు గణన దశ. ఈ దశలో బూత్ లెవెల్

जी हाँ दोस्तों, मैं इस बारे में बात करना ही भूल गया कि आज मोहम्मद रफ़ी जी का पुण्यतिथि है और हम उनको FM रेनबो की तरफ से श्रद्धांजलि देते हैं। और हमें यहाँ पर व्हाट्सएप पे बहुत मैसेजेस आई है, कॉल्स भी आ रहे हैं, लेकिन मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि समय की पाबंदी है और हमें अभी बाय बाय टाटा बोलने का टाइम आ चुका है। और हमारे साथ अगली RJ हारिका जी आ चुकी है ऑलरेडी स्टूडियोस में, और आपको मज़ेदार जश्न हैदराबाद का प्रोग्राम बताने के लिए, ढेर सारी खूबसूरत बातें बोलने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं कुछ व्हाट्सएप के मैसेजेस पढ़ दूँ। यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं अश्विन जी कोठी कुशल मार्केट से, वो कहते हैं जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण आपको भी अश्विन जी। और ये कहते हैं, ये हमें मैसेज डाले हैं, जिंदगी किराए का मकान है, एक दिन चाबी लौटाना ही पड़ेगा, इसीलिए मोह कम और इंसानियत ज़्यादा रखिए। वाह भाई वाह, बहुत ही सच बात कही है आपने अश्विन जी। बहुत शुक्रिया हमारे दोस्तों को ये बात बताने के लिए। और हमारे साथ जुड़े हैं मंगा जी, और वो लिखते हैं, अन्ना नमस्ते, नमस्कारम मैडम, हैप्पी एंड प्लेजेंट डे, हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल माय फ्रेंड्स, अर्निका चंदू सिकंदराबाद। थैंक यू सो मच फॉर मैसेजिंग अस मैडम। एंड सरवर अली जी तो हमें स्टार्टिंग से सुन रहे हैं, वो हमें अपना रेडियो का फ़ोटो डाले है खूबसूरत सा, और गुड मॉर्निंग डाले है, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग सर। आज तो अभी मुझे टाटा बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है, अभी आपको एंटरटेन करने के लिए आएंगी हारिका जी। तो आज हम लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी टॉपिक्स पे बात किया है। मैं ये क्या बोलते, अनदेखा का नहीं करना चाहूँगा कि मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा नर्वस ज़रूर था और मेरा एनर्जी लेवल्स भी डाउन थे, लेकिन गानों ने और आपके कॉल्स ने मुझे एकदम जोश में भर दिया, और स्टोरी भी। बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आपने हम मेरी स्टोरी को इतना पसंद किया, और मुझे मैसेजेस भी आए हैं व्हाट्सएप पे, और मैं पूरे मैसेजेस पढ़ नहीं पा रहा हूँ एंड कॉल्स भी आ रही है, लेकिन अभी टाइम हो गया टाटा बाय बाय बोलने का। आज हमने बात किया जुलाई के महीने में जो कोई भी इवेंट्स थे उसके बारे में, और अगस्त के महीने में जो भी इवेंट्स आने हैं उसके बारे में, और हैप्पी फ्रेंडशिप डे के बारे में। तो सभी दोस्तों को हैप्पी फ्रेंडशिप डे।

101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी हैदराबाद है। स्टूडियोज की घड़ी में 9:30 हो रहे हैं। पेश है उर्दू प्रोग्राम नए रंग।

बिल्कुल दुरुस्त है कि सच कड़वा लगता है, लेकिन सच तो सच ही होता है अगर हम सच बात कहने के बजाय झूठ को अपनी जिंदगी में जगा देंगे। बार बार झूठ बोलते जाएंगे तो फिर हमारी जिंदगी में मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। एक कौल है कि सच खामोश हो तो खुशबू की तरह फैलता है, सच कलाम करे तो जादू की तरह असरअंदाज होता है, और अगर सच बाअमल हो तो खुशहाल कर देता है। सच और सच्चाई की इस बातचीत के दौरान मुझे मिर्ज़ा गालिब का ये शेर याद आ रहा है कि उन्होंने लिखा था, सादिक हूँ अपने कौल का गालिब खुदा गवाह, सादिक हूँ अपने कौल का गालिब खुदा गवाह, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे। समीन, हम सबको चाहिए कि हम सच बोलें, झूठ बोलने से गुरेज करें, क्योंकि झूठ बहुत तेज़ी से फैलता है लेकिन सच देर ही से सही अपनी मंजिल पा लेता है और आखिरकार सच सामने आ ही जाता है। यह आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर और आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नए रंग अपनी रेडियो दोस्त आयशा बतुल अफशां के संग।

0: समीन मौसम बरसात में अनगिनत बीमारियां फैलती हैं, वो भी ऐसी बीमारियां जो कि मुतादी होती हैं, यानी एक से दूसरे को लग जाती हैं। लेकिन कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जिन्हें हम इख्तियार करके इन मुतादी बीमारियों से बच सकते हैं। आज डॉक्टर माइक पर सिलसिले के तहत डॉक्टर शाह अली हुसैनी मौसम बरसात की बीमारियाँ और एहतियाती तदाबीर पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब से बातचीत की है डॉक्टर गौसिया बानो ने। आइए जानते हैं कि मौसम बरसात की वो बीमारियां कौन सी हैं और हमें उनसे बचने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ज़रूरत होती है।
1: समाइन आदाब, मैं हूँ गौसिया बानो और आकाशवाणी के नए रंग उर्दू प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल करती हूँ। आज हमारा प्रोग्राम डॉक्टर माइक पर इंटरव्यू में आपको हम एक ऐसे डॉक्टर से मुतारिफ करवाएंगे जो हमें जहद शख्सियत के मालिक है, जिनका तारुफ सुनकर आप ये महसूस करेंगे कि आज भी बहुत तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर्स ऐसे मौजूद हैं जिनसे न सिर्फ गुफ्तगू करके आप अपनी मालूमात में इजाफा कर सकते हैं बल्कि बहुत से एहतियाती तदाबीर से वाकिफ हो सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर सैयद शाह अली हुसैनी साहब की। ये एक माहिर तजुर्बेकार डॉक्टर है और इनका अगर हम बैकग्राउंड देखते हैं तो ये उस्मानिया अस्पताल में, एक बड़ा अस्पताल है ये, तो इस हॉस्पिटल में इन्होंने 2 साल खिदमत अंजाम दी। सन 2000 से अपोलो हॉस्पिटल में DMO के ओहदे पर फाइज रहे और फिर एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर भी 13 साल तक खिदमत अंजाम दी। न सिर्फ ये डॉक्टर का माहिराना तजुर्बा रखते हैं बल्कि इंतज़ामिया में भी इनको बहुत दर्क है। 2013 में कॉन्टिनेंटल अस्पताल में इमरजेंसी फिजिशियन और एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर उन्होंने अपनी बेहतरीन कारकर्दगी पेश की, मेडिकल सेटअप भी किया है। दूरे शैवार अस्पताल में 3 साल इमरजेंसी में मेडिकल केयर के शोबे में रहे और मौजूदा वक्त पर वो वेस्टर्न मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल लकड़ी का पुल में ऑपरेशन, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में अपनी बेहतरीन खिदमात अंजाम दे रहे हैं। सामाइन, ये जो मौसम चल रहा है आप इससे ज़रूर लुत्फ अंदोज़ हो रहे होंगे, ये एक बहुत ही रोमान परवर मौसम होता है। उर्दू अदब में तो इसकी ख़ास अहमियत है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह हो या नज़ीर अकबर आबादी, सब ने ही मौसम बरसात के ताल्लुक़ से नज़में लिखी है और हमारे पास तो ये तरीक़ाकार रहा है कि जब भी मौसम बरसात आता है तो हम बहुत उसको इंजॉय करते हैं, बहुत खुशियाँ मनाते हैं और एक तरह से पकवानों में भी हमारा जो तरीक़ाकार होता है वो बदल जाता है। हम लजीज पकवान पसंद करते हैं और ख़ास कर ये कहा जाता है कि जब भी मौसम बरसात के रिमझिम शुरू हो जाए तो फिर आलू और पकौड़े ज़रूर हमारे दस्तरखान की जीनत बन जाते हैं, जिसको मज़े लेकर हम खाते हैं और मौसम का इस्तकबाल करते हैं। लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे जहन में हमेशा से रहती है, क्या इस मौसम बरसात को हम इंजॉय करते हुए कहीं बीमार ना पड़ जाए, कहीं

0: लेके खराश ना हो जाए, कहीं हमको सर्दी ना लग जाए। और जो हम देखते हैं आसपास का माहौल, तो वहां पर वायरल इन्फेक्शन हो रहे होते हैं। इन सारे सवालात पर, इन सारे मौजूदात को लेकर हम डॉक्टर साहब से जरूर बात करेंगे और आपके उन तमाम मसाइल के हल को तलाश करने की कोशिश करेंगे जो आपके जहन में मौसमी बरसात को लेकर चल रहे हैं। तो आइए हम डॉक्टर साहब से गुफ्तगू करते हैं। प्रोग्राम है डॉक्टर माइक पर और इसमें हम डॉक्टर सैयद शाह अली हुसैनी से गुफ्तगू कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में आपका तहे दिल से खैर मकदम है।
1: अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाने का। जैसा कि आपने फरमाया,
0: जी
1: मौसम में बरसात जैसे आती है, आमद होती है, उसके साथ साथ जो है बहुत सारी बीमारियां भी वो साथ में लेकर आती है।
0: जी
1: तो जहाँ मौसम में बरसात में जो है वायरल फीवर बहुत ज़्यादा होता है, और क्योंकि पानी के जमने की वजह से मच्छरों की भी काफ़ी तादाद हो जाती है, और मच्छरों से हमको जो है जो बीमारियां फैलती है, हर घर में मच्छर होते हैं, और मच्छर की वजह से प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसा मलेरिया है, डेंगू है, तो कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होते हैं और कुछ वायरल इन्फेक्शन भी होते हैं उस पर। तो इसीलिए इससे जो है बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है। ख़ास तौर से जहाँ पे मस्कीटोज़ होते हैं, उसका जो है आप एहतियाती तौर पर जो भी आप इस्तेमाल करें मच्छरों से बचने के लिए, और जहाँ पे पानी जमा होता है वहीं पे ये मच्छर जो है अपने अंडे देते हैं, और लाखों की तादाद में मच्छर जो है वहाँ से निकलते हैं और मुख्तलिफ घरों में जाकर जो है वो बीमारी फैलने का ज़रिया बनते हैं। उसमें सबसे अहम बीमारी होती है जैसा कि मलेरिया होता है
0: जी
1: और डेंगू फीवर होता है। ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, बच्चों में भी बहुत ज़्यादा कॉमन होता है और बड़ों में भी बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। और इसकी जो है आमतौर पर इसकी तजुर्बा हर इंसान को होता है कि मलेरिया हुआ तो हाई ग्रेड फीवर होता है, और उसका जो है लैब टेस्ट भी होता है मलेरिया का, और उसका जो है ट्रीटमेंट भी उसके हिसाब से होता है। डेंगू एक ऐसी बीमारी है जो वायरल फीवर है और जो मलेरिया से ही होती है, और वो काटने की वजह से जब इंसान को वो फीवर होता है तो हम ये समझते हैं कि ये मामूली फीवर है, आम फीवर है, लेकिन जब ये फीवर कम नहीं होता और पेशेंट की हालत दिन ब दिन बिगड़ते जाती, तब हम डॉक्टर से रुजू होते और जब टेस्ट करवाते तो पता चला कि डेंगू फीवर है। और डेंगू में भी जो एक जो है जो प्लेटलेट्स उसमें कम हो जाते हैं, बज़ा औक़ात अगर इस पर वक्त पर तवज्जो नहीं दी गई तो ये कभी कभी जानलेवा भी हो सकते हैं, और कभी कभी लॉन्ग स्टे इन आईसीयू भी होता है, खून पे खून चढ़ाना पड़ता है और बहुत ही ज़्यादा बैड और इमरजेंसी कंडीशन हो जाता है। तो इसीलिए जो है मेरी जो गुजारिश है या मेरा जो तजुर्बा है वो ये है कि कोई भी बुखार को जो है मामूली ना समझें, ख़ासतौर से ये मौसम में जो बारिश का बुखार होता है जिसमें मलेरिया और डेंगू की काफ़ी जो है केसेस होते हैं, तो उन केसेस में जल्द से जल्द जो है डॉक्टर से रुजू हो, उनके मशवरा करें, उनसे जो है लैब टेस्ट करवाएं और उनसे अपना पूरा ट्रीटमेंट ले लें, और पता कर लें कि भाई ये मलेरिया है या ये टाइफाइड है या डेंगू है, या फिर जो है आगे चल के जो है और भी मैं आपको बताऊंगा, जैसा वायरल फीवर होता है,
0: जी हाँ
1: वायरल फीवर की भी जो है कुछ अलग निशानियां होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा
0: जी,
1: इंशाल्लाह।
0: हम यही जानना चाह रहे थे कि इस मौसम में सर्दी बुखार की जो आम शिकायत होती है उस पर आपने तफसीली रोशनी डाली है कि किस तरह इसकी वजह होती है कि मच्छर आसपास जमा हो जाते हैं, फिर उनके काटने से भी बुखार हो सकता है। लेकिन जो एक अभी हम वायरल बुखार की बात कर रहे थे, तो वायरल इन्फेक्शन क्या होता है?
1: देखिए वायरल इन्फेक्शन भी एक तरह का बुखार ही होता है, जैसा जो है हमें टाइफाइड में, मलेरिया में, डेंगू में जैसा होता है, तो ये भी वायरल में जो है एक तरह का बुखार ही होता है। इस बुखार की खासियत क्या होती कि हाई ग्रेड फीवर होता, बहुत ही ज़्यादा बुखार होता और कम्प्लीट जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा होता, और ये जॉइंट पेन जो है हर यानी आपको उठना बैठना भी आपके लिए मुश्किल हो जाता, छोटे जॉइंट्स भी दर्द होते हैं, बड़े जॉइंट्स भी दर्द होते हैं। तो बुखार के साथ साथ अगर आपको जॉइंट पेन है तो आप सस्पेक्ट कर सकते हैं कि ये वायरल है।
0: तो ये
1: अब
0: इसकी
1: वायरल
0: पहचान
1: में
0: है एक
1: ये
0: जी
1: वायरल वायरल फीवर है, अब वायरल में देखना है कि भाई डेंगू है या फिर कुछ और जो है वायरल है देखना है। हमारे यहाँ जो लैब टेस्ट होते हैं सारे वायरल के टेस्ट नहीं होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि डेंगू जो है नॉर्मल नेगेटिव आता है लेकिन उसके बावजूद भी जो है जॉइंट पेन और जो वायरल सिम्टम्स होते हैं। तो वायरल सिम्टम में हाई ग्रेड फीवर का होना, जॉइंट पेन का होना, मूवमेंट्स की कमी होना, उठने बैठने में तकलीफ होना, ये सारी चीज़ें जो है वायरल फीवर की निशानी है। वायरल का अपना एक टाइम होता है जैसा इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, कि जब कोई जर्म, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस आपकी बॉडी में अगर आता है थोड़ा मस्कीटो या थोड़ा और कोई भी चीज़ से, तो उसमें उसका जो पीरियड है वो 14 डेज का होता है।
0: यानी 2 हफ्ते
1: 14 डेज
0: तो वो
1: दो
0: रहेगा
1: हफ्ते
0: ही।
1: आपको जो है ये पूरा रहेगा, आप इलाज कराए तो भी रहेगा, इलाज नहीं कराए तो भी रहेगा। और कभी तो ऐसा देखने में आता कि वायरल फीवर में आपको एक एक महीना गुजर जाता, बुखार कम भी हो जाता लेकिन जॉइंट पेन कम्प्लीटली नहीं जाता,
0: जी हाँ, ये
1: उसके
0: शिकायत
1: असरात एक एक
0: होती
1: महीने
0: है
1: तक भी रहते
0: जी,
1: हैं,
0: बिल्कुल
1: 40 डेज तक भी रहते हैं। तो उसके बाद फिर वो ग्रेजुअली जो है वो चला जाता है। इसकी वजह क्या है बोले तो, जब हम वायरल फीवर डायग्नोज करते

0: तो एंटीवायरल मेडिकेशन नहीं देते हैं, एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन देते हैं। और एंटी बैक्टीरियल इसीलिए देते हैं कि जो अगर उसके साथ की भी कोई अगर इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शन भी ख़त्म हो जाए। वायरल तो अपना टाइम लेकर ही ख़त्म होता है, यानी 14 डेज उसका मैक्सिमम टाइम होता है।
1: जी
0: किसी को 1 हफ्ते के अंदर भी ख़त्म हो जाता, किसी को 10 दिन और 15 दिन भी लग जाते, और किसी को जो है 15 दिन के बावजूद भी बुखार तो कम हो जाता लेकिन जॉइंट पेन उसको बाकी रहता। तो वायरल फीवर की ये खास निशानी है, जॉइंट पेन होता है, हाई ग्रेड फीवर होता है, एक्टिविटीज़ कम हो जाती, उठने बैठने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती, हर जॉइंट, छोटी जॉइंट और बड़ी जॉइंट दोनों भी बहुत ज़्यादा मुश्किल में आ जाते हैं।
1: जी आपने बहुत अच्छे से हमें बताया कि किस तरह कुछ लोगों को 15 दिन होता है, किसी को 8 दिन में ठीक हो जाता है और किसी को और ज़्यादा वक्त लेता है। तो क्या ये एक तरह से उनका जो इम्यूनिटी पावर होता है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है, उसका भी असर होता है इस पर?
0: हाँ देखिए, कोई भी इन्फेक्शन है हमारे एटमॉस्फेयर में, हर तरह का इन्फेक्शन बॉडी में है। जिस वक्त आप में बैठे हैं, बाहर का माहौल है, अंदर का माहौल है, तो हमारे अतराफ में एटमॉस्फेयर में काफ़ी बैक्टीरिया है, जर्म्स है, इन्फेक्शन है, वायरल है, सब है। लेकिन हम बचे हुए क्यों हैं? हम बचे हुए सिर्फ इसीलिए है कि हमारा जो डिफेंस मेकानिज़म है बॉडी का वो बहुत अच्छा है, क़ुव्वत मुदाफ़ी जिसको बोलते हैं आप, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इसकी वजह से हम हमेशा बीमार नहीं होते, डेली बेसिस पे बीमार नहीं होते। लेकिन जब ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम कमज़ोर पड़ जाता
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल
0: फिर वहाँ पे उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन का भी आना, वायरल इन्फेक्शन का होना, कोई भी बीमारी का होना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। इसलिए कहते हैं ना कि जो है अपने क़ुव्वत मुदाफ़ियत यानी अपना डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस सिस्टम बॉडी का बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके लिए क्या है? उसके लिए जो है वक्तन वक्तन आपको अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करना,
1: किस किस्म की गिज़ा खानी
0: फ्रेश जो
1: चाहिए
0: है, जो
1: मुझे?
0: ग़िज़ा होती है वो फ्रेश वेजिटेबल्स होते हैं, मटन है, चिकन है, और प्रोटीन लेवल के जो है बहुत ज़्यादा जो अच्छी ग़िज़ाएँ होती है, अंडा है, एग है, तो
1: जी
0: इस तरह की जो है आप चीज़ें अगर लेंगे, फ्रेश अगर आप लेंगे, घर में बनी हुई लेंगे, बाहर की बनी हुई नहीं, घर की बनी हुई होती है, तो हाइजीनिक कंडीशन में हम लोग उसको पाक साफ करके हम उसको बनाते हैं, वो ग़िज़ा का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारा डिफेंस मेकानिज़म भी अच्छा होगा। और डिफेंस मेकानिज़म अगर अच्छा होगा तो एटमॉस्फेयर में भले ही कितने भी जर्म्स हो, बैक्टीरिया हो, वायरल हो, हमारे पे इफेक्ट नहीं होता।
1: जी
0: जैसा हम आप डे टू डे ज़िंदगी गुजारते, बरसों हम बीमार नहीं होते, क्या वजह है? इस ये वजह ये नहीं है कि हमारे अतराफ में इन्फेक्शन नहीं है,
1: हाँ
0: वजह यह है कि हमारे अंदर का क़ुव्वत निज़ाम, मुदाफियत का निज़ाम जो कुदरत ने रखा है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए हम लोग जो है
1: अल्हम्दुलिल्लाह
0: बीमार नहीं पड़ते।
1: जी
0: लेकिन वही लोग बार बार बीमार पड़ते हैं जिनका क़ुव्वत मुदाफियत निज़ाम, उनका अपना बॉडी डिफेंस बहुत कमज़ोर पड़ता है, ख़ासतौर से लेडीज़ में अगर देखा जाए, जिनमें खून की कमी हो जाती, एनीमिया होता,
1: अक्सर हमारे
0: वीकनेस
1: पास
0: होता,
1: ये प्रॉब्लम
0: वीकनेस
1: होती
0: होता,
1: है। जी
0: और खून की कमी होती, और खून की कमी चाहे किसी वजह से भी हो, लेकिन जहाँ खून की कमी हुई वहाँ पे क़ुव्वत जो है मुदाफियत का निज़ाम ऑटोमेटिक कमज़ोर पड़ना शुरू होता।
1: ये बहुत अहम
0: तो
1: बात
0: ऐसी
1: बताई
0: सूरत
1: आपने
0: में,
1: जी।
0: आप जो है ज़्यादा बीमार होने के चांसेस होते हैं, या यूँ समझे कि मामूली मामूली बात पे आप थक जा रहे हैं, मामूली मामूली बात पे
1: हाँ
0: बुखार आ जा रहा, और
1: बिल्कुल
0: मामूली में मामूली काम भी आप नहीं कर पा रहे हैं, जो घरेलू किस्म के जो काम होते हैं वो काम भी जो है ख़वातीन नहीं कर पाते, इसलिए कि उनके अंदर जो है क़ुव्वत मुदाफियत का जो निज़ाम है, डिफेंस मेकानिज़म जो है अंदर का बहुत कमज़ोर हो जाता है। जैसा मैं बात किया था आपसे वायरल फीवर की, डेंगू फीवर की, प्लेटलेट जो कम होते हैं बॉडी में, वो भी खून के एक जरासी में, जर्स में है, जिनको हम जो है प्लेटलेट्स बोलते हैं, वो है आपका असल क़ुव्वत मुदाफियत डिफेंस मेकानिज़म। अगर मान लीजिए वो कम, हम डेंगू फीवर में क्या देखते हैं ज़्यादा, कि डेंगू फीवर में हम ये देखते हैं कि भाई कहीं इनके प्लेटलेट्स कम तो नहीं हो गए, खून की मकदार बराबर रहती लेकिन प्लेटलेट्स कम हो जाते। प्लेटलेट्स कितने कम होते हैं? 1 लाख से लेके 4.5 लाख पर क्यूबिक में जो है उसकी एक मकदार है, उस मकदार को आपको मेंटेन करना है। लेकिन डेंगू में क्या होता है, 1 लाख के अंदर हो जाते हैं, 80,000 हो जाते हैं, 60,000 हो जाते हैं, 30,000 हो जाते हैं। लेकिन जब ये लेवल 30,000 के अंदर होता है तो बस पेशेंटों में अंदर से इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, और सबसे ज़्यादा
1: ये
0: ब्लीडिंग पहले
1: खतरनाक
0: गम
1: होता
0: ब्लीड
1: है
0: होना शुरू होती,
1: जी।
0: गम्स में ब्लीड होती, उसके बाद फिर जो है माउथ ब्लीड होती, उसके बाद स्क्लेरा आँख के अंदर आप देखें तो ब्लीडिंग स्पॉट्स आपको नज़र आते, उसके बाद बॉडी में, स्किन में उसके ब्लीडिंग स्पॉट्स नज़र आते। ये डेंगू के खास फीचर्स है।
1: जी
0: ये कब होते हैं? जब आपके क़ुव्वत जो डिफेंस जो मैकेनिज्म आपका कमज़ोर पड़ता, और जब आपको जो है प्लेटलेट्स आपके कम हो जाते, जो मेन आपके डिफेंस आर्मी है आपके बॉडी
1: हाँ
0: में जो आपको फाइट करने वाली है, वही आपके कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो जरासीम जो है उसके ऊपर अटैक करना शुरू
1: बहुत
0: कर
1: ज़्यादा
0: जाते हैं,
1: अटैक
0: बहुत
1: करते
0: ज़्यादा
1: हैं
0: अटैक करना
1: जी।
0: शुरू करते हैं, उसकी वजह से इंसान कमज़ोर पड़ जाता है। तो हमारा अपना जो रीडिंग है वो ये कि भाई अगर 30,000 के अंदर हो जाता है तो हम उस पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि भाई फौरी है जो है हॉस्पिटलाइज हो जाइए,
1: जी
0: भले ही आपको बुखार नहीं है। कई पेशेंट
1: हाँ
0: ऐसे भी देखने में आते हैं जिनको बुखार नहीं है, चलते फिरते हैं, खाते पीते भी हैं, लेकिन डिफेंस मैकेनिज्म कम है, प्लेटलेट्स कम हो गए, उसके बावजूद भी हम उनको एडवाइस करते हैं कि आप आईसीयू में, नॉर्मल वार्ड में
1: जी
0: नहीं, आईसीयू
1: जी
0: में एडमिट
1: बिल्कुल
0: होना, आईसीयू में एडमिट होके हम डे टू डे उनको हम मॉनिटर करते हैं कि भाई आज कितने प्लेटलेट्स इनके हुए,
1: हाँ
0: कल कितने गिरे उनके। तो एक लेवल ऐसा आता, लीजिए कि आप 30,000 से अगर बिलो हो गए

0: तो हम वैसे लोगों को जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्लेटलेट
1: जी
0: देना
1: जी
0: बल्कि उनको एडवाइस करते ताकि उनके डिफेंस मैकेनिज्म को इम्प्रूव कर सके,
1: बिल्कुल
0: वो अच्छा कर सके। तो इसलिए डेंगू फीवर में जो खास बात हमको देखनी होती है कि भी इनका डिफेंस प्लेटलेट कितने कम हो रहे हैं। अब बाज़ पेशेंट तो ऐसे होते हैं कि 5,000 7,000 8,000 प्लेटलेट्स उनके हो जाते हैं, वैसी जरूरत में उनको ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है। और उसमें भी अगर हम थोड़ी अगर लापरवाही बरतते हैं तो कई ऐसे बच्चे और बड़ों को जो है आईसीयू में एडमिट होने के बाद भी, खून चढ़ाने के बावजूद भी, जब मल्टीपल निज़ाम सिस्टम का बॉडी में जो है
1: मुतासिर होने
0: स्टार्ट
1: लगता है।
0: मुतासिर होना
1: जी
0: शुरू होता, तो इंटरनल ब्लीड भी होती, ब्लीड स्टार्ट होती गम से, गम्स में होती, उसके बाद स्क्लेरा में आँख के अंदर होती, बॉडी में जो है आपके स्किन के ऊपर जो है ब्लीडिंग के
1: स्पॉट्स
0: स्पॉट्स
1: होने
0: आना शुरू
1: चाहिए।
0: हो जाते। और जब और थोड़ा डीप अगर आप थोड़ा इसको इस कंडीशन को अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड उसमें देखें तो इंटरनल ब्लीड स्टार्ट हो जाती, ब्लीड आपको लंग्स में होंगी, ब्लीडिंग आपको हार्ट में होंगी, ब्लीडिंग
1: सारा
0: आपको जो है ब्रेन
1: निजाम।
0: में होंगी। अगर इस तरह की कोई कैफियत आ जाए कि जहाँ पे इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, उस पेशेंट को किसी भी कीमत पे बचाया नहीं जा सकता। तो इसीलिए हम एज ए डॉक्टर हमारी पहली फिक्र क्या होती है कि भाई इस पेशेंट को पहले इसका डिफेंस मेकानिज्म करेक्ट करो, इसके प्लेटलेट्स पहले इम्प्रूव करो, उसके बाद फिर जो है हम दूसरे मेडिसिन वगैरह उसको साथ में देते। तो
1: जी
0: कई
1: जी
0: बच्चों का जो है जो दवाखाने में कम उम्र में 5 साल 10 साल में जिनका इंतकाल होता, या कई ऐसे बड़े होते हैं बुजुर्ग होते हैं और प्लेटलेट्स उनका बहुत कम हो जाता है, तो उसमें वो कोप अप नहीं कर पाते, बॉडी मैकेनिज्म डिफेंस मैकेनिज्म उनके बराबर नहीं होती, तो वैसी सूरत में अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाती इंटरनल ब्लीड की वजह से।
1: जी ऐसे
0: तो इसीलिए
1: वाकयात हम अक्सर
0: इसको बहुत
1: सुनते
0: ज़्यादा
1: हैं।
0: मामूली भी नहीं समझना चाहिए और बहुत ज़्यादा लाइट भी रहना चाहिए, चलो मामूली बुखार है
1: हाँ
0: तो वैसा भी नहीं होना। और जहाँ इस तरह की कोई निशानी आ जाए कि कहीं कहीं ब्लीडिंग हो रही है या रेडनेस आ रहा है गम्स के अंदर आ रहा है, होठों के अंदर आ रहा है, आँखों के अंदर आ रहा, या कहीं भी ब्लीडिंग स्पॉट्स अगर आपके स्किन में नज़र आ रहे हैं, तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू होना और उसके लैब टेस्ट करवाना और हो सके तो हॉस्पिटलाइज हो जाना।
1: बिल्कुल समाइन, आपके लिए ये सारी मालूमात बहुत अहमियत रखती है और हम सबको इस बात से आगाह करती है कि हम किसी भी बुखार को मामूली ना समझें। और डॉक्टर साहब ने हमारे लिए अहम बात ये बताई कि अक्सर ऐसे केसेस में बुखार भी नहीं होता है, लोगों को पता भी नहीं चलता है, सिर्फ एक हल्की सी वीकनेस उनको महसूस होती है, लेकिन अंदर ही अंदर सारा निज़ाम तबाह हो रहा होता है। और उसकी जो तफसील डॉक्टर साहब ने बताई, ऐसा लग रहा था कि हम बिल्कुल आंखों देखा हाल देख रहे हैं किसी पेशेंट का, कि कैसे वो इब्तदाई अलामत के साथ दाखिल होता है और फिर कैसा उसको खतरनाक मसाइल का सामना करना होता है। तो हम ये अक्सर वाकयात देखते हैं कि नौजवान बच्चे बच्चियां क्यों ना हो, वो जब डेंगू होता है तो इब्तदाई तौर पर उसे नहीं पहचाना जाता है और फिर अचानक पता चलता है कि उनकी डेथ हो गई है। तो हमारे लिए ये खासा एक खतरनाक वाकया होता है कि ये कैसे हो गया। और हमारे पास थोड़ी वहम परस्ती भी होती है, तो ये कहा जाता है कि इससे कुछ हो गया होगा और इसके मतलब कुछ असरात हो गए होंगे। तो दरअसल ये सारी कहानी होती है
0: जी
1: उसके
0: जी जी
1: पीछे
0: जी
1: कि कैसे धीरे धीरे सब नुकसान हो रहा होता है बॉडी में और वो ऊपरी तौर पर जाहिरी तौर पर हमको पता नहीं चल पाता है। तो इसीलिए डॉक्टर साहब का कहना है कि आप फौरन टेस्ट करवाएं, जब भी आपको बुखार हो तो आप टेस्ट करवा कर ये इत्मीनान कर ले कि ये डेंगू का बुखार तो नहीं है या फिर कुछ और तो नहीं है। अगर ये ऐसा नहीं होता है तो ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात होती है कि वो वायरल इन्फेक्शन होगा, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन हमको किसी भी अलामत को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब हमें बहुत ही मुफीद मालूमात फराहम कर रहे हैं कि कैसे हमको बुखार को पहचानना चाहिए और उसका टेस्ट करवाना चाहिए और आगे का इलाज शुरू करना चाहिए। और ये भी उन्होंने बताया कि न सिर्फ हमको डॉक्टर से रुजू होना है, बल्कि अगर प्लेटलेट्स बहुत कम हो रहे हैं तो हमको फौरन आईसीयू में भी जाने की जरूरत पड़ सकती है। तो अब डॉक्टर साहब हम ये जानना चाहेंगे कि आपने बहुत मुफीद मालूमात दी कि हमें क्या खाना चाहिए, किस तरह से हमको बुखार आने पर अमल करना चाहिए, एहतियाती इकदाम करना चाहिए। तो अब ये भी सवाल पैदा होता है कि जो हमारे पास जो कल्चर होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूडी और ऑयली चीज़ों को पसंद करते हैं, और हमारे पास जब भी बरसात होगी तो फौरन पकोड़े तले जाते हैं और आलू और जो मिर्चियाँ होती है वो बहुत शौक से खाई जाती है। तो क्या करें, मतलब हम अपने जो खाने का हमारी जो क्रेविंग होती है उसको देखें या अपनी सेहत को देखें।
0: नहीं, दोनों भी चीज़ें देखना है, खाने
1: जी
0: का भी जो है शौक़ और ख्वाहिश इसी मौसम में ख़ास तौर से होती है, तो इस बात का उसमें ख्याल करें कि जो भी पकोड़े मिर्ची जो भी है घर की अगर बनी हुई हो तो वो पाक साफ होती है, हाइजीनिक
1: थोड़ी
0: होती है,
1: सी रियायत दे रहे हैं सर यहाँ पर
0: हाइजीनिक होती
1: हमें।
0: है, और
1: जी
0: बाहर की जो होती है कौन सा पानी मिला रहे हैं, कैसे उनके हाथ हैं,
1: हाँ हाँ
0: और
1: बिल्कुल,
0: बर्तन भी बराबर धोए जा रहे हैं नहीं धोए जा रहे हैं,
1: ये
0: हाथ
1: सारी
0: उनके कैसे
1: चीज़ें
0: हैं डाल रहे हैं
1: होती
0: कैसे
1: हैं।
0: उन्हों।
1: जी
0: और
1: जी
0: उसमें हम लोग डे टू डे ऐसे कई पेशेंट देखते हैं कि रात में एक दो मिर्ची खा लिए, थोड़े पकौड़े खा लिए, इंडाइजेशन हो गया।

0: शुरू हो गए, वॉमिटिंग शुरू हो गई, और फिर डिहाइड्रेशन शुरू हो गया, और फिर लो बीपी हो गया। तो इस तरह की चीज़ें क्या हुआ तो बोलते रात में एक दो तीन मिर्ची बाहर की खा
1: हाँ
0: ली है, कुछ
1: देखिए,
0: समोसा खा लिए, इस तरह की चीज़ों में
1: एक
0: तो
1: छोटी
0: रेन
1: सी चीज होती है
0: जी आओ।
1: लेकिन
0: लेकिन
1: बड़े
0: वो
1: मसाइल
0: बहुत
1: पैदा
0: ज़्यादा
1: कर
0: जो
1: देती
0: है होता,
1: है
0: अभी मैं रेटवे अभी भी आजकल भी देख रहा हूँ, क्योंकि
1: जी।
0: मौसम में बरसात शुरू हो गई और
1: हाँ
0: लोगों का शौक और ज़ौक जो है मिर्ची भजी और पकौड़ों की तरफ ज़्यादा होता
1: बिल्कुल
0: है। तो मेरा मशवरा यह है कि खाना तो चाहिए लेकिन घर की बनी हुई हो, हाइजीनिक उसमें हो, पाक साफ उसमें वो अगर हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। बाहर के है, मंडियों में है, ठेलों पे है, वो लोग सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं करते और उनकी अपनी आपसी जो उनका अपना जो है वो भी साफ़ नहीं रखते। हाथ जो है साफ रखना है, साफ़ बर्तन लेना है, पानी भी साफ, पानी कैसा वो लोग इस्तेमाल करते हैं हमको नहीं मालूम है।
1: जी।
0: एक बात मैं पानी के सिलसिले में ये अर्ज करता चलूँ, इस मौसम में बरसात में जो टाइफाइड का जो फीवर होता है वो मेन रीज़न जो है उसका वाटर वाटरबॉर्न डिसीज़ बोलते हैं उसको,
1: अच्छा
0: यानी ये डिसीज़ पानी से आती है। अब क्योंकि मौसम में बरसात है, पानी है, और पानी में ये जो है अगर ये बैक्टीरिया मिल जाता है तो इससे न सिर्फ मलेरिया डेंगू होता बल्कि ख़राब पानी के इस्तेमाल से टाइफाइड भी होता है।
1: ये जब हम टाइफाइड की बात कर रहे हैं तो इसकी तफसीलात बताइए हमें
0: टाइफाइड में भी जो है आमतौर पे फीवर की तरह ही होता है
1: जी।
0: टाइफाइड, लेकिन हाई ग्रेड फीवर होता,
1: और पानी
0: और
1: से इसका किस तरह ताल्लुक बनता है?
0: क्योंकि ये पानी पीने में आता,
1: अच्छा,
0: इस्तेमाल में
1: अगर
0: आता,
1: खराब पानी
0: ख़राब
1: होगा
0: पानी है
1: तो उसका असर होगा।
0: और हाँ जी हाँ पानी ख़राब है और फिर उसके ख़राब पानी के पीने के इस्तेमाल चाहे वो घर में हो चाहे वो बाहर हो,
1: जी
0: ख़राब पानी के इस्तेमाल की वजह से भी आता। और ख़राब पानी अगर मान लीजिए पकवान में भी आता है तो कभी कभी ये बैक्टीरिया भी ख़त्म नहीं होता पानी पकने के बाद,
1: पकने के बाद भी
0: बाकी रह जाता
1: इतना
0: वो,
1: ताकतवर होता
0: क्योंकि
1: है वो।
0: पकाते हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं पकाते, थोड़ा ही रहता उसमें, उसको भी एक
1: हाँ
0: सर्टेन डिग्री टेम्परेचर के साथ
1: जी
0: अगर
1: जी
0: पकाए तो वो बैक्टीरिया मरता है,
1: हाँ
0: लेकिन नहीं
1: हाँ
0: तो नहीं होता है वो। मगर अक्सर जो होता है पानी पीने में जो आता है,
1: जी
0: अब वो पानी जो है जो ख़राब होता है वो पी लेते हैं तो ये वाटरबॉर्न डिसीज़ है। वाटरबॉर्न डिसीज़ मतलब ये सीज़न में जो है टाइफाइड भी बहुत ज़्यादा होता है, और
1: बिल्कुल
0: टाइफाइड में फिर आपको हाई ग्रेड फीवर होना, वो सारी चीज़ें होती हैं, और हेडेक होता है, बॉडी पेन होता है, डायग्नोस करते हैं तो टाइफाइड बोल के निकलता है। अब ये टाइफाइड को इसकी भी एक ख़ास बात यह है कि अगर ये टाइफाइड को वक्तन अगर डायग्नोस नहीं किया गया तो यही टाइफाइड आपको पूरी बॉडी में फैल जाता, फैल के मल्टी ऑर्गन फेलियर में चले जाते हो लोग, हर एक सिस्टम जो है टाइफाइड की वजह से मुतासिर होता।
1: जी
0: अब वो मुतासिर होने की वजह से जो है इंसान फिर जो है हॉस्पिटलाइज होता, आईसीयू में होता, बहुत ज़्यादा जो है बैड कंडीशन में भी हो जाता, और कभी कभी जो है डेथ होने के चांसेस भी रहते हैं उसमें। तो इसीलिए जैसा मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका कि कोई भी फीवर को मामूली ना समझें, चाहे वो मलेरिया हो, चाहे
1: जी
0: वो डेंगू हो, चाहे वो वायरल फीवर हो, और चाहे वो टाइफाइड हो, कोई भी जो है फीवर को डायग्नोस करें, प्रॉपर डायग्नोस करें, प्रॉपर जो है उसका मेडिकेशन लें, और उस मेडिकेशन का ड्यूरेशन भी बराबर, किसी को 5 दिन देना पड़ता है, किसी को 7 दिन देना पड़ता, और कोई टैबलेट पे जल्दी रिस्पॉन्स करता, बाज़ लोग जो ऐसे होते हैं कि गोली हम देते हैं तो उसका रिस्पॉन्स नहीं आता, हम गोली को रखे फिर IV मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं, सेम एंटीबॉडी होता लेकिन उसको इंटावीनस फॉर्म में देते हैं, सुबह शाम का डोज के हिसाब से देते हैं, तो उसमें जल्दी जो है अच्छे होने के चांसेस रहते हैं। वो
1: यानी कि डॉक्टर की निगरानी
0: डॉक्टर की
1: जरूरी है
0: निगरानी में ही ज़रूरी है।
1: जी।
0: हॉस्पिटलाइज अगर ना भी होना पड़े तो आप सुबह शाम जो है अपने करीबी क्लिनिक में जाके IV एंटीबायोटिक आप ले सकते हैं। अक्सर काम करने वाले होते हैं या वर्किंग वुमेन्स होते हैं और जो स्टूडेंट्स होते हैं और जिनको एग्ज़ाम्स करीब है या एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो वही सी सूरत में उनको हम IV मेडिकेशन प्रीफर करते हैं ताकि वो जल्द से जल्द अच्छे हो जाए और अपने काम पर रुजू हो सके और अपने स्कूल और कॉलेज को जा सके। तो इसलिए मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जहाँ पे ये बीमारी होती है वहाँ पे टाइफाइड का भी ख्याल रखना है, क्योंकि मौसम में बरसात है, आज का
1: हाँ
0: मौसम भी जो है वही
1: जी
0: है,
1: वही
0: सीजनल है, तो ये सीजनल डिसीजेज का एक वन ऑफ द डिसीज़ है, जैसे टाइफाइड एक डिसीज़ है, मलेरिया एक डिसीज़ है, डेंगू एक डिसीज़ है, वायरल फीवर एक डिसीज़ है। तो इसके अलावा जो मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि जैसा आपने पहले बताया था कि सोर थ्रोट होता है, गले में खराश,
1: जी।
0: अब रात में भीग के आ गए, सुबह में खराश शुरू हो गई,
1: हाँ
0: अब सुबह खराश हो गई तो थोड़ा सा बुखार भी आने लग गया, तो ये भी एक तरह का वायरल इन्फेक्शन होता है जो नाक और गले के ज़रिए से फेफड़ों में उतरता है। पहले नाक के ज़रिए से ये जो है वायरस जो है जाता है, हलक में रहता, अगर आप इसको प्रॉपर इलाज नहीं करेंगे तो यही लंग्स में उतर जाता, फेफड़ों में चले जाता, तो पहले नाक मुतासर होती, नाक में भी इन्फेक्शन होता, और नाक में ENT डॉक्टर्स जो है ख़ासतौर से इस मौसम में बहुत ज़्यादा ENT केसेस होते हैं,
1: जी
0: जहाँ पे ईयर का भी मुतासर होते हैं, नोज़ भी मुतासर होता है, थ्रोट भी मुतासर होता है। अब ये इब्तदाई चीज़ हैं जो ऊपर ही ऊपर हिस्से में होती, अगर इसको वक्त पे ट्रीट कर दिया गया, इलाज हो गया इसका तो बेहतर है, ये नहीं हुआ और अगर बढ़ गया तो ये सारे इन्फेक्शन लंग्स में उतरता, लंग्स में उतरने के बाद फिर वो चाहे वो ब्रोंकाइटिस का नाम दे हो चाहे वो निमोनिया का नाम दे, जैसा हम
1: जी
0: बोलते हैं
1: जी
0: भाई सर्दी
1: हाँ
0: हो गई और निमोनिया हो गया,
1: बिल्कुल
0: तो ये निमोनिया तब होता है जब आप ऊपरी जो हिस्से पे नाक में गले में खराश को अगर आप निगलेक्ट करते हैं या अवॉइड करते हैं, تو ویسے صورت میں

0: ये फेफड़ों में जाता, जाने के बाद उसको भी निमोनिया की वजह से जो फीचर आते, जो जो ट्रीटमेंट आपको 3 दिन या 5 दिन में होना है, वो ट्रीटमेंट आपको जो है हफ्ते से 2 हफ्ते लग
1: जी
0: जाते, पैसा भी आपका उतना ही ज़्यादा
1: हाँ
0: होता, हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ता, और बजा औकात जो है ऑक्सीजन देना, नेबुलाइजर देना,
1: जी जी
0: ये सारी चीज़ें दे के एंटीबायोटिक दे के उसको रखना पड़ता।
1: और फिर
0: तो
1: महीनों तक आपकी
0: महीना
1: कमजोरी दूर
0: फिर
1: नहीं
0: वो
1: हो
0: कमज़ोरी,
1: पाती।
0: फिर वो भी अलग रहती कि उसके साथ कैसा करना। तो इसीलिए जो है जो सीजनल डिसीजेस है वो स्टार्ट विद अ नोज़ ब्लॉक, रनिंग नोज, स्नीजिंग, ये सारे सर्दी के सिम्टम्स है, और उसके बाद गले की खराश, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक उसका एक इन्फेक्शन का सिम्टम है। अगर घर में खराश हो गए, रात में पानी में भीग गए, जब पानी में भीगते हैं तो फिर फ़ौरन घर पे आना, अपने कपड़े फ़ौरन बदलना,
1: जी
0: अपने बाल फौरी पोंछना, बालों को ड्रायर से सुखाना और गर्म कपड़े पहनना, फिर चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल करना
1: ये
0: ताकि
1: बहुत
0: अपनी बॉडी
1: अच्छा
0: में गर्मी हो
1: जी
0: जाए। तो फ़ौरन अगर देर तक आप कपड़े गीले रखेंगे तो सर्दी चढ़ जाएगी, देर
1: बिल्कुल
0: तक अपने बालों को अगर आप गीला रखेंगे तो सर्दी चढ़ जाएगी, तो वो सर्दी फिर आपको हेडेक का बायस भी बनती। साइनस एक वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम है ये दिनों में, जो साइनोसाइटिस बोल के बोलते हैं, नाक के
1: जी
0: ऊपरी हिस्से में
1: हाँ
0: होता है वो साइनस। 4 साइनस होते हैं हमारे नाक के ऊपरी हिस्से में, जो हमारे बॉडी के डिफेंस को कंट्रोल करते हैं, यानी बाहर से कोई जर्म्स है, बैक्टीरिया है, वायरस है, तो जो है इन्हेलेशन अंदर नहीं जाना, तो कुदरती तौर पर वहाँ पर एक डिफेंस मेकानिज़म होता। लेकिन जब ये मेकानिज़म मुतासिर होता तो हम उसको साइनस का नाम देते हैं, भाई इनको साइनोसाइटिस हुआ है।
1: जी
0: साइनस आपको सारे होते हैं, लाइक सबको होता है नॉर्मली, साइनस सबको रहता है नॉर्मली नेचुरली, लेकिन जब वो मुतासिर होता है इन्फेक्शन की वजह से उसको हम साइनोसाइटिस बोलते हैं।
1: तो ये किस
0: ये
1: तरह मुतासिर होता है?
0: नाक के ज़रिए से सर्दी के मौसम में बारिश में भीगने से, सर्दी में जाने से, नाक के ज़रिए से वो अंदर जो साइनसेस हमारे हैं वो इन्वॉल्व होते, वो इन्वॉल्व होने के बाद जब वो इन्फेक्टेड होते हैं, मुतासिर होते हैं, तो हम उसको साइनोसाइटिस बोलते हैं। ये साइनोसाइटिस की वजह से चेहरे पे आपके जो है थोड़ा सा स्वेलिंग की वैसा होती, और थोड़ा आपको टेंडरनेस आता गया, थोड़ा टच करे तो आपको दर्द भी होता वो हिस्सों
1: जी
0: में, और ये चीज़ फिर जब हलक में उतरती तो सोड़ तोड़ शुरू होता, यानी इब्तदा वहाँ बीमारी वहाँ से हो गई आपकी, नाक हो गया, नाक के ऊपरी हिस्से में साइनस आ गए, साइनस से फिर आपको थ्रोट में आ गया, थ्रोट में भी अगर आपको नेगलेक्ट करे और इग्नोर करे तो फिर यही जो है फेफड़ों में उतरता, फिर वो निमोनिया का बास बनता। तो कई बार ऐसा होता कि नाक के अंदर के हिस्सों में भी एक एक तरह की स्वेलिंग आ जाती,
1: जी
0: जिसको हम
1: जी
0: पॉलिप बोलते हैं, नेसल पॉलिप
1: हाँ
0: बोलते हैं।
1: जी
0: वो पॉलिप क्या होता है, ये अंदर एक फुंसी नुमा हो के स्वेलिंग हो जाती, और वो स्वेलिंग जो है एयर को पूरी तरह से अंदर जाने नहीं देती, नाक बंद
1: इसीलिए
0: है,
1: जी हाँ
0: नाक बंद है बोलते,
1: बिल्कुल उनको
0: हवा
1: महसूस होता
0: नहीं जा रही
1: है।
0: पूरी अंदर, और
1: हाँ
0: डीप ब्रेथ लेना पड़ा अपने
1: जी
0: जो है ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए। तो उसकी वजह क्या होती है कि सर्दी की वजह से सीजनल जो सर्दी होती है बारिश के मौसम में, उस मौसम में ये अंदर जाके स्वेलिंग होती, जिसको हम पॉलिप बोलते हैं। पहले तो हम इनिशियली एंटीबायोटिक से उसका ट्रीट करते, उसके बाद अगर वो नहीं हुआ तो फिर हम उसको ऑपरेशन करके जो है पॉलिपेक्टोमी करके वो पॉलिप भी निकाल देते। सेम आइज जैसा साइनस होता, साइनस में भी हम जो है उसको पहले एंटीबायोटिक से ट्रीट करते, नहीं हुआ तो उसको भी जो है हमको साइनस को जो है सर्जरी करना पड़ता, साइनस की जो ENT डॉक्टर करते हैं। तो नाक और साइनस और हलक ये ख़ास तौर से जो है मुतासिर होते हैं ये सीज़न में, जिसमें बारिश के सीज़न में होता है। तीसरी बात मैं अर्ज़ करूँ जो है वो है ईयर का प्रॉब्लम, यानी बाज़ लोगों को जो है कान में पानी भी चले जाता तो कान में दर्द शुरू हो जाता, कान
1: बिल्कुल
0: में हवा चली जाती तो दर्द शुरू हो जाता, कान आप पूरी तरह से साफ़ नहीं करते अंदर रह जाता तो फिर वो इन्फेक्शन आके पानी आना शुरू हो जाता, पस आना शुरू हो
1: जी
0: जाता।
1: हाँ
0: अब जैसे जैसे ये पस आना शुरू होता तो कान के अंदर का जो पर्दा होता है जिसको टिम्पानिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, वो मेम्ब्रेन हमारे बाहर के प्रेशर को और अंदर के प्रेशर को कंट्रोल करती, उसमें सुराख अगर पड़ गया तो वो उसको परफोरेशन बोलते हैं। अब वो परफोरेशन अगर टाइमली रिपीट यानी करेक्ट नहीं किया गया तो फिर वो अंदर से बाहर से एक पैसेज बन जाता, बाहर से अंदर इन्फेक्शन जा रहा और अंदर जाके पस फॉर्म हो रहा, फिर पस बाहर वापस आ रहा, क्यों बोलते हो, उसको एक पैसेज मिल गया,
1: हाँ
0: ईयर का ऐसा है। तो सीजन में जो बरसात का मौसम है उसमें नाक की बीमारियाँ, साइनस की बीमारी, हलक की बीमारी, कानों की बीमारी, ये ENT सर्जन का खास रहता है। तो इस सीज़न में ENT केसेस बहुत ज़्यादा हो जाते
1: जी
0: हैं क्योंकि बाहर
1: बिल्कुल
0: निकलते और भीगते हैं उससे ज़्यादा जो है मुतासिर होते हैं।
1: बहुत तफसीली तौर पर आपने बताया है सर। न सिर्फ ये बताया हमको कि बुखार और वायरल इन्फेक्शन से हम बरसात में मुतासिर हो सकते हैं, बल्कि जो हलक है नाक और कान जो ये हमारे बहुत अहम अज़ा है वो भी बहुत मुतासिर हो सकते हैं। और अगर हम उस वक्त फौरी तौर पर तवज्जा ना दे और इसे नज़रअंदाज कर दे तो फिर ये पेचीदा मसाइल में तब्दील हो जाते हैं और फिर वहाँ आपको काफ़ी दिन लगाना पड़ता है इसके लिए। जो काम अगर मान लो कि आप एक हफ्ते में हो जा रहा है आपका, तो वो फिर जाकर महीनों पे टल जाता है।
0: और जो चीज़ एंटीबायोटिक से कम हो सकती है वो सर्जरी पे डाल देते हैं आप,
1: جی آپ نے سرجری کی بات
0: ٹانسل
1: کی
0: کا
1: ہے
0: جیسا
1: جی
0: مثال کے طور پہ ٹانسلس کی بات کریں میں
1: ہاں بالکل
0: ٹانسلس بھی

0: इस सीज़न में बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं
1: बच्चों को
0: बच्चों में,
1: खासकर हम
0: ख़ास तौर से
1: देखते
0: बच्चों के
1: हैं।
0: एज में, बड़ों में कम होते हैं, बच्चों में ज़्यादा
1: हाँ
0: होते हैं, ख़ास तौर से स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जो होते
1: बिल्कुल
0: हैं, उन लोगों के लिए जो है टॉन्सिल्स का हमेशा का मसला रहता है। तो इसीलिए बच्चों को जो है इस सीज़न में बारिश से भी बचाना, और अक्सर जो है बच्चे स्कूल जाने आने में भीग जाते हैं, तो
1: आराम से
0: फ़ौरन उनको
1: जी।
0: जो है ड्राई करना, कपड़े बदलना, बाल पोंछना, सर्दी होने नहीं देना उनको,
1: अच्छा
0: नहीं तो फिर वो सारे मसले होते हैं जिसमें टॉन्सिल्स का मसला बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा कॉमन होता है बच्चों में। हम जो एडवाइस करते हैं वो ये कि भाई एक तो आप जो है ये प्रिवेंशन ले लो, प्रिकॉशन ले लो कि भाई बच्चों को जो है बारिश से बचाइए।
1: जी
0: दूसरा ये कि जब कभी भीग जाएँ तो भी फ़ौरन जो है उनको जो है कपड़े बदल के जो है उनको हेयर ड्रायर से गर्मी पहुँचा दें। तीसरा ये कि अगर उनके टॉन्सिल्स फ्रिक्वेंटली मुतासिर कर रहे हैं,
1: बार बार होते
0: बार
1: जाता है
0: बार
1: ये
0: जो हो रहे
1: मसला
0: हैं और
1: जी।
0: रिपीटेडली उनको एंटीबायोटिक दे रहे हैं, हर महीने में एक बार दो बार उनको एंटीबायोटिक देना पड़ रहा, तो एंटीबायोटिक से भी जो है इनका हुव्वत मुदाफिया जो डिफेंस मैकानिज्म अंदर का जो है वो कमज़ोर होता है, हर टाइम पे आप एंटीबायोटिक नहीं दे सकते। तो वैसी सूरत में डॉक्टर्स अक्सर जो एडवाइस करते हैं कि भाई इनके टॉन्सिल निकाल दो,
1: हाँ
0: तो
1: ये भी
0: टॉन्सिल जो है
1: जी
0: सर्जरी करके उनके टॉन्सिल निकाल देते हैं ऐसे बच्चों के जिनको फ्रीक्वेंटली टॉन्सिल्स होता है, हर महीने में एक बार दो बार हो जा
1: जी
0: रहा,
1: जी
0: तो अब साल में कितनी बार होगा और
1: हाँ
0: कब तक दवाएं खाते रहेंगे,
1: सही
0: और नॉर्मल लाइफ भी उनकी मुतासिर होती है, वही टॉन्सिल से उनको फीवर भी आता, वही टॉन्सिल से उनको खांसी भी होती, वही
1: हाँ
0: टॉन्सिल से उनको निगलने में तकलीफ भी होती,
1: बिल्कुल
0: और वही टॉन्सिल से उनका पूरे बॉडी का जो है जो मैकेनिज्म है वो मुतासिर होता, डे टू डे लाइफ उनकी मुतासिर होती, तालीम उनकी मुतासिर होती, अच्छी तरह से रह नहीं पाते, खा नहीं
1: हाँ
0: पाते, निगलने में तकलीफ़
1: सही
0: हो जाती। तो वैसे केसेस के लिए भी हम लोग प्रेफर करते हैं कि भाई इनके टॉन्सिल्स निकाल दिया जाए। तो जो चीज़ हम मामूली तौर पे दवाओं से या एहतियात से अपन कंट्रोल कर सकते हैं, वो अगर कंट्रोल ना हो, एहतियात
1: सर्जरी
0: ना
1: की।
0: हो, तो फिर
1: हाँ
0: आपको सर्जरी तक भी ले आ सकती है
1: बिल्कुल
0: वो
1: सर्जरी की नौबत आ
0: जो।
1: जाएगी और फिर वो वहाँ तो और आपको मसाइल का सामना
0: जी हाँ
1: करना
0: जी हाँ
1: पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर साहब हम ये बात जानना चाहेंगे कि अगर टॉन्सिल्स निकाल दिए जाए तो फिर उसका क्या मतलब साइड इफेक्ट हो सकता है?
0: टॉन्सिल्स का ज़्यादा साइड इफेक्ट ऐसा बॉडी में कुछ भी नहीं है,
1: जी
0: ऐसा भी नहीं है कि वो जो वेस्ट ऑर्गन है बल्कि नहीं है, कुदरत ने जब कोई
1: हाँ
0: टॉन्सिल रखी है तो उसका
1: जी
0: डेफिनेटली जो है उसका अपना एक मैकेनिज्म है, और
1: बिल्कुल
0: मेन मैकेनिज्म उसका अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, बॉडी को डिफेंस करने का होता है। लेकिन क्योंकि बॉडी में और भी बहुत सारे जैसा लिम्फ नोड्स वगैरह होते हैं, ये भी
1: हाँ
0: डिफेंस मैकेनिज्म में काम करते हैं, तो वैसे जो है उसमें बहुत ज़्यादा मुतासिर नहीं होते टॉन्सिल्स, अब जब एक बार निकाल देते हैं तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा आपको मुश्किल नहीं होती। लेकिन हम अतल इम्कान कोशिश बात की करते हैं कि टॉन्सिल ना निकालें,
1: जी
0: लेकिन अगर
1: जी
0: किसी को फ्रीक्वेंटली प्रॉब्लम हो रहा है और फिर जो है हर बार उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा, हर बार एंटीबायोटिक लेना पड़ रहा, तो वैसी सूरत में जो है मशवरा तो ये रहता कि टॉन्सिल्स निकाल दिया जाए। टॉन्सिल्स निकालने के बाद बच्चे की सेहत पे, उम्र पे कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता।
1: समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी प्रोग्राम डॉक्टर माइक पर इंटरव्यू, और नए रंग उर्दू प्रोग्राम में आप डॉक्टर साहब से बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं डॉक्टर साहब को। डॉक्टर सैयद शाह अली हुसैनी हमारे साथ मौजूद है और बहुत तफसीर से हमें बता रहे हैं कि कैसे हम मौसम बरसात में एहतियात कर सकते हैं और किस तरह बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं। और सबसे अहम चीज़ जो डॉक्टर साहब तो हमें तवज्जो दिला रहे हैं कि इब्तिदा में हर चीज़ हमें मामूली नज़र आती है, बिल्कुल छोटे छोटे वाकयात होते हैं, बस रात में गए थे हम, बारिश में भीग गए और फिर सुबह हमारा गला ख़राब हो गया, हमने नज़रअंदाज कर दिया और फिर उसके बाद से हमारे मसाइल धीरे धीरे बढ़ना शुरू होते हैं। तो यहीं पर डॉक्टर साहब हमको बताते हैं कि कैसे हम तवज्जो दें, कैसे वहां पर मामले को रोक ले आगे बढ़ने से, फौरन एहतियाती इकदाम करें। और जो हम गिजाओं की बात करते हैं, कुछ हम ऐसे घरेलू प्रिकॉशंस कर सकते हैं, घरेलू जो नुस्खे होते हैं वो आजमा सकते हैं,
0: जी,
1: जैसे कि अब
0: बहुत सारे
1: सबसे
0: नुस्खे होते
1: अहम
0: हैं।
1: जी सबसे अहम जो हमारा मसला होता है गले की खराशी होता
0: जी
1: है,
0: जी जी
1: फौरन हमने कोई खट्टी चीज खा ली तो हमें गले की खराश हो जाती है। तो अब ये गले की खराश के लिए क्या करें हम?
0: देखिए पुराना जो तरीका था वो है कि भाई गुनगुने पानी में नमक डालें, गरारा
1: जी
0: कर लें। अब मेडिकेशन, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं आपको, तो एक बीटाडीन एक लिक्विड आता, उस लिक्विड को आप जो है वार्म वाटर में,
1: जी
0: यानी मान लीजिए एक 4 चमचे आप बीटाडीन लेते हैं, 4 चमचे आप गुनगुना पानी लीजिए और गले में खराश करिए, फिर उसको थूक दीजिए, मेडिकेटेड होता है, पेट के अंदर अगर गया भी तो उससे नुकसान नहीं है। तो ये नमक और पानी का निम्न बदल है कि
1: अच्छा
0: उसमें जो है आप इससे अगर कर लें तो वो भी होता है, और थोड़ा स्मूथिंग टैबलेट्स भी होते हैं जो गले की खराश को दूर करते हैं। स्टार्टिंग में तो हम यही करते हैं कि
1: हाँ
0: बजाय डायरेक्ट एंटीबायोटिक लेने के, पहले अपन जो घरेलू नुस्खे हैं वो पूरे कर लें,
1: जी
0: एहतियात कर
1: जी
0: लें और वार्म वाटर से जो है गरारा करें। उसके बाद भी ना हुआ तो फिर कुछ जो है कुछ सूथिंग टैबलेट्स होते हैं जैसा, तो उसमें जो है विक्स टाइप के जो गोलियां आते थे
1: जी
0: पहले, आज भी
1: हाँ
0: आ रहे होंगे वो,
1: जी जी
0: तो
1: है
0: वो
1: सर,
0: उस तरह से जो है वो ले ले। इसके बाद भी अगर नहीं है तो फिर आप जो है डॉक्टर से
1: डॉक्टर के
0: कंसल्ट
1: पास
0: करके
1: जाना
0: आप उसको
1: पड़ेगा
0: जो है उसका इलाज भी जो है अच्छी तरीके से करा सकते हैं।
1: जी बिल्कुल। تو ابھی ڈاکٹر صاحب اس کے علاوہ اب یہ گلے کی خراش کا تو آپ نے بہت اچھے سے بتا دیا ہم کو، نہ صرف گھریلو

0: नुस्खे के तौर पर बल्कि मेडिकल में भी आप क्या क्या कर सकते हैं और किस तरह से रोक सकते हैं। अब दूसरी चीज़ होती है हेडेक होता है। बारिश में भीगने के बाद अक्सर हमको सर दर्द के मसले का सामना करना होता है, तो ये सर दर्द हमें इब्तिदा में तो ये सुबह उठते ही सर भारी लगने लगता है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है उस वो भारीपन दर्द में तब्दील हो जाता है और फिर हम शाम तक और ज़्यादा दर्द से मुतासिर हो जाते हैं। तो इस सर दर्द के लिए क्या करें?
1: देखिए, अगर आप इब्तिदा में डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करना चाह रहे हैं
0: जी
1: और ये समझे कि मैं रात में भीग कर आया और सर दर्द हुआ, थोड़ा सा तो है, ठीक है, आप अपने तौर पे जो है
0: जी
1: कोई भी एक पैरासीटामॉल डोलो टैबलेट लेकर देख सकते हैं, कोई सर्दी की एक टैबलेट है, सिट्रिजिन है, ऐसा कोई लेके देख सकते हैं। लेकिन सेल्फ मेडिकेशन हमेशा जो है नुकसानदेह
0: खतरनाक
1: होती,
0: होता है जी
1: नुकसानदेह होती। अब यह है कि मामूली मामूली चीज़ों के लिए भी कोई इंसान डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करता, तो डोलो का इस्तेमाल करके देख लें। कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक दो टैबलेट में आपको जो है फ़ायदा हो जाता तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन देख लिए कि भाई मैं डोलो भी खा लिया और सर्दी की गोली भी खा लिया
0: उसके
1: लेकिन उसके
0: बावजूद
1: बाद
0: भी
1: भी इफ़ाक़ा नहीं
0: हाँ
1: हो रहा है, तो वैसी सूरत में जो है मुनासिब है कि अपने जो फैमिली डॉक्टर है उनको जो है कंसल्ट करें और उनके मशवरे के हिसाब से फिर जो है हम इलाज कराएं तो ज़्यादा अच्छा है। मैं ये ज़रूरी नहीं समझता कि हर बार आपको एंटीबायोटिक स्टार्ट करना है,
0: जी
1: बल्कि बगैर एंटीबायोटिक के भी चंद गोलियों से भी आप जो है अपने वक्ती तौर पे जो प्रॉब्लम है, जो परेशानी है, उसको दूर कर सकते हैं।
0: जी बहुत अच्छा मशवरा दिया डॉक्टर साहब आपने। डॉक्टर सैयद शाह अली हुसैनी साहब हमारे साथ हैं और आकाशवाणी के प्रोग्राम डॉक्टर माइक पर वो तफसील से हमें बता रहे हैं कि कैसे हम एहतियाती इकदाम करें, कैसे खुद को बचाए रखें, मौसम की जो तकलीफदार सूरत हाल है उसको कैसे हम एक राहत बख्श सूरत हाल में तब्दील करें। डॉक्टर साहब, हमने दो बातें तो पूछ ली आपसे कि गले की खराश हो और सर दर्द हो तो क्या करें, लेकिन अक्सर जो एक शिकायत हमें सुनने में आती है वो बॉडी पेन की होती है। और आजकल तो हम देख रहे हैं कि बच्चों के बहुत वजनी बस्ते हो चुके हैं, जो बैग्स हैं उनके बहुत वजनी हैं और कई फ्लोर्स पर उनको ले जाना और लाना होता है। ऐसे में छोटे बच्चे भी कंप्लेन करते नजर आ रहे हैं कि मम्मी बॉडी पेन हो रहा है, तो इस बॉडी पेन का क्या किया जाए?
1: नहीं, ये तो बात सही है आपकी, अक्सर देखने में भी आता है कि बच्चे उम्र से कहीं ज़्यादा उनका वज़न और वो
0: बैग्स का
1: वज़न जो
0: वजन
1: है
0: हो
1: कैरी
0: चुका
1: करते
0: है
1: हैं,
0: जी
1: बैग्स है, उसमें टिफ़िन कैरियर भी है, वो सारी चीज़ें भी है।
0: जी
1: और ये लोग स्कूल वाले भी ये नोटिस कर रहे हैं कि भाई बच्चों पे भी ओवर वेट हो रहा है, तो अक्सर स्कूलों में मैं ये भी देखा हूँ कि सारे बुक्स वो लोग वहीं रख लेते हैं क्लास में
0: जी
1: और वो कैरी करने नहीं देते कि भाई हर रोज़ आप ये लाओ, बल्कि
0: हाँ
1: नहीं, बल्कि एक दो तीन बुक जो होते हैं जो हल्के होते हैं वही कैरी करते हैं।
0: ये
1: अक्सर
0: बहुत अच्छा
1: स्कूलों में मैं ये भी
0: तरीक़ेकार
1: देखा
0: है
1: हूँ
0: जी
1: कि लोगों ने, जैसा आप की नोटिस में
0: हाँ
1: है मेरे भी इल्म में है, तो वैसे ही स्कूल के वालों में, स्कूल के लोगों के
0: इंतज़ामिया को
1: में
0: भी
1: भी जो
0: जी
1: है ये
0: है
1: इल्म में ये बात है कि भाई बच्चों पे भी जो है ओवर वेट ओवर बर्डन हो रहा,
0: हाँ
1: जिसकी वजह से उनको बैक पेन हो रहा, कमर का दर्द हो रहा, पीठ का दर्द हो रहा, हाथों में दर्द हो रहा। अब इस तरह का दर्द हो रहा है तो खैर वैसे भी कोई भी एक सिरप, पैरासीटामॉल, क्रोसिन सिरप बच्चों को डाल सकते हैं, और नहीं है उसके बाद भी कब नहीं हुआ तो आप डॉक्टर से रुजू हो सकते हैं, जो बच्चों के डॉक्टर हैं उनसे रुजू हो सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर तो बच्चों के लिए वेट लिफ्ट करना अवॉइड करें तो ही बहुत ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो
0: बिल्कुल
1: बच्चे खाली बस्ता उठाते उठाते थक जाते हो, फिर
0: हाँ
1: उठा के जाना, फिर लेकर आना घर पे, उसी में जो है उनकी थकान हो जाती है। तो मैक्सिमम जो है वेट लिफ्टिंग या भरे भरे बैग जो है बच्चों को उठाने ना दें तो ज़्यादा मुनासिब है।
0: जी बिल्कुल। इस सामाइन आप सुन रहे होंगे डॉक्टर साहब का मशवरा कि किस तरह न सिर्फ पेरेंट्स को इस बात पर, वालदैन को इस बात पर तवज्जो देनी चाहिए बल्कि स्कूल इंतज़ामिया भी इस बात को ख़ास तवज्जो से देखे, समझे और बच्चों की जो तकलीफ़ है उसको दूर करने की कोशिश करें। और डॉक्टर साहब, आपने जो ग़िज़ाओं की बात की थी, क़ुव्वत मुदाफ़त के लिए बेहतरीन ग़िज़ाओं की बात की थी, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि कौन सी ग़िज़ाएँ नहीं खानी चाहिए।
1: मौसम में बरसात या सर्दी के मौसम में जो है जो सर्द किस्म की चीज़ें होती हैं, जैसा आप मान लीजिए पाइनएप्पल है
0: जी
1: जो थोड़ा खट्टा मीठा भी होता है,
0: हाँ
1: लेकिन नेचर में जो है तबीयत में फ़र्क होता है सर्दी की वजह से होता है, नींबू की चीज़ें हैं और ये
0: तुर्श
1: अब
0: जो
1: जो तुर्श किस्म के जो होते हैं जो
0: सिट्रस
1: एसिड टाइप की,
0: फ्रूट्स जो
1: सिट्रस टाइप
0: है
1: की जिसको
0: जी
1: बोलते हैं, वो है वो
0: हाँ
1: जिसमें आप नींबू ले लें, मौसमी ले लें, संतरा ले लें, पाइनएप्पल ले लें,
0: जी
1: ये खटास की वजह से रहते हैं, और भी बहुत सारे फ्रूट्स आजकल आ गए हैं, तो इस तरह के फ्रूट्स को अवॉइड करना ज़रूरी है ये मौसम में ख़ास तौर से, ताकि वो उनके उनमें कैफियत भी वही सर्दी जो है सर्च की रहती, सर्दी की रहती तो सर्दी होने के चांसेस, खांसी होने के चांसेस, गले
0: जी
1: में खराश होने के, मौसम ऑलरेडी सर्द है उस पर अगर हम वो सर्द की चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो भी होता। इसके अलावा जो चाहे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, गर्म इस्तेमाल करें, फ्रेश इस्तेमाल करें और घरेलू जो है इस्तेमाल करें, इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट बाहर की चीज़ें इस्तेमाल
0: हाँ
1: करने के बजाय घर की चीज़ें इस्तेमाल करना ज़्यादा अच्छा है उसमें।
0: डॉक्टर साहब, आप बहुत मुफीद और बेहतरीन मालूमात हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी नाखिस मालूमात के मुताबिक आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये भी कहा जाता है कि विटामिन सी का आप अगर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या फिर

0: उसका इंटेक आपके पास अच्छा होता है तो आप मौसमी जो असरात होते हैं उससे थोड़ा सा महफूज रह सकते हैं। तो इस ताल्लुक से आप क्या
1: विटामिन
0: कहेंगे?
1: सी बेसिकली आपके डिफेंस मेकानिज्म को इम्प्रूव करने के लिए है,
0: जी
1: हीलिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए है। मान
0: जी
1: लीजिए कोई सर्जरी हो रही या कोई सुचरिंग हो गई, कोई बदन का कोई हिस्सा जो है कटा था जहाँ पे आपने सुचर किया है, तो उसको हील करने के लिए विटामिन सी देते हैं।
0: जी
1: तो हीलिंग प्रोसेस भी आपका बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता और एक डिफेंस मैकेनिज्म आपके अंदर जो होता वो भी जो है इम्प्रूव होता। लेकिन आम हालातों में, नॉर्मल हालातों में उसको देने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि भाई नहीं मुझे मेरा डिफेंस मैकेनिज्म इम्प्रूव करना है लिहाजा मैं विटामिन सी ले रहा हूँ, ऐसा ज़रूरत नहीं है। अलबत्त ये है कि अब जैसा ये सिट्रस टाइप का मैं जो फ्रूट्स का
0: जी
1: जो तस्करा करा उसमें विटामिन सी रहता,
0: जी
1: ऑरेंज में विटामिन सी बहुत ज़्यादा रहता, तो हमारी डाइट में हमको विटामिन सी मिल जाता,
0: हाँ
1: हमारे फ्रूट्स में हमको विटामिन सी मिल जाता। तो टाइमली अगर हम फ्रूट्स अपने लेते रहें और इस्तेमाल
0: सीजनल
1: करते
0: फ्रूट्स
1: रहें,
0: जो भी
1: सीजनल
0: है
1: फ्रूट जो होते हैं, तो
0: उसकी मकदार
1: उसमें
0: ज्यादा
1: आपको
0: ना
1: मकदार
0: हो।
1: में आपको
0: हाँ
1: जो है वो नेचुरल सोर्स है वो,
0: जी जी
1: आपको
0: बिल्कुल
1: टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
0: जी
1: टैबलेट हम देते हैं मखसूस हालातों में जहाँ पे जो है वुंड हीलिंग है और जहाँ पे थोड़ा डिफेंस मेकानिज्म वीक है, इसके उसमें जो है टैबलेट का इस्तेमाल करना चाहिए, अदरवाइज नेचुरल सोर्सेज पे गए तो ज़्यादा मुनासिब है।
0: जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब आखिरी में हम डॉक्टर साहब आपसे ये सवाल करेंगे कि आप हमारे जो आकाशवाणी के सामाईन हैं और उर्दू नए रंग प्रोग्राम बहुत शौक और शौक से सुनते हैं, तो उनके लिए आपका क्या पैगाम है कि मौसम में बरसात को कैसे दिल भर कर इंजॉय करें, लुत्फानंदोज हो और फिर वो उससे मुतासिर भी ना हो।
1: जी देखिए, मौसम ऐसा रहता है जहाँ पे एंजॉय भी करना चाहते हैं, खाना पीना भी चाहते हैं, अब इसके साथ साथ एहतियात भी होना ज़रूरी है। तो जो एहतियात है, जैसा पानी में भीगे तो एहतियात कर लें, जल्द से जल्द कपड़े बदल लें और जो है वार्म चीज़ों का इस्तेमाल कर लें, हीटर वगैरह का है, बालों को सर को पोंछ लें जल्दी, और बच्चे सर स्कूल जाते हैं तो उनको जो है बाध्यता रेनकोट के साथ अगर जाए,
0: जी
1: हम जब भी बाहर निकलते हैं अगर टू व्हीलर पे है तो रेनकोट अपना साथ में रखें ताकि फ़ौरन जो है वो आ जाए, उसके बावजूद भी भीगते हैं तो घर में आके फ़ौरन ये करें। तो बारिश में बाहर नहीं निकलना ऐसा नहीं है, स्कूल नहीं भेजना ऐसा भी नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ एहतियाती तदाबीर भी कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेनकोट है, बच्चों को भी रेनकोट दिलाएं, बड़ों को भी दिलाएं, भीग जाएँ तो फ़ौरन उसका इस्तेमाल आके जो है कर लें। तो ये तो एक है। अब रहा सवाल ग़िज़ा का, तो जो ग़िज़ा है जैसे मैंने पहले बताया कि भाई घर की बनी हुई ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें, कुछ शौकिया तौर पर भी अगर कुछ खाना चाह रहे हैं तो घर में ही बना के खाएं, हाइजीनिक जो है प्रिपरेशन हो, सफाई के साथ हो, उसका ख्याल रखें, ऐसा ना हो कि हम शौक पे तो है बाहर की चीज़ें खा रहे हैं और फिर उल्टा जो है अपनी बीमारियों को दावत दे रहे हैं, ताकि फिर वो सर्दी भी हो जा रही है, गले की खराश भी हो जा रही है, या मोशन वॉमिटिंग हो गया कि पेट ख़राब हो रहा, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। मौसम में बरसात है, इंजॉय करने का मौसम है, ज़रूर इंजॉय करना चाहिए मगर एहतियात के साथ करना चाहिए।
0: जी जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर सैयद शाह अली हुसैनी साहब हमारे साथ मौजूद है और ये माहिर तजुर्बाकार डॉक्टर है। न सिर्फ ये अपनी डॉक्टराना सलाहियतों से हमें यहाँ मशवरा दे रहे हैं बल्कि एक शफीक दोस्त की तरह हमें सजेस्ट कर रहे हैं कि कैसे आप एहतियात करें, कैसे मौसम को इंजॉय करें। तो सामाई फिर इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। आप सुन रहे थे आकाशवाणी नैरंग उर्दू प्रोग्राम डॉक्टर माइक पर। इस
1: बहुत बहुत
0: इंटरव्यू
1: बहुत बहुत
0: में
1: शुक्रिया,
0: जी डॉक्टर साहब भी शुक्रिया अदा करना चाह रहे
1: बहुत
0: हैं।
1: बहुत शुक्रिया आपका, आप हजरात ने जो है मुझे इनवाइट किया। मैं हमेशा जो है इस तरह की जो है खिदमत के लिए जो है कोशिश भी करता हूँ कि जो हमारी मेडिकल नॉलेज हमारी हद तक महदूद है या हमारे पेशेंट की हद तक महदूद है, वो हम चाहते हैं कि भाई जो है आम जो है लोगों के पास भी वो मालूम पहुँचें, ताकि जो है वो अपनी ज़िंदगी का जो है लुत्फ़ भी ले और अपनी एहतियात भी करें। बल्कि मैं तो ये सजेस्ट भी कर रहा था कि भाई कोई ऐसी बीमारी है जैसा डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कार्डियक प्रॉब्लम है या कैंसर है, इस तरह के कई जो है क्रॉनिक डिसीज़ है जिसमें बहुत सारे लोग आज भी हम देखते हैं कि उनके पास जो है बेसिक नॉलेज नहीं है,
0: जी
1: या आप अगर ये कहें कि डायबिटीज़ पेशेंट है और उसको डायबिटीज़ के बारे में कुछ इल्म है क्या, उसको इल्म नहीं है लेकिन बरसों से वो डायबिटिक पेशेंट है। कार्डियक पेशेंट है, उसको क्या प्रिवेंशन है, उसके मेडिकेशन कैसे लेना है, क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या है, कार्डियक पेशेंट है लेकिन उसको उसके बारे में नहीं मालूम है। तो उसकी मेन वजह क्या होती है कि जो जब हमारे पास कोई पेशेंट आते हैं तो हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं काउंसलिंग के थ्रू कि भाई आपको ये बीमारी है, आपको ये उस दवाई खाना है, आपको ये एहतियात करना है, आम लोगों के पास वो बात नहीं पहुँचती। तो इस प्रोग्राम के ज़रिए से, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से, आप हजरात के ज़रिए से मैं ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम जो है होते रहें और पूरे अवेयरनेस के साथ, पूरे एजुकेशन के साथ जो है पेशेंट रिचार्ज हो, और पेशेंट सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल,
0: बिल्कुल
1: क्योंकि कमर्शलाइज हमारा प्रोफेशन ऐसा कमर्शलाइज हो गया है, कॉरपोरेट्स पूरे कमर्शलाइज हो गए हैं।
0: और आपके जो नेक जज्बा है उसकी हम सताइश करते हैं डॉक्टर
1: बहुत बहुत
0: साहब,
1: शुक्रिया,
0: जो समाजी मिल्य खिदमत आप अंजाम दे रहे हैं। तो सामाइन इसी के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी आकाशवाणी उर्दू

0: नैरंग प्रोग्राम के लिए हम बहुत मशहूर है कि इस प्रोग्राम के तहत हम आप तक अपनी बात पहुंचा सकें। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब,
1: बहुत बहुत शुक्रिया,
0: अल्लाह हाफिज।
2: डॉक्टर माइक पर इंटरव्यू आप सुन रहे थे। उम्मीद है सामईन कि ये आपके लिए मुफीद साबित होगा। ये आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियोज की घड़ी में 10:28:50 हो रहे हैं। अब वक्त हो चला है हम सबके पसंदीदा प्रोग्राम गीत सुरीले गाते जा का। सामईन, आज गीत सुरीले गाते जा में हम एक ऐसे फनकार की बात करेंगे जो कि 31 जुलाई सन 1980 को इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन उनकी आवाज़, उनके गाए गए गीत सबके दिलों में आज भी अपनी जगह बनाए हुए हैं। वो कौन से फनकार हैं ये तो आप समझ ही गए होंगे। उनके बारे में हम आपको तफसील से बताएंगे और उनके गाए हुए गीत भी सुनाएंगे। चलिए आगाज़ करते हैं एक खूबसूरत से गीत से।

लाखों करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करने वाले मोहम्मद रफ़ी साहब 24 दिसंबर सन 1924 को पंजाब के ज़िले अमृतसर के गांव कोटला सुल्तान सिंह में पैदा हुए। बचपन ही से उन्हें मौसीकी से काफ़ी लगाव था और एक फ़कीर की पुरसोज आवाज़ ने उन्हें बेहद मुतासिर किया था, जिसके बाद उनके दिल में भी गायकी का शौक

प्रोग्राम सुनने के लिए गए थे, लेकिन सहगल ने बिजली की खराबी के बाद गाने से इनकार कर दिया और फिर मुंतजमीन ने मोहम्मद रफ़ी को गाने का मौका दिया। 13 साल की उम्र में गाए गए उनके गीत ने वहाँ मौजूद लोगों को बहुत मुतासर किया। उन लोगों में मौसीकार श्याम सुंदर भी थे, जिन्होंने मोहम्मद रफ़ी को मुंबई आने की दावत दे दी। रफ़ी साहब के बारे में आपको और भी बताएंगे, लेकिन सुनिएगा ये खूबसूरत सा गाना।

101.9 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नैरंग, अपनी रेडियो दोस्त आयशा बतुल अफशां के संग। नैरंग की बज़्म सजी है गीत सुरीले गाते जासे और हम बात कर रहे हैं रफ़ी साहब की। समईन मोहम्मद रफ़ी साहब की ज़िंदगी का एक अहम मोड़ उस वक्त आया जब उन्होंने KL सहगल के प्रोग्राम में गाना गाया। उनकी उम्र महज 13 साल की थी। कहते हैं कि वो अपने भाई के साथ KL सहगल का

मौसीखार श्याम सुंदर की दावत पर मोहम्मद रफ़ी मुंबई पहुंचे और उन्होंने श्याम सुंदर की मौसीकी में पंजाबी फिल्म गुल बलोच के लिए जीरत बेगम के साथ अपना पहला फिल्मी गाना गाया। बाद में यानी सन 1944 में मौसीखार नौशाद की हिदायत में फिल्म पहले आपके लिए उनका पहला हिंदी नगमा रिकॉर्ड हुआ, लेकिन असल कामयाबी सन 1949 में फिल्म दुलारी के लाजवाल गीत सुहानी रात ढल चुकी है से मिली, जिसके बाद मोहम्मद रफ़ी फिल्मी दुनिया के सफ़े अव्वल के ग्लोकार बन गए। मोहम्मद रफ़ी ने अपने तवील सफ़र में तकरीबन 700 फिल्मों के लिए 26,000 से ज़ायद गीत गाए हैं। लीजिए सुनिएगा फिल्म नया दौर का एक गीत जिसे मोहम्मद रफ़ी साहब ने और आशा भोसले जी ने गाया है।

सामईन, आप सुन रहे हैं गीत सुरीले गाते जा, और आज हम बात कर रहे हैं रफ़ी साहब की। रफ़ी साहब ने दिलीप कुमार, देवानंद, शमी

कपूर, राजेंद्र कुमार, शशि कपूर, राजकुमार, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन समेत कई सुपरस्टार को अपनी आवाज़ दी। हर अदाकार की शख्सियत के मुताबिक अपनी आवाज़ में तब्दीली लाने की गैर मामूली सलाहियत उनमें मौजूद थी और यही सलाहियत उनकी सबसे बड़ी खसूसियात में शामिल थी।

0: कोई मुझे जंग भी कहे।
1: रफ़ी साहब ने हिंदी के अलावा मराठी, पंजाबी, तेलुगू और दीगर जबानों में भी अपनी आवाज़ का जादू जगाया। उनकी बेमिसाल खिदमात के एतराफ़ में उन्हें 6 फिल्म फेयर अवार्ड और सन 1965 में पद्मश्री से नवाजा गया। बरसग़ीर की मौसीकी की तारीख में जब भी अमर आवाज़ों का जिक्र होगा, मोहम्मद रफ़ी का नाम हमेशा सर फहरिस्त रहेगा। वो सिर्फ एक पसपर्दा गुलकार नहीं थे, बल्कि वो हर जज्बे, हर एहसास और हर मोड़ को अपनी आवाज़ के खालिब में ढालने वाले एक ऐसे फनकार थे जिनकी मिसाल मिलना नामुमकिन है।

सामईन गीत सुरीले गाते जा आप सुन रहे थे। उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। स्टूडियोज की घड़ी में 10:55 और 17 सेकंड्स हो रहे हैं। वक्त हो चला है प्याम शब का, लीजिए समात फरमाइएगा जनाब नदीम अख्तर जैदी से प्याम शब।

कुछ इतनी रोशनी में थे चेहरों के आईने, दिल उसको ढूंढता था जिसे जानता न था। जिंदगी में हर चमकती हुई चीज हकीकत नहीं होती, इंसान अक्सर खूबसूरत चेहरों, जाहिरी कामयाबियों और दुनिया की चकाचौंध में गुम हो जाता है, लेकिन दिल को हकीकी सुकून सिर्फ सच्चाई, इखलास, मोहब्बत और अल्लाह की याद से मिलता है। इसीलिए जाहिरी हुस्न से मुतासिर होने के बजाय बातिन की पाकीजगी और किरदार की खूबसूरती को तलाश करना चाहिए। जाहिरी चमक दमक हमेशा हकीकत की आईनादार नहीं होती। दिल की असल प्यास रूहानी सुकून और सच्ची मोहब्बत से बुझती है। इंसान को लोगों के चेहरों से ज्यादा उनके किरदार को पहचानना चाहिए। अपनी जिंदगी का मकसद सिर्फ दुनिया की रौनक नहीं बल्कि हकीकत और नेकी की तलाश होना चाहिए। जो दिल सिर्फ जाहिरी रोशनी के पीछे भागता है वो अक्सर हकीकत से दूर रह जाता है। असल कामयाबी ये है कि इंसान किरदार, इखलास और हक की रोशनी को पहचाने, क्योंकि यही रोशनी दिल को दायमी सुकून अता करती है।

हर्षपा स्टूडियोज की घड़ी में 11 बजने ही वाले हैं। चंद ही लम्हों में आप सुन सकेंगे हिंदी और अंग्रेजी समाचार जो कि दिल्ली से नशर किए जाएंगे।

0: Gilbert. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजना के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना को 5,070 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है।
1: प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना में जितने वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में।
0: सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की भी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समुद्र मंथन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और विशाल समुद्री क्षमता का दोहन करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना से जलाशयों और अंतर्देशीय जल निकायों के अभिनव उपयोग से देश की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता का विस्तार होगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आज उम्र कैद की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दलीलें सुनने के बाद सभी पांचों आरोपियों को सजा सुनाई। इस महीने की 13 तारीख को अदालत ने हुसैन और चार अन्य को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी पाया था। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित चुनाव पाकिस्तान की नीतियों को सिरे से खारिज किए जाने का प्रमाण है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में निर्दोष नागरिकों के खिलाफ लगातार दमनकारी कार्रवाई की जा रही है। नेपाल में अधिकारियों ने भारत से सटे सप्तरी जिले के कुछ हिस्सों में अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। सुनसरी में सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में प्रदर्शन शुरू होने के बाद कर्फ्यू लगाया गया। सुनसरी, धनुषा और सिराह जिलों के कुछ हिस्सों में पहले से ही कर्फ्यू लागू है। सरलाही जिले के अधिकारियों ने सीमा पार से नेपाल में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए वैध पहचान पत्र रखना अनिवार्य कर दिया है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। 48

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आज की कारोबारी खबरों के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं आर्थिक पत्रकार विशाल दहिया। विशाल जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद निखिल।
1: और सबसे पहले सुनते हैं मुख्य समाचार।
0: थैंक यू निखिल। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसीज राइज फॉर थर्ड कंसेक्यूटिव सेशन। सेंसेक्स गेन्स ओवर 150 पॉइंट्स। निफ्टी सेटल्स एट अराउंड 24,400। In Asian stock market indices, South Korea's Kospi jumps nearly 18%. And Cabinet approves Samudra Manthan offshore exploration scheme for strengthening India's energy security.
1: घरेलू शेयर बाजार लगातार तीसरे दिन आज बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स में 150 अंकों से अधिक की तेजी आई। निफ्टी 24,400 के स्तर के आसपास पहुंचा। एशियाई शेयर बाजारों में आज दक्षिण कोरिया के कोस्पी में लगभग 18% का उछाल और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को स्वीकृति प्रदान की।

0: And before we take the top story of the day, an important announcement for the listeners. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और अब शुरू करते हैं खबरों के साथ में। घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज लगातार तीसरे दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 166 अंक यानी 0.2% ऊपर चढ़कर 78,095 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 66 अंक यानी 0.3% की तेजी के साथ 24,384 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में मिड कैप और स्मॉल कैप सूचकांक में आज 0.4% का उछाल आया। इससे पहले बाजार आज मजबूती के साथ खुले और दिन के पहले हिस्से में सीमित दायरे में कारोबार करते रहे, लेकिन दोपहर के सत्र में दोनों सूचकांकों में तेजी देखी गई।
0: Benchmark domestic equity indices ended in positive zone for the third consecutive session today. The Sensex rose 166 points or 0.2% to close at 78,095. The Nifty added 66 points or nearly 0.3% to settle at 24,384. In the broader market at the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 Index as well as the Small-Cap 100 Index gained over 0.4%. Earlier, markets opened on a firm note and traded in a narrow range during the first half before gaining momentum during the afternoon session.
1: सेंसेक्स की 30 में से 16 कंपनियों के शेयरों में आज बढ़त दर्ज की गई। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों पर नजर डालें तो बजाज फाइनेंस में 8.1% से ज्यादा, बजाज फिनसर्व में 6.6% और महिंद्रा एंड महिंद्रा में 3.6% की तेजी आई। वहीं दूसरी तरफ टीसीएस और एटर्नल में लगभग 2.7% की गिरावट देखी गई। इन्फोसिस लगभग 2.3% नीचे आ गया और आईटीसी में 1.5% की गिरावट दर्ज की गई।
0: In the sectoral indices on the BSE, 19

0: out of 27 sectors ended in positive zone. Among the top gainers, auto advanced 2%, capital goods rose 1.8%, and industrials gained 1.3%. In contrast, IT lost 1.4%, focused IT slipped 1.2%, and FMCG fell 0.9%. The overall market breadth at the BSE was positive, as shares of 2,568 companies advanced, shares of 1,653 companies declined, and shares of 204 companies remained unchanged.
1: अंतर बैंक के विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 29 पैसे मजबूत हुआ और 95.39 रुपए पर बंद हुआ। विशाल जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। और आज के मार्केट पर अगर नजर डालें तो तीसरा लगातार दिन था जब बढ़त के साथ बाजार बंद हुआ, और इस पूरे महीने का ये आखिरी कारोबारी दिन था, इस हफ्ते का भी आखिरी कारोबारी दिन था। पिछले हफ्ते को देखें तो काफी हमें उतार चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन इस सप्ताह जो हम थोड़ी सी तेजी देख रहे हैं मार्केट में, तो इसे एफआईएस की बढ़त मानते हैं या डीआईएस की बढ़त मानते हैं या और भी कोई कारण रहा जिसकी वजह से ये लगातार चीजें हमें देखने को मिल रही हैं?
2: देखिए, कई महत्वपूर्ण पहलू हैं निखिल, और एफआईआईस का जो रोल रहा है इसमें वो काफी महत्वपूर्ण है, और इस पर हम इस कार्यक्रम में कई बार पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ये देखिए, एफआईआईस जब ज्यादा निवेश करती हैं या जो एफआईआईस हैं वो जब अपना पैसा निकालती हैं तो ये एक सर्कुलर प्रोसेस है ना, ही तो जब वो पैसा बाजार से अपना हटा रही हैं तो ये इस बात का परिचायक बिल्कुल नहीं है कि अब तो सब बिल्कुल खराब है। और अगर एफआईआईस पैसा वापस लेके आ रही हैं तो वो पहले वाले सिनेरियो के बनिस्बत जो है यहां थोड़ा सा वो प्रोत्साहन दिखाई देता है, क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं उनके पास अपार संभावनाएं हैं, उनकी नजरें दुनिया भर के बाजारों पर हैं, और अगर उनको और उनका मार्जिन बहुत कम है
1: जी।
2: तो अगर उनको लगता है कि भारत के बाजार से हटके किसी और बाजार में उनको शायद 0.5% या 0.2% अगर फायदा शॉर्ट टर्म में हो सकता है तो वो उस फायदे की ओर जाएंगे। लेकिन एफआईआईस का जो वापसी है, और खासतौर पर पिछले तीन दिन से, और बृहस्पतिवार के आंकड़े शायद आपने दिए होंगे, लगभग 3,600 करोड़ के आसपास FIS की इन्वेस्टमेंट है, जिसे एक स्ट्रॉन्ग कमबैक कहा जा सकता है, और वो दर्शाता है कि बाजार की जो स्थिति है वो केवल ये एक या दो दिन के लिए नहीं थी, ये एक सस्टेन रैली थी जो कि अब बनी हुई है। हालांकि कुछ सेक्टर्स हैं, जैसे कि हम अगर आईटी सेक्टर की तरफ नजर डालें तो उसमें थोड़ी सी गिरावट जरूर देखने को मिली, लेकिन उसका भी एक कारण है, वो कारण ये है कि उसमें जो रैली बनी थी बाजार में, ओवरऑल जो पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखाई दे रहा था उससे पहले ही पॉजिटिव सेंटीमेंट वो आईटी सेक्टर में दिखना शुरू हो गया था, और आज आईटी सेक्टर में बिकवाली का दौर रहा, बिकवाली का दिन रहा, तो इसलिए थोड़ा सा उसमें गिरावट जरूर देखने को मिली। तो एक तो ये बड़ा फैक्टर कहा जा सकता है, दूसरा रुपए की जो स्थिति है, यानी कि भारतीय रुपया जो है उसकी स्थिति में जो सुधार लगातार धीरे धीरे धीरे धीरे होता दिखाई दिया, उससे भी बाजार में और बाजार के निवेशकों में एक जिसे कहा जाए थोड़ा सा हौसला उनका बढ़ा है। क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो मैं कहूंगा, हालांकि एक नजरिया इसका यह भी हो सकता है कि वो थोड़ी सी कम वॉलेटाइल है, मैं कहूंगा थोड़ी सी ज्यादा स्टेबल है। तो गिलास आधा भरा है या आधा खाली है
1: इस
2: देखा जा सकता है, लेकिन जिस तरह से क्रूड ऑयल की प्राइसेस में उतार चढ़ाव देखने को मिला है पिछले कुछ महीनों में, खासतौर पर जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अभी भी चल रही है उसके चलते, उसके मुकाबले देखा जाए तो मुझे लगता है कि हालात पिछले 3-4 दिन में थोड़े से बेहतर जरूर है।
0: विशाल, यू जस्ट मेंशन द आईटी, द रैली इन द आईटी स्टॉक्स दैट वी सॉ अर्लियर ऑन, बट टुडे ऑफ कोर्स लाइक वी आर सेइंग, द इफ यू लुक एट द सेक्टोरल इंडिसेस, द आईटी लॉस्ट 1.4%, फोकस्ड आईटी स्लिप्ड 1.2%. Now, a little later in the program, when we discuss, you know, when we talk about the Asian markets and we will see, and also the US markets, all over these markets, the tech stocks, they rallied. But despite that, we have seen our own IT sector being a laggard. Why is that?
2: Well, you know, as I explained earlier, Anubha, see, it's like markets are run on sentiments,
0: yes.
2: That's one. But yes. Markets are also run on the practical calls made by the investors. Now, as for the Indian markets are concerned, and let's put it in context what you're pointing out, when we look at the US markets, you know, we saw nice results being posted by Microsoft, Amazon out there, and that seemed to, you know, push the US markets, and specifically the AI stocks, you know, a little higher, because the assessment is that they actually performed better than what the

0: है कि जो एक सस्टेन सी चीज हो रही है पॉजिटिव इसे बनाने के लिए, वो उसका असर हमारे घरेलू निवेशकों का है या जो बाहर के जितने भी कारण उनका असर ज्यादा देखने को मिल रहा है?
1: देखिए, ये आप एक बार फिर से निखिल, मिक्स एंड मैच अप्रोच रहती है, क्योंकि जो घरेलू कारण है जिन्हें हम घरेलू फैक्टर्स बोलते हैं,
0: मॉनसून का
1: डोमेस्टिक,
0: इसमें कितना रोल
1: जी
0: है?
1: बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, डोमेस्टिक फैक्टर्स जिनको बोलते हैं, उसमें सबसे बड़ी बात आती है कि सीजन क्या है, यानी कि मौसम क्या है. सीजन मानसून का है, और मानसून की गति जिस तरह से होनी चाहिए थी उस तरह से नहीं थी, तो उसका असर थोड़ा सा जरूर देखने को मिलता है. लेकिन दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि किसी भी सेक्टर को लेकर जो पॉलिसीज हैं उनकी कंसिस्टेंसी क्या है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, यानी कि वो कंसिस्टेंट है. तीसरा होता है कि जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट है उस पर्टिकुलर सेक्टर में वो कैसा है, चाहे वो हम स्मॉल कैप की बात करें या मिड कैप की बात करें. लेकिन उतना ही कॉन्ट्रीब्यूशन ग्लोबल फैक्टर्स का भी है, क्योंकि उनका सीधा असर सप्लाई चेन पे पड़ता है, सीधा असर मैन्युफैक्चरिंग की जो सप्लाई चेन है उस पर भी पड़ता है, एक्सपोर्ट की सप्लाई चेन पे भी पड़ता है, तो वो उसका असर जरूर देखने को मिलता है. बड़ी कंपनियों का डेटा देखें तो शायद वो पहले दिन देख के लगता है कि अरे ये तो बहुत ज्यादा असर, छोटी
0: बिल्कुल
1: कंपनियां जब जब
0: बिल्कुल
1: स्मॉल कैप मिड कैप की बात करते हैं तो उन पे भी असर पड़ता है. वो आंकड़े छोटे जरूर हो सकते हैं लेकिन असर उतना ही है.
0: जी। टाटा स्टील लिमिटेड कंपनी ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के लिए अपने वित्तीय परिणाम जारी किए हैं। संचालन गतिविधियों से कंपनी का सकल राजस्व वर्ष दर वर्ष 14% से अधिक बढ़कर 60,794 करोड़ रुपए रहा। वहीं कंपनी का सकल लाभ वार्षिक आधार पर 12% की तेजी के साथ 2,318 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है।
2: Some more quarter one results now. Bajaj Finserv Limited today reported its financial results for the first quarter of the current fiscal year. The company's consolidated revenue from operations rose over 19% year-on-year to 42,037 crore rupees. The firm's consolidated net profit attributable to the owners increased around 12% to 3,132 crore rupees on an annual basis. ITC Limited also reported its financial results today. The company's consolidated revenue from operations rose around 28% year-on-year to 29,523 crore rupees. The firm's consolidated net profit for this quarter attributable to the owners fell over 16% to 4,394 crore rupees on an annual basis. Maruti Suzuki India Limited reported its financial years for the first quarter of the current fiscal. The company's consolidated revenue from operations rose around 36% year-on-year to 52,469 crore rupees. The firm's consolidated net profit attributable to the owners fell over 9% to around 3,447 crore rupees on an annual basis. And let's also have a quick look at the results for Sun Pharmaceutical Industries Limited. The company's consolidated revenue from operations rose around 10.5% year-on-year to 15,300 crore rupees. Its consolidated net profit increased 27% to around 2,895 crore rupees on an annual basis.
0: और अब एशियाई शेयर बाजारों की बात करें तो एशियाई शेयर बाजारों में आज चिप स्टॉक्स में फिर से खरीदारी देखने को मिली। इसी वजह से दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 17.9% ऊपर पहुंच गया। ये ऐसा मौका था जिसने पिछले 3 दिनों से जारी गिरावट का सिलसिला थम गया। ताइवान के ताइएक्स में आज 8% का उछाल देखा गया और जापान के निक्केई 225 में 4% की बढ़त दर्ज हुई। इस बीच बैंक ऑफ जापान ने अपनी पॉलिसी रेट को 1% पर ही बनाए रखा है। हालांकि अपने बयान में बैंक ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही से कोर महंगाई दर के 2% से ऊपर जाने की संभावना है। विशाल जी, मेरे दो प्रश्न हैं आपसे। पहला प्रश्न तो यही, कॉस्पी के भी आपने थोड़ी देर पहले बात की थी, एक बड़ा उछाल देखने को मिला है, कई दिनों से लंबा लंबा उतार चढ़ाव इनमें देखने को मिल रहा है। और दूसरा प्रश्न ये है कि जिस तरह से बैंक ऑफ जापान तमाम स्थितियों को टैकल करने की कोशिश कर रहा है, तो इनकी अप्रोच से आपको क्या लगता है, किस तरह की अप्रोच ये रख रहे हैं?
1: देखिए, ये जो बाजार है खासतौर पर कॉस्पी और निकेई की अगर हम बात करें तो दोनों में जिस तरह की वॉलिटिलिटी पिछले लगभग कई हफ्तों से लगातार देखने को मिल रही थी, तो ये उम्मीद जरूर की जा रही थी खासतौर पे जापानी सेंट्रल बैंक से कि वो कहीं ना कहीं इंटरवेंशन जरूर करेगा, क्योंकि ये आप थोड़ा सा पीछे इतिहास में जाके देखें तो हमेशा ये एक स्ट्रक्चर भी रही है कि जब बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी निकाय में देखने को मिलती है तो जापानी सेंट्रल बैंक का इंटरवेंशन मैं बड़ी जल्दी तो नहीं कहूंगा लेकिन एक कॉशन अप्रोच के साथ जरूर होता है, तो वो हमें देखने को मिला है और वो उसकी जरूरत भी थी क्योंकि ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स भी ड्राइव कर रहे हैं और इंटरनल फैक्टर्स भी ड्राइव कर रहे हैं, जो इकोनॉमिक सिचुएशन है और जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन उस रीजन के लिहाज से भी है, तो वो भी उसका

0: नजरिया रहेगा। जहां तक कॉस्पी की बात है तो कॉस्पी में जो उतार चढ़ाव देखने को मिला उसके लिए मैं ज्यादातर अगर एनालाइज करके देखा जाए तो जो डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं उन्हीं की तरफ नजर जरूर जाती है। अब आज जो मोटे तौर पर जो चढ़ाव जो बाजार में जो बढ़ोतरी देखने को मिली वो केवल जो टेक स्टॉक्स हैं खासतौर पे सैमसंग या फिर और जो दो तीन बड़े कंपनियां हैं वहां पर उनमें उनका जो प्रदर्शन रहा उस प्रदर्शन के बनिस्बत उसकी बदौलत देखने को मिली। और अगर उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये दोनों बाजारों पर नजर रखना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि यहां से एक नजरिया आपको मिलता है कि बाकी जो एशियाई बाजार हैं भारत के नजरिए से देखें तो वहां क्या हालात चल रहे हैं। और जो जिन हम ग्लोबल फैक्टर्स की बात करते हैं वो एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी करने को मिलता है कि क्या हम ही पे उसका असर कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है या कहीं और भी हो रहा है।
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके लिए वित्त वर्ष 2030-31 तक 84,084 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना अपतटीय अन्वेषण मूल्य श्रृंखला के कार्यक्रमों का एक व्यापक समूह समाहित करती है।
2: एक्सप्लोरेशन के लिए और उसके बाद में प्रोडक्शन के लिए बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बनाया गया है जिसका नाम है समुद्र मंथन। इसके दो कंपोनेंट है बड़े, एक है डेटा एक्विजिशन, सीज़मिक डेटा एक्विजिशन। समुद्र में सी बेड के नीचे कहां पर ऑयल मिलने की संभावना ज्यादा है या गैस मिलने की संभावना ज्यादा है उसकी कुछ टेक्नोलॉजीज हैं, सीज़मिक टेक्नोलॉजीज है मोस्टली। उससे एक बार हमारे पास प्रॉपर जब डेटा आ जाए तो एक्सप्लोरेशन का प्लान ठीक से तैयार किया जा सकता है। और वंस द एक्सप्लोरेशन प्लान इज प्रिपेयर्ड देन यू कैन स्टार्ट ड्रिलिंग द होल्स एंड देन यू get the actual data whether there is oil or gas available in that particular point or not.
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक परियोजना के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को भी मंजूरी दे दी है। विशाल, दो बड़ी योजनाएं सरकार की तरफ से लाई जा रही हैं, इसमें आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित कराना चाहूंगा। सोलर फोटोवोल्टिक परियोजना के लिए तमाम तरह के उपकरणों की जरूरत होती है जिसका विनिर्माण भारत में थोड़ा सा भी कम होता है, अब उनको बढ़ावा बहुत दिया जा रहा है, इससे मार्केट को कितना लाभ होने की संभावना है?
0: देखिए, जो हम थोड़ी देर पहले एमएसएमई सेक्टर की बात कर रहे थे, सीधे तौर पर इसका बेनिफिट उसे मिलने वाला है क्योंकि एमएसएमई सेक्टर में एक एक एक नया जिसे कहा जाए ऑप्शन रहेगा बढ़ोतरी के लिए, बढ़ावे के लिए, और इसका स्केल जो है इस स्कीम का वो कोई बहुत छोटा नहीं है। दूसरा, जो आपने समुद्र मंथन योजना की बात की, मैं उस पर जरूर दो सेंटेंस बोलना चाहूंगा क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर पे जो पिछले कुछ समय से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जिस तरह से चल रही है, हमारा देश लगभग 80-85% के आसपास अपनी जो क्रूड ऑयल जो है, जो हमारी जरूरतें हैं वो हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन ये जो एक्सप्लोरेशन स्कीम है उसके चलते हम अपनी निर्भरता कम कर पाएंगे। और इस तरह की जब अगर झटका अगर आगे कहीं देखने को मिले तो उससे हम बेहतर तरीके से निपट पाएंगे। और लगभग मैं ONGC की वेबसाइट पर भी अभी पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले, लगभग 2-2.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है एक्सप्लोर किया जाएगा, यानी कि एक वृद्ध स्तर पर ये एक कोशिश है कि जिसे हम सेल्फ रिलायंस इन ऑयल प्रोडक्शन की तरफ, जो हमारे कदम है पेट्रोलियम प्रोडक्शन की तरफ, उसमें इसमें बढ़ोतरी मिलेगी।
1: जी। इस बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ी जमा राशियों पर ब्याज दरों के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। एक आधिकारिक घोषणा के अनुसार बैंकों को अपनी वेबसाइट पर सभी तरह की जमा राशियों के लिए ब्याज दरें पहले से ही स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होंगी। इनमें बड़ी जमा राशियों के लिए ब्याज दरें भी शामिल हैं। जानकारी के अनुसार नए दिशा निर्देश 1 अक्टूबर से लागू होंगे और निर्धारित की गई दरों के हिसाब से ही ब्याज देय होगा।
3: Commodity prices. Global crude oil prices rose today. Brent crude was trading 1.4% up at $90.25 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 2.6% up at $85.77 per barrel when reports last came in. In the Indian bullion market, 24 karat gold was trading 0.4% down at 1,43,500 rupees per 10 grams, while silver was trading 1.1% down at 2,17,930 rupees per kilogram a short while ago.
1: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाला सोना आज 1% की गिरावट के साथ 1,41,869 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि सितंबर अनुबंध वाली चांदी 1.2% गिरकर 2,17,309 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। विशाल, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा, जिस तरह से क्रूड ऑयल मार्केट में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा और गिरावट ज्यादा देखने को

0: बढ़ा तो उतनी शायद हमें देखने को नहीं मिली। और दूसरी तरफ जो गोल्ड और सिल्वर में गिरावट का सिलसिला बदस्तूर जारी जिसे कह सकते हैं, दोनों पर क्या कहेंगे आप?
1: देखिए, मैं तो ये यही कहूंगा कि अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस थोड़ा सा और कम नीचे हो तो उसका सीधा फायदा हमको मिलेगा। और जहां तक सोने और चांदी की बात है तो ये तू डाल डाल मैं पात पात का रिश्ता है सोने चांदी का, जो है क्रूड ऑयल के साथ या इकोनॉमिक जो सिचुएशन होती है उसके साथ। तो देखते हैं अब किसको ज्यादा फायदा मिलता है। क्रूड ऑयल स्टेबल रहेगा तो आम जनता को सीधे तौर पर फायदा है, और सोने चांदी की चमक तो सब लोग देखना चाहते हैं।
2: जी विशाल, वी आर टॉकिंग ऑफ कोर्स अबाउट द कमोडिटी प्राइसेस, बट आई वांट टू यू नो कनेक्टेड टू अनदर थिंग। वी हैव द आरबीआईज मंथली पॉलिसी मीटिंग कमिंग अप नेक्स्ट वीक, फ्रॉम मंडे इट विल बी देयर। सो what is your expectation from that meeting?

11:40 और 55 सेकेंड आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 MHz पर। गीत मेरे मनमीत और आपके संग है अर्पना। तो शुरुआत करते हैं गीत मेरे मनमीत की एक गीत के साथ। आनंद बख्शी का लिखा हुआ ये गीत है, आर डी बर्मन का संगीत है, किशोर कुमार की आवाज में होगा। फिल्म का नाम है सत्ते पे सत्ता। और इस गीत के बाद दूसरा गीत जो आप सुनेंगे उसे लिखा है मजरू सुल्तानपुरी साहब ने। संगीत पथ है राजेश रोशन का, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में होगा। फिल्म का नाम है दूसरा आदमी। तो बैक टू बैक इन दो गीतों का आनंद आप लीजिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड 100.1 MHz गीत मेरे मनमीत में।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो।

ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ चलते चलते। तो आपको वक्त बता दूं, 11:56 और 56 ही सेकंड हो चुके हैं। जावेद अख्तर का लिखा हुआ ये गीत आप सुन रहे हैं, अमिताभ बच्चन और लता मंगेशकर की आवाज में, शिव हरी का संगीत पद फिल्म सिलसिला से। इस गीत के बाद एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे समाचार। अर्पना को दे इजाजत, हंसते मुस्कुराते रहे, नमस्कार।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश जारी कर युवाओं से अभद्र भाषा और नफरत से दूर रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि गाली गलौज से कभी किसी समस्या का समाधान नहीं होता। प्रधानमंत्री ने जंतर मंतर की हाल की घटना को लेकर करते हुए कहा कि कुछ बच्चों ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जो किसी सभ्य समाज के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें और उनकी दिवंगत माता के बारे में भी अपशब्द कहे गए, लेकिन बचपन में गलती होना स्वाभाविक है और उसे सुधारने का अवसर भी मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में भोगमपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना को 5,070 करोड़ रुपए की कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई। श्री वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की भी मंजूरी दे दी है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित तो चुनाव पाकिस्तान की नीतियों को सिरे से खारिज किए जाने का प्रमाण है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में निर्दोष नागरिकों के खिलाफ लगातार दमनकारी कार्रवाइयां की जा रही हैं। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल भूटान की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पूरी की। इस दौरान उन्होंने भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता की 5वीं बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में 332 करोड़ रुपए की लागत वाली 12 नई विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। भारत ने 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस को आमंत्रित किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सम्मेलन की तैयारियां प्रगति पर हैं। भारत अध्यक्ष देश के रूप में ब्रिक्स की मेजबानी करेगा। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को भी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। वहीं भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मीन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी, अंकुश पंघाल और जादूमणि सिंह ने फाइनल में जगह बना ली है। भारत ने अब तक प्रतियोगिता में 5 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदक जीत लिए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो में अस्मिता डे और हर्ष सिंह को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। तन्वी शर्मा और उन्नति हुड्डा ने ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में उन्नति ने देविका सिहाग को और तन्वी ने सुपनिडा कटेथोंग को हराया। पुरुष सिंगल्स में किरण जॉर्ज प्रतियोगिता से बाहर हो गए। उज्बेकिस्तान के बाकू में जारी अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की महिला पहलवानों ने 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। संध्या बिश्नोई और अक्षरा ने अपने अपने वर्ग में रजत पदक हासिल किए। वहीं अवंशिका और तानिया ने कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में पुरुष फ्रीस्टाइल मुकाबले आज से शुरू होंगे। मौसम विभाग ने आज गुजरात के में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। आज तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, केरल, माही, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी तेज बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। प्रोग्राम है निशिगंधा और मैं हूं आपके साथ सुरभि। जब तेरी याद के जुगनू चमके, जब तेरी याद के जुगनू चमके, देर तक आंख में आंसू चमके। बात करेंगे यादों की, क्योंकि यादें सिर्फ यादें नहीं होती, वो दिल में बस जाने वाली वो धड़कन होती हैं, वो एहसास होते हैं जिसको लेकर हम अपने दर्द से कहीं ना कहीं वाबस्ता होते हैं और अपने दर्द को हम महसूस करते हैं और उस प्यार को भी महसूस करते हैं जो किसी की अमानत है। तो निशिगंधा प्रोग्राम में ऐसे ही खूबसूरत गीतों को लेकर आए हैं जिसमें दर्द है, प्यार है, मोहब्बत है। तो आगाज़ करते हैं, आपको सुनवाते हैं रफ़ी साहब की आवाज़ में इशारा फिल्म का ये गीत।

कभी किसी की आंखों में अपना अक्स दिखाई दे जाए तो समझ लीजिए कि मोहब्बत ने खामोशी से दिल में घर बना लिया है। जी हाँ, ये आंखें सिर्फ देखती नहीं बल्कि वो ख्वाब संजोती हैं, एहसास छुपाती हैं और कभी कभी पूरी जिंदगी की कहानी कह जाती हैं। तो इस चांदनी रात में अगर आपकी निगाहें भी किसी एक चेहरे पर ठहर गई हैं तो शायद वही आपकी दुनिया है। तो इसी बहुत ही खूबसूरत एहसास के साथ चलिए सुनवाते हैं आपको प्यासा फिल्म का ये गीत।

निशिगंधा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। तेरे हल्के से तबस्सुम का इशारा भी तो हो, तेरे हल्के से तबस्सुम का इशारा भी तो हो, तासरे दार पहुंचने का सहारा भी तो हो। किस तरफ मोड़ दे टूटी हुई कश्ती अपनी, किस तरफ मोड़ दे टूटी हुई कश्ती अपनी, ऐसे तूफान में कहीं कोई किनारा भी तो हो, तेरे हल्के से तबस्सुम का इशारा भी तो हो।

निशिगंधा सुरभि के साथ आप सुन रहे हैं और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। आंखों में अश्क भर के मुझसे नजर मिला के, आंखों में अश्क भर के मुझसे नजर मिला के, देखो तो मेरी जानिब एक बार मुस्कुरा के। दूरी ने लाख जलवे तख्लीक कर दिए थे, दूरी ने लाख जलवे तख्लीक कर दिए थे, फिर दूर हो गए हम तेरे करीब आके, फिर दूर हो गए हम तेरे करीब आके, देखो तो मेरी जानिब एक बार मुस्कुरा के, आंखों में अश्क भर के मुझसे नजर मिला के, देखो तो मेरी जानिब एक बार मुस्कुरा के।

और चलिए अब निशिगंधा में आपको सुनवाते हैं आशा भोसले की आवाज में इंसान जाग उठा फिल्म का ये गीत।

आशा भोसले के साथ की तदत को अभी आप सुन रहे थे जानू जानू री इंसान जाग उठा फिल्म के इस गीत में। जी हाँ, अगला गीत जो हम आपके लिए लेकर आए हैं उससे पहले बहुत खूब कहा है किसी ने कि छलक रही है जो मुझ में वो तिश्नगी ही ना हो, छलक रही है जो मुझ में वो तिश्नगी ही ना हो, वो शय जो दिल में फरावा है बेदिली ही ना हो, गुजर रहा है तू किस गुरेज करता हुआ, ठहर के देख।

ले ये दिल कहीं खुशी ही ना हो, छलक रही है जो मुझ में वो तिश्नगी ही ना हो, ठहर के देख ले ये दिल कहीं वो खुशी ही ना हो।

और चलिए निशिगंधा प्रोग्राम में अपने अंजाम पर हम आ चुके हैं और चलते चलते आपको सुनवाएंगे चोर मचाए शोर फिल्म का ये गीत, किशोर कुमार और आशा भोसले और साथियों की आवाज़ में।

और इसी गीत के साथ निशिगंधा का ये सफ़र यहीं तक, हमारी मुलाकात होगी गीत सुहाने में, और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश जारी कर युवाओं से गाली गलौज और नफरत से दूर रहने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि

0: ताली देने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। जंतर मंतर की हाल की घटना का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कुछ बच्चों ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जो किसी भी सभ्य समाज के लिए उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके और उनकी दिवंगत माता के बारे में भी अपशब्द कहे गए। ऐसे बच्चों को सजा देने या समाज में अपमानित करने के बजाय उन्हें सही रास्ता दिखाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे इन बच्चों को क्षमा करते हैं और समाज से भी उन्हें सुधार का अवसर देने की अपील करते हैं। श्री मोदी ने कहा कि देश आगे बढ़ रहा है और वे चाहते हैं कि देश का युवा भी आगे बढ़े और राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी निभाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित इस हवाई अड्डे को प्रतिवर्ष 60 लाख यात्रियों को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना को 5,070 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई।
1: प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना में जितने वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के किलम देवसर क्षेत्र में आतंकवादियों के हमले में एक मजदूर की मौत हो गई जबकि एक अन्य घायल हो गया। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक वी के बिरदी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि आतंकवादियों की तलाश जारी है। केरला में समुद्र में मछली पकड़ने पर लगी रोक आधी रात से हटा ली गई है। मछलियों के प्रजनन समय को देखते हुए मशीनों से मछली पकड़ने पर 52 दिन का यह वार्षिक प्रतिबंध लगाया गया था। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथा कथित चुनाव पाकिस्तान की नीतियों को सिरे से खारिज किए जाने का प्रमाण है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में निर्दोष नागरिकों के खिलाफ लगातार दमनकारी कार्रवाई की जा रही है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल भूटान की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पूरी की। इस दौरान उन्होंने भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता की 5वीं बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में 332 करोड़ रुपए की लागत वाली 12 नई विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। भारत ने 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस को आमंत्रित किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सम्मेलन की तैयारियां प्रगति पर हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। वहीं भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मी लंबोरिया, अरुंधति चौधरी, अंकुश पंघाल और जादूमणि सिंह ने फाइनल में जगह बना ली है। भारत ने अब तक प्रतियोगिता में 5 स्वर्ण, 11 रजत और 4 कांस्य पदक जीत लिए हैं। उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो में अस्मिता डे और हर्ष सिंह को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। The Union Cabinet has approved the Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana PMSSY for development of floating solar photovoltaic projects with energy

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है गीत सुहाने और मैं हूं आपके साथ सुरभि। दिल को सुकून देने वाले, यादों को फिर से महकाने वाले और होठों पर मुस्कुराहट लाने वाले सदाबहार गीतों की महफिल गीत सुहाने लेकर मैं हूं आपके साथ सुरभि एक बार फिर। तो चलिए आगाज करते हैं आज के सबसे पहले गीत के साथ, जिसे गाया है शैलेंद्र सिंह ने और फिल्म है बॉबी।

कहते हैं मोहब्बत जब अपनी जबान चुनती है तो अल्फाज नहीं आंखों का सहारा लेती है। कुछ निगाहें ऐसी होती हैं जिसमें सुकून भी मिलता है और पूरी दुनिया भी। और जब रात का वक्त आता है और ऐसे में जब किसी की आंखें याद आ जाती हैं, किसी का चेहरा नज़र आ जाता है, तो ऐसा लगता है मानो सारे सितारे उसी में उतर आए हैं। तो चलिए, अगर आपको भी अपनी आंखों में ऐसा ही कोई चेहरा नज़र आता है या फिर आपके दिल ने भी ऐसी ही कोई मंजिल चुन ली है तो बहुत खूब। तो चलिए, इसी खूबसूरत एहसास के साथ सुनवाते हैं आपको एक और सदाबहार नगमा, फिल्म है घर। चलिए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत।

गीत सुहाने प्रोग्राम आप सुरभि के साथ सुन रहे हैं। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। दोस्तों, हर दिल का अपना एक झरोखा होता है जहां पर कोई खास ही बैठ सकता है। हर किसी को उस झरोखे में जगह नहीं मिलती, लेकिन जब कोई सच्चे मन से दस्तक देता है तो उसकी यादें, उसका चेहरा हमेशा के लिए उस झरोखे में बस जाता है। तो वही चेहरा जो कई बार जब हम तन्हा बैठते हैं, अकेले बैठते हैं, तो वही चेहरा, वही मुस्कुराहट याद आती है और दिल को सुकून देती है। तो चलिए सुनते हैं अगला गीत। फिल्म है ब्रह्मचारी, आवाज़ है रफ़ी साहब और साथियों की।

गीत सुहाने आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर सुरभि के साथ। अगला गीत जो आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही खूबसूरत गीत है, लेकिन उससे पहले बहुत खूब कहा है किसी ने कि उनसे कहीं मिले हैं तो हम यूं कभी मिले, उनसे कहीं मिले हैं तो हम यूं कभी मिले, एक अजनबी से जैसे कोई अजनबी मिले। कुछ दूर आओ मौत के हमराह भी चलें, कुछ दूर आओ मौत के हमराह भी चलें, मुमकिन है रास्ते में कहीं जिंदगी मिले। एक अजनबी से जैसे कोई अजनबी मिले, उनसे कहीं मिले हैं तो हम यूं कभी मिले, एक अजनबी से जैसे कोई अजनबी मिले।

हर एक दर्द को हरफे गजल बना दूंगा, हर एक दर्द को हरफे गजल बना दूंगा, चला तो हूं कि तेरी राह गुजर दिखा दूंगा। गमे हयात मेरे साथ साथ ही रहना, पयंबरी से तेरा सिलसिला मिला दूंगा। न इंतजार न आहें न भीगती रातें, न इंतजार न आहें न भीगती रातें, खबर न थी कि तुझे इस तरह भुला दूंगा। हर एक दर्द को हरफे गजल बना दूंगा, चला तो हूं कि तेरी राह गुजर दिखा दूंगा।

इसी के साथ गीत सुहाने का सफर यहीं तक। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर रात सुरमई में। और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश जारी कर युवाओं से गाली गलौज और नफरत से दूर रहने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि गाली देने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। जंतर मंतर की हाल की घटना का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कुछ बच्चों ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जो किसी भी सभ्य समाज के लिए उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके और उनकी दिवंगत माता के बारे में भी अपशब्द कहे गए। ऐसे बच्चों को सजा देने या समाज में अपमानित करने के बजाय उन्हें सही रास्ता दिखाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे इन बच्चों को क्षमा करते हैं और समाज से भी उन्हें सुधार का अवसर देने की अपील करते हैं। श्री मोदी ने कहा कि देश आगे बढ़ रहा है और वे चाहते हैं कि देश का युवा भी आगे बढ़े और राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी निभाए। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर अस्थायी रोक लगाने के मामले में मेटा

0: की ग्लोबल टीम को तलब किया है। सप्ताह के शुरुआत में श्री मोदी की फेसबुक पोस्ट पर कुछ समय के लिए रोक लगाए जाने के बाद सरकार ने मेटा के एक वरिष्ठ अधिकारी को भी तलब किया था। मेटा ने इसे तकनीकी गड़बड़ी बताते हुए खेद जताया था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस स्पष्टीकरण को पर्याप्त नहीं माना। आधिकारिक सूत्रों ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि मेटा की टीम अगले सप्ताह के मध्य तक भारत आ सकती है। टीम एक संसदीय समिति के समक्ष भी पेश होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित इस हवाई अड्डे को प्रतिवर्ष 60 लाख यात्रियों को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के किलम देवसर क्षेत्र में आतंकवादियों के हमले में एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक वी के बिरदी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि आतंकवादियों की तलाश जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और आतंकवादियों के खिलाफ अभियान तेज करने के निर्देश दिए हैं। भारत ने 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस को आमंत्रित किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सम्मेलन की तैयारियां प्रगति पर हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। वहीं भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मीन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी, अंकुश पंघाल और जादूमणि सिंह ने फाइनल में जगह बना ली है। भारत ने अब तक प्रतियोगिता में 5 स्वर्ण, 11 रजत और 5 कांस्य पदक जीत लिए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो में अस्मिता डे और हर्ष सिंह को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। तन्वी शर्मा और उन्नति हुड्डा ने ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में उन्नति ने देविका सिहा को और तन्वी ने सुपनिडा कटथोंग को हराया। पुरुष सिंगल्स में किरण जॉर्ज प्रतियोगिता से बाहर हो गए। अजरबैजान के बाकू में जारी अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की महिला पहलवानों ने 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। संध्या विश्नोई और अक्षरा ने अपने अपने वर्ग में रजत पदक हासिल किए। वहीं अवंशिका और तानिया ने कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में पुरुष फ्रीस्टाइल मुकाबले आज से शुरू होंगे। मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, केरलम, माही, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। The Union Cabinet has approved the Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana PMSSY for development of floating solar photovoltaic projects with energy storage systems. Addressing media in New Delhi after the Union Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said that the scheme has been approved with a total outlay of 5,070 crore rupees. He said the scheme envisages the development of 5,000 megawatt of floating solar photovoltaic projects with co-located energy storage systems having a minimum storage capacity of 2 hours totaling 10,000 megawatt hours. The Union Cabinet also given its approval to the continuation of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi PM Kisan scheme from 2026-27 to 2030-31. Mr. Vaishnaw said a total financial outlay of 3.15 lakh crore rupees has been approved for this scheme to

सुरमई और मैं हूँ सुरभि आपके साथ। चमकते ख्वाब मिलते हैं, महकते प्यार मिलते हैं। चमकते ख्वाब मिलते हैं, महकते प्यार मिलते हैं। तुम्हारे शहर में कितने हसीं आजार मिलते हैं। चले आते हैं चुपके से ख्यालों के महो अंजुम। चले आते हैं चुपके से ख्यालों के महो अंजुम। मेरी तारीक रातों को बहुत गमखार मिलते हैं। चमकते हैं, चमकते ख्वाब मिलते हैं, महकते प्यार मिलते हैं। तुम्हारे शहर में कितने हसीं आजार मिलते हैं। तो चलिए रात सुरमई का आगाज करते हैं और सुनवाते हैं आपको लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत।

रात सुरमई आप सुरभि के साथ सुन रहे हैं. आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज और 2:23 हुए हैं. अंदर कुछ तब्दील न बाहर बदला है, अंदर कुछ तब्दील न बाहर बदला है, हम बदले और न मंजर बदला है. अंदर कुछ तब्दील न बाहर बदला है, हम तुम बदले और न मंजर बदला है. हमने पर्दा डाल रखा है आंखों पर, चेहरा तो अहबाब ने अक्सर बदला है. हम तुम बदले और न मंजर बदला है, अंदर कुछ तब्दील न बाहर बदला है. तो चलिए अगला गीत सुनवाते हैं आपको राम लखन फिल्म से, मनहर और अनुराधा पुंडवाल और साथियों की आवाज़ में.

रात सुरमई आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ और 2:37 हो चुके हैं। जी हाँ, शहर के साथ चले, रोशनी के साथ चले, शहर के साथ चले, रोशनी के साथ चले, तमाम उम्र हम किसी अजनबी के साथ चले। तुम्हारे शहर में अनजान सा मुसाफिर था, तुम्हारे शहर में जिस आदमी के साथ चले। उम्र भर हम तमाम उम्र हम किसी अजनबी के साथ चले। और इसी के साथ चलिए अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं, हंगामा फिल्म से अभिजीत अलकायाग्निक और सोनू निगम की आवाज़ में।

फरेब फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अभिजीत की आवाज में। शहर का हुस्न गुलों का शबाब देता हूँ, शहर का हुस्न गुलों का शबाब देता हूँ, नई गजल को नई आब उताब देता हूँ, वफा की प्यार की गम की कहानियां लिखकर, वफा की प्यार की गम की कहानियां लिखकर, शहर के हाथ में दिल की किताब देता हूँ, नई गजल को नई आब उताब देता हूँ, शहर के हाथ में दिल की किताब देता हूँ।

और इसी गाने के साथ रात सुरमई का ये सफर यहीं तक। आपकी हमारी मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। सुरभि को दीजिए अनुमति, अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित इस हवाई अड्डे को प्रतिवर्ष 60 लाख यात्रियों को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश जारी कर युवाओं से गाली गलौज और नफरत से दूर रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि गाली देने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। जंतर मंतर की हाल की घटना का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कुछ बच्चों ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जो किसी भी सभ्य समाज के लिए उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके और उनकी दिवंगत माता के बारे में भी अपशब्द कहे गए। ऐसे बच्चों को सजा देने या समाज में अपमानित करने के बजाय उन्हें सही रास्ता दिखाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे इन बच्चों को क्षमा करते हैं और समाज से भी उन्हें सुधार का अवसर देने की अपील करते हैं। श्री मोदी ने कहा कि देश आगे बढ़ रहा है और वे चाहते हैं कि देश का युवा भी आगे बढ़े और राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी निभाए। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर अस्थायी रोक लगाने के मामले में मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। सप्ताह की शुरुआत में श्री मोदी की फेसबुक पोस्ट पर कुछ समय के लिए रोक लगाए जाने के बाद सरकार ने

0: मेटा के एक वरिष्ठ अधिकारी को भी तलब किया था। मेटा ने इसे तकनीकी गड़बड़ी बताते हुए खेद जताया था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस स्पष्टीकरण को पर्याप्त नहीं माना। आधिकारिक सूत्रों ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि मेटा की टीम अगले सप्ताह के मध्य तक भारत आ सकती है। इसके अलावा टीम एक संसदीय समिति के समक्ष भी पेश होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना को 5,070 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल भूटान की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पूरी की। इस दौरान उन्होंने भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता की 5वीं बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में 332 करोड़ रुपए की लागत वाली 12 नई विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। भारत ने 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस को आमंत्रित किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सम्मेलन की तैयारियां प्रगति पर हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। वहीं भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मीन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी, अंकुश पंघाल और जादूमणि सिंह ने फाइनल में जगह बना ली है। भारत ने अब तक प्रतियोगिता में 5 स्वर्ण, 11 रजत और 5 कांस्य पदक जीत लिए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और युवा मामले एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो में अस्मिता डे और हर्ष सिंह को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। तन्वी शर्मा और उन्नति हुड्डा ने ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में उन्नति ने देविका सिहाग को और तन्वी ने सुपनिडा कटेथोंग को हराया। पुरुष सिंगल्स में किरण जॉर्ज प्रतियोगिता से बाहर हो गए। मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, केरलम, माही, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. The Union Cabinet has approved the Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana PMSSY for development of floating solar photovoltaic projects with energy storage systems. Addressing media in New Delhi after the Union Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said that the scheme envisages the development of 5,000 megawatt of floating solar photovoltaic projects with co-located energy storage systems having a minimum storage capacity of 2 hours, totaling 10,000 megawatt hours. The Union Cabinet also given its approval to the continuation of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi PM Kisan scheme from 2026-27 to 2030-31. Prime Minister Narendra Modi shared a video carrying a message against abusive language and hate, saying that abuses never solve anything. In the video message posted on his social media handles, Mr. Modi said, "The country and the world has witnessed what happened at Jantar Mantar where some mischievous children used very abusive language." Mr. Modi said, "It is the time to embrace these children and show them the right path."
2: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
1: Both

कुछ अलमारियां लकड़ी की होती हैं और कुछ दिल की। लकड़ी की अलमारी में कपड़े रखे जाते हैं और दिल की अलमारी में यादें। आज रात आइए खोलते हैं उसी अलमारी का एक एक खाना, जहां पुराने गीत अभी भी महक रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 3:11 हो चुके हैं और इस वक्त हमराही कार्यक्रम के साथ मैं आपकी दोस्त अर्चना गोयल, और अगले 50 मिनट तक मैं आपके साथ मिलकर उन गीतों से मुलाकात करेंगे जो सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं। आज की रात शुरुआत इस प्यारे से गीत के साथ।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में ये गीत था फिल्म फकीरा से। कहते हैं कि जिंदगी में कुछ मुस्कानें ऐसी होती हैं जो बरसों बाद भी

याद रहती हैं। शायद स्कूल का कोई दोस्त या कॉलेज का कोई चेहरा या किसी सफर में मिली एक अनजानी मुस्कान। दोस्तों, कई बार ऐसी मीठी यादें हमारे दिल में एक मिठास घोल जाती हैं और दे जाती हैं एक मीठी सी कसक भरी मुस्कान।

आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में ये गीत था फिल्म सावन की घटा से। कितनी अजीब बात है ना, पुराने गीत जब भी सुनो उतने ही जवान और मिठास भरे लगते हैं। ये कभी बूढ़े नहीं होते, उम्र तो हमारी बढ़ती है, लेकिन ये गीत हर बार नए लगते हैं। शायद इसलिए कि हर बार इन्हें सुनने वाला दिल थोड़ा बदल जाता है। और अब अगला गीत उस एहसास के नाम जब किसी का इंतज़ार भी अच्छा लगता है।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम रही और मैं हूं आपके साथ अर्चना गोयल। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 3:28 और ठीक 8 सेकेंड। बारिश की एक बूंद खिड़की पर गिरती है और अचानक कोई पुराना मौसम लौट आता है। पुराने गीत भी कुछ इस तरह ही होते हैं, एक धुन और बरसों पुरानी शाम फिर से आंखों के सामने आ जाती है। एक ज़माना था जब ऑनलाइन नहीं इंतज़ार हुआ करता था, जब जवाब आने में कई दिन लगते थे लेकिन रिश्ते जल्दी से टूटते नहीं थे। उस दौर की खुशबू लिए सुनते हैं अगला गीत।

पराया धन फिल्म में ये आवाज़ें थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। रात जब खामोश हो और बारिश की बूंदे खिड़की पर दस्तक देने लगे तो लगता है जैसे आसमान भी अपनी कोई अधूरी कहानी कह रहा हो। ऐसी रातों में कुछ यादें बिना बुलाए चली आती हैं, कुछ चेहरे धुंधली रोशनी में साफ दिखाई देने लगते हैं और कुछ पुराने गीत दिल की धड़कनों का हिस्सा बन जाते हैं। ऐसे ही रात में सुनते हैं एक भीगा भीगा गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म दो करियां से।

क्या आपने कभी बारिश की बूंदों को छत पर गिरते हुए सुना है? हर बूंद की अपनी एक आवाज होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी जिंदगी के हर रिश्ते की अपनी धुन होती है। कुछ धुनें उम्र भर साथ रहती हैं और कुछ सिर्फ एक मौसम के लिए आती हैं, लेकिन उनकी गूंज हमेशा दिल में रह जाती है। अब सुनते हैं एक ऐसा नगमा जो शायद आपकी किसी खूबसूरत बरसाती शाम का हिस्सा रहा हो।

कहते हैं कि मोहब्बत अगर सच्ची हो तो बारिश उसका मौसम बन जाती है, क्योंकि बारिश में कोई किसी का हाथ थाम ले तो सफ़र छोटा लगने लगता है, और अगर वही हाथ छूट जाए तो पूरी बारिश तन्हा कर जाती है।

रात और घेरी हो चली है, मौसम भी शायद कुछ ऐसा ही है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें कभी थमना नहीं चाहिए। अपनों की याद, दिल की मासूमियत और पुराने गीतों से मोहब्बत, इन्हीं एहसासों के साथ बढ़ते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

आज की इस रात में बस इतना ही कहना है, बारिश हर बार मौसम नहीं बदलती, कभी कभी इंसान भी बदल देती है, लेकिन कुछ गीत ऐसे होते हैं जो हर बदलते मौसम में भी वही सुकून देते हैं।

और अब मैं आपकी दोस्त अर्चना गोयल आपसे विदा लेती हूँ। समाचारों के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी 4:10 पर कार्यक्रम अरुणिमा में। तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित इस हवाई अड्डे को प्रतिवर्ष 60 लाख यात्रियों को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश जारी कर युवाओं से गाली गलौज और नफरत से दूर रहने की अपील की। उन्होंने कहा है कि गाली देने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। जंतर मंतर की हाल की घटना का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कुछ बच्चों ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जो किसी भी सभ्य समाज के लिए उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके और उनकी दिवंगत माता के बारे में भी अपशब्द कहे गए। ऐसे बच्चों को सजा देने या समाज में अपमानित करने के बजाय उन्हें सही रास्ता दिखाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे इन बच्चों को क्षमा करते हैं और समाज से भी उन्हें सुधार का अवसर देने की अपील करते हैं। श्री मोदी ने कहा कि देश आगे बढ़ रहा है और वे चाहते हैं कि देश का युवा भी आगे बढ़े और राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी निभाए। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक पोस्ट पर अस्थायी रोक लगाने के मामले में मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। सप्ताह की शुरुआत में श्री मोदी की फेसबुक पोस्ट पर कुछ समय के लिए रोक लगाए जाने के बाद सरकार ने मेटा के एक वरिष्ठ अधिकारी को भी तलब किया था। मेटा ने इसे तकनीकी गड़बड़ी बताते हुए खेद जताया था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस स्पष्टीकरण को पर्याप्त नहीं माना। आधिकारिक सूत्रों ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि मेटा की टीम अगले सप्ताह के मध्य तक भारत आ सकती है। इसके अलावा टीम एक संसदीय समिति के समक्ष भी पेश होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोट

0: सौर फोटो वोल्टिक परियोजना के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना को 5,070 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के किलम देवसर क्षेत्र में आतंकवादियों के हमले में एक मजदूर की मौत हो गई जबकि एक अन्य घायल हो गया। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक वी के बिरदी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि आतंकवादियों की तलाश जारी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल भूटान की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पूरी की। इस दौरान उन्होंने भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता की 5वीं बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में 332 करोड़ रुपए की लागत वाली 12 नई विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। भारत ने 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस को आमंत्रित किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सम्मेलन की तैयारियां प्रगति पर हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। वहीं भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन, साक्षी, प्रिया और सचिन ने फाइनल में अपनी जगह बना ली है। इससे पहले प्रीति पवार, जैस्मीन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी, अंकुश पंघाल और जादूमणि सिंह ने फाइनल में पहुंच चुके हैं। अब राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के 9 मुक्केबाज अपने अपने वर्ग के फाइनल पहुंच गए हैं। भारत ने अब तक प्रतियोगिता में 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक जीत लिए हैं। तन्वी शर्मा और उन्नति हुड्डा ने ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में उन्नति ने देविका सिहाग को और तन्वी ने सुपनिडा कटेथोंग को हराया। पुरुष सिंगल्स में किरण जॉर्ज प्रतियोगिता से बाहर हो गए। मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान है। दिल्ली में आज मूसलाधार बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi will be on a day visit to Andhra Pradesh and Karnataka today. In Andhra Pradesh, the Prime Minister will inaugurate the Alluri Sitaram Raju International Airport at Bhogpuram. Developed under the public-private partnership mode at a cost of over 5,600 crore rupees, the Greenfield Airport has been designed to handle 6 million passengers annually. The Prime Minister will also dedicate to the nation and lay the foundation stone of national highway projects worth over 1,880 crore rupees. After concluding his visit to Andhra Pradesh, Prime Minister will reach Mysuru, Karnataka, where he will inaugurate the Swami Vivekananda Cultural Youth Centre, Vivek Smarak. Prime Minister Narendra Modi shared a video carrying a message against abusive language and hate, saying that abusers never solve anything. In the video message posted on his social media handles, Mr. Modi said, "The country and the world has witnessed what happened at the Jantar Mantar where some mischievous children used very abusive language." Mr. Modi said, "It is a time to embrace these children and show them the right path."
2: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
1: The Union Cabinet has approved the Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana PMSSY for development of floating solar photovoltaic projects with energy storage systems. Addressing media in New Delhi after the Union Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said, Now, the scheme envisages the development of 5,000 megawatt of floating solar photovoltaic projects with

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा। समय हुआ है सुबह के 4:11 और ठीक 9 सेकंड और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना गोयल। नमस्कार दोस्तों, कार्यक्रम का आगाज करते हैं उस ईश्वर के नाम जिनके कारण ये संसार है।

दोस्तों, आज की ये सुबह सिर्फ एक नई तारीख नहीं है, बल्कि एक नया अवसर लेकर आई है। कहते हैं जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती है, तब प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में जाग रही होती है। वही समय है ब्रह्म मुहूर्त का, जब हवा सबसे निर्मल होती है, मन सबसे शांत होता है और आत्मा परमात्मा के सबसे निकट होती है।

जानते हो, भोर की पहली किरण से पहले का ये शांत समय हमें सिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ा शोर बाहर नहीं, भीतर होता है। और जब भीतर का शोर शांत हो जाता है, तभी जीवन का संगीत सुनाई देता है।

जरा सोचिए, चिड़ियों ने अपना गीत शुरू नहीं किया, सूरज ने अभी अपनी सुनहरी चादर नहीं बिछाई, लेकिन प्रकृति जाग चुकी है और उसकी हर बूंद, पत्तों की हर सरसराहट और बहती हवा का हर झोंका जैसे कह रहा हो, आज का दिन तुम्हें एक नई शुरुआत देने आया है। बीती हुई बातों का बोझ यहीं छोड़ दो और उम्मीदों का दीप अपने भीतर जगा दो।

जो व्यक्ति सुबह अपने विचारों को सुंदर बना लेता है उसका पूरा दिन सुंदर बन जाता है, क्योंकि दिन की दिशा हमारे विचार तय करते हैं कि आज हमें क्या पॉजिटिव सोच रखकर आगे बढ़ना है।

दोस्तों, सुबह का ये समय हमें ये भी याद दिलाता है कि जैसे अंधेरी रात के बाद सूर्योदय निश्चित है, वैसे ही कठिन समय के बाद उजाला भी निश्चित है। इसलिए कभी भी निराशा को अपने मन का स्थायी मेहमान मत बनने दीजिए।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा, और अरुणिमा के साथ मैं हूं अर्चना गोयल। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है

0: कहते हैं जीवन बदलने के लिए बड़े अवसरों की नहीं, हर सुबह मिलने वाले छोटे छोटे अवसरों को पहचानने की आवश्यकता होती है। हर सुबह हमें ईश्वर दो रास्ते देते हैं, एक शिकायतों का और एक धन्यवाद का। जो व्यक्ति धन्यवाद का मार्ग चुन लेता है उसके जीवन में प्रसन्नता स्वयं चली आती है।
1: Mazi was the first picture of Navketan that gave me an image, and Gurudat a big image, and Geeta Bali a big image, Nesty Burman, Sahil Dhani, everybody a big image. Starting point.

जानते हो दोस्तों, दिन का सबसे पवित्र समय वो होता है जब रात विदा होने लगती है और सूरज अभी क्षितिज से झांका भी नहीं होगा। यही है वो बेला जब प्रकृति मौन होकर भी बहुत कुछ कहती है। इस समय हवा में एक अलग ही ताजगी होती है। पेड़ की पत्तियां बिना आवाज के भी प्रार्थना करती महसूस होती हैं। उसकी हर बूंद मानो धरती के माथे पर सजा हुआ मोती हो।

सूर्योदय ये नहीं बताता कि सूर्य कितना शक्तिशाली है, बल्कि ये बताता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, उसका अंत निश्चित है। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यदि मन में विश्वास का दीपक जलता रहे तो हर अंधेरा पीछे हट जाता है।

दीपक बनना है तो सबके लिए जलना सीखिए, केवल अपने लिए नहीं। आज का दिन किसी दौड़ का नहीं बल्कि अपने बेहतर स्वरूप की ओर बढ़ने का दिन है। तो मुस्कुराते रहिए, गहरी सांस लीजिए और इस सुबह का स्वागत पूरे मन से कीजिए। फिलहाल अपनी दोस्त अर्चना गोयल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीतारामन राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित इस हवाई अड्डे को प्रतिवर्ष 60 लाख यात्रियों को संभालने के लिए तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री इस दौरान विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखानी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी दिवंगत माता के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा है और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है। श्री मोदी ने कहा कि ऐसे युवाओं को अदालती कार्यवाही में घसीटने या सामाजिक उत्पीड़न का शिकार बनाने के बजाय समाज को उन्हें अपनाना चाहिए और उन्हें सही रास्ता दिखाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो इसमें शामिल बच्चों को माफ करना चाहते हैं और लोगों से सहानुभूति और समझ की इस भावना को अपनाने की अपील की। दंड के बजाय मार्गदर्शन के महत्व पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जो युवा भटक जाते हैं उन्हें समर्थन और सकारात्मक दिशा की आवश्यकता होती है, ताकि वो जिम्मेदार नागरिक बन सकें। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर अस्थायी रोक लगाने के मामले में मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। सप्ताह के शुरुआत में श्री मोदी की फेसबुक पोस्ट पर कुछ समय के लिए रोक लगाए जाने के बाद सरकार ने मेटा के एक वरिष्ठ अधिकारी को भी तलब किया था। मेटा ने इसे तकनीकी गड़बड़ी बताते हुए खेद जताया था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस स्पष्टीकरण को पर्याप्त नहीं माना। आधिकारिक सूत्रों ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि मेटा की टीम अगले सप्ताह के मध्य तक भारत आ सकती है। इसके अलावा टीम एक संसदीय समिति के समक्ष भी पेश होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल 4 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों सहित 33 सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी। इस योजना के अंतर्गत 5,070 करोड़ रुपए को मंजूरी दी गई है। साथ ही मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी मंजूरी दी, जिसके लिए अगले 5 वर्षों में 84,084 करोड़ रुपए का

0: बजट निर्धारित किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 वर्ष तक जारी रखने और 36,441 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ खेलो इंडिया योजना, साथ ही राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल भूटान में भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता की 5वीं बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में 332 करोड़ रुपए की लागत वाली 12 नई विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। उज़्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदोव बख्तियार ओडिलोविच कल से 4 दिवसीय यात्रा पर भारत आएंगे। इस दौरान वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत कुल 23 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है, जिसमें 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। जूडो में भारत ने पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वहीं मुक्केबाजी में 10 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बना ली है। एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा ने पुरुष भाला फेंक में रजत पदक जीता, जबकि यशवीर सिंह ने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। डेकेथलॉन में कांस्य पदक जीतकर इस स्पर्धा में राष्ट्रमंडल खेलों का पदक जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi will be on a day visit to Andhra Pradesh and Karnataka today. In Andhra Pradesh, the Prime Minister will inaugurate the Alluri Sitaram Raju International Airport at Bhogpuram. Developed under the public-private partnership mode at a cost of over 5,600 crore rupees, the Greenfield Airport has been designed to handle 6 million passengers annually. The Prime Minister will also dedicate to the nation and lay the foundation stone of national highway projects worth over 1,880 crore rupees. After concluding his visit to Andhra Pradesh, Prime Minister will reach Mysuru, Karnataka, where he will inaugurate the Swami Vivekananda Cultural Youth Center, Vivek Smarak. Prime Minister Narendra Modi has said that abuse and hatred never solve anything. He appealed for compassion towards misguided youth who have gone astray, saying they should be guided onto the right path in the spirit of nation building and national interest rather than punished. In a video message posted on his social media handles, the Prime Minister referred to the recent incident at Jantar Mantar in National Capital, where abusive language was used against him and his late mother. He said the episode had been witnessed by people across the country and the world, adding that while the anger and disappointment in society over such conduct were understandable, childhood is also a phase of learning, making mistakes and correcting them. Mr. Modi said, instead of dragging such youngsters through court proceedings or subjecting them to social harassment, society should embrace them and show them the right path.
2: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
1: The Union Cabinet has approved the Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana PMSSY for development of floating solar photovoltaic projects with energy storage systems. Addressing media in New Delhi after the Union Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said that the scheme envisages the development of 5,000 megawatt of floating solar photovoltaic projects with co-located energy storage systems having a minimum storage capacity of 2 hours totaling 10,000 megawatt hour. The Union Cabinet has also given its approval to the continuation of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi PM Kisan scheme from 2026-27 to 2030-31.

नमस्कार श्रोताओं, नई सुबह की नई सुनहरी किरणों के साथ आपका हार्दिक स्वागत है भोर सुहानी कार्यक्रम में। मैं हूं आपकी साथी अर्चना गोयल और अगले 40 मिनट तक हम साथ मिलकर महसूस करेंगे उस सुबह को जो हर दिन हमें नई उम्मीद, नया उत्साह और नए सपनों के साथ पुकारती है। आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। दोस्तों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगा हर्ट्ज पर।

पर गोपी करत सब हा हा दैया, दाय उठाय लियो गिर नक पर बंसि बजावत धेनु चनैया, जग के मोहन मन में भाए नित्य करत राधा राधा राधा।

रात की चादर अब धीरे धीरे सिमट रही है, पूरब के आकाश में सूरज की पहली किरण सुनहरी मुस्कान बिखेर रही है। पेड़ों की डालियों पर बैठे पंछी मधुर स्वर में जैसे जीवन का सबसे सुंदर गीत गा रहे हैं। ठंडी ठंडी हवा चेहरे को छूकर यह एहसास दिला रही है कि प्रकृति हर सुबह हमें बिना कुछ मांगे खुशियां बांटती है।

दोस्तों, हर सुबह हमें ये संदेश देती है कि चाहे बीता हुआ दिन कितना भी कठिन क्यों ना रहा हो, आज का दिन फिर से शुरुआत करने का अवसर लेकर आया है। सूरज कभी नहीं सोचता कि कल बादल थे इसलिए आज नहीं निकलूंगा। वो हर दिन पूरे विश्वास के साथ उगता है और यही विश्वास हमें भी अपने जीवन में बनाए रखना चाहिए।

याद रखिए साथियों, सकारात्मक सोच वो दीपक है जो अंधेरे रास्तों को भी रोशन कर देता है। जिस मन में उम्मीद रहती है वहां सफलता देर से सही लेकिन जरूर दस्तक देती है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव बने रहो, अच्छा होता है सब।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम भूर सुहानी में आपके साथ है अर्चना गोयल। शुरुआत छोटी है तो क्या, इरादे बड़े होने चाहिए। चाल धीमी हो तो भी कदम रुकना नहीं चाहिए। गिरना अगर किस्मत में है तो उठने की फितरत होनी चाहिए। लोग चाहे कुछ भी कहें, बस खुद पर यकीन होना चाहिए।